प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: को सुप्रभात। घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार रिया, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल ही में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइसेस के दौरान प्रस्तुत किए कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार लाया जा सके। कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित हैं। इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचों का निर्धारण और वर्कफेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल हैं। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की। 40 घंटों के कार्य सप्ताह को लागू करने का प्रस्ताव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वहीं अन्य लोग वेतन, ओवरटाइम और इस उपाय के लागू होने की शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव बना हुआ है जो जनता के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है। बात करते हैं विमानन क्षेत्र की। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित उपायों का अध्ययन करना है। विदेश की खबरों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इस बीच दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। रात को भी बादल घिरे रहेंगे, खासकर ऊंचाइयों पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 19 से 21, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Musti।
1: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
4: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.
5: मीडियम वेव 719 kHz पर ये है आप ही लोगों का लोकप्रिय राष्ट्रीय चैनल AM2 MBC रेडियो मॉरिशस। स्वीकार कीजिए अपने होस्ट दोस्त अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। भोर के इस बिरा में हम आपका स्वागत करते हैं। शुभ प्रभात। आज शनिवार का दिन, शनिवार 2 मई साल 2026, नए महीने की शुरुआत और नए महीने का दूसरा दिन। ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, और आज हमारा आपका साथ रहेगा अभी से लेकर 9 बजे तक। आशा करते हैं कि आप लोग हमारा साथ अवश्य देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस प्रातकालीन सभा को वैदिक ज्ञान प्रोग्राम के साथ गहलोत राजपूत महासभा की ओर से।
3: सुनिए गहलोत राजपूत महासभा की ओर से वेदों और शास्त्रों पर आधारित कार्यक्रम वैदिक नाद।
6: ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासति प्रशिषम यस्य दीवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हव्यशा विधेम। ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा के वैदिक नाद के समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। श्रोताओं, आज का विषय है भक्ति। परमात्मा की भक्ति क्या है? परमात्मा की भक्ति है परमात्मा की आज्ञा का पालन करना। ईश्वर स्तुति मंत्र में बताया गया है कि उसका जो तीसरा मंत्र है या आत्मदा बलदा, इस मंत्र का पाठ मैंने भी किया। आत्मा और अंतकरण से भक्ति अर्थात परमात्मा की आज्ञा का पालन, परमात्मा की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। ईश्वर स्तुति मंत्र उपासना के तीसरे मंत्र में यह स्पष्ट बात आई है कि परमात्मा की भक्ति अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करना। परमात्मा की आज्ञा है कि समाज को उत्तम संतान देना, यह परमात्मा की आज्ञा है। कल हमने श्रम दिवस मनाया, अर्थात हम जीवन को चलाने के लिए प्रतिदिन श्रम करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार का काम करते हैं, विशेषकर कृषि का कार्य जिस पर जीवन निर्भर करता है। कृषि कार्य करने के लिए हमारे पूर्वज इस देश में मजदूर बन के आए थे और आज मालिक बने बैठे हैं। विशेष विशेष ध्यान देने वाली बात, मालिक बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, परमात्मा की आज्ञा का पालन अर्थात समाज को उत्तम संतान देनी चाहिए। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे पूर्वज इस देश में आए, श्रम किए, आज उसके श्रम को सम्मान देने के लिए हमें समाज को आगे ले चलना है। कैसे? उत्तम संतानों से। और वेद मंत्र भी यही कह रहा है कि उत्तम संतान यही परमात्मा की आज्ञा का पालन है, यही परमात्मा की भक्ति है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के तीसरे मंत्र में यह बात स्पष्ट आई है। आगे विचार को बढ़ाते हैं। यही श्रम हमको करना है, उत्तम संतान ही भविष्य में शक्तिशाली जवान बनेंगे। ये हमारा विशेष श्रम माना जाएगा, जो भविष्य में ऐसे हम अपने जवानों को तैयार करेंगे जो भाग दौड़ संभाल सकें, हमारे पूर्वज के जो परिश्रम को सार्थक कर सकें। हमारे जवान हैं कल के मालिक होंगे। जो हम बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज मजदूर बन के आए थे और आज जो है वो मालिक बने हैं, तो हमारे जवान ही कल मालिक बनेंगे, मालिक रहेंगे या मालिक हैं। ये जो हमें ये सब ले चलना है वेद के आधार पर। परमात्मा ने भी सृष्टि का आरंभ युवा अर्थात जवानों से आरंभ किया था और आज्ञा दी कि मनुष्यों उत्तम संतानों से संसार को आगे बढ़ाते चलो। यह है परमात्मा की भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, ये तीन उन्नतियों का आधार 16 संस्कार। महर्षि दयानंद जी ने बात कही है कि शरीर से, आत्मा से, समाज से हम उन्नत होवें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें हर प्रकार से, तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है 16 संस्कार। 16 संस्कार, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन, चौथा जातकर्म, पांच नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूड़ाकर्म, नवा कर्णवेद। 1 से 9, 16 संस्कारों में से 1 से जो 9 संस्कार हैं, ये 9 संस्कारों के करने से शारीरिक उन्नति होती है। अर्थात ये संस्कार हैं जिससे कि शरीर स्वस्थ रहता है। गर्भाधान से लेकर के बात हो रही हैं, और हम मैंने पूर्व भी कहा था वैदिक नाद के माध्यम से कि एक गर्भ अर्थात माँ के गर्भ में 10 महीने संतान रहती हैं, और 10 महीने होता है 40 सप्ताह, और 40 सप्ताह होता है 280 दिन, दिवस बगा लो, और यह

0: यजुर्वेद में आया है जो हम बात कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन संस्कारों को अपनाएं जिसे शारीरिक उन्नति होगी। आगे बढ़ते हैं, हमने 9 से बताया, 1 से 9, अब 10वां और 11वां। 10वां है उपनयन अर्थात जनेव संस्कार, 11वां है विदारम संस्कार। ये दोनों संस्कार ज्ञान से संबंधित हैं और ज्ञान यह आत्मा की आवश्यकता है, आत्मा को चाहिए। आत्मा जो है ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष को प्राप्त करता है। मैंने शब्द बोला मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात आधार क्या है? ज्ञान। इन दो संस्कारों के करने से आत्मिक उन्नति होती है। अब जो रह जाती है वे है 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां। ये होता है 5 संस्कार, अर्थात 12वां समावर्तन, 13वां विवाह, 14वां वानप्रस्थ, 15वां संन्यास और 16वां अंत्येष्टि। इन 5 संस्कारों के करने से सामाजिक उन्नति होती है। अगर हम समावर्तन पढ़ लिख करके समाज में आए, समाज में कार्य कर रहे हैं और ठीक से अपने कार्य कर रहे हैं तो ये समाज की सेवा, सामाजिक उन्नति। विवाह, लड़के लड़की का गुण कर्म स्वभाव एक होने से, बराबर होने से, एक जैसा होने से विवाह होने पर समाज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही समाज को चलाता है। तो ये हो गया समाज की उन्नति। संन्यास भी, सन्यासी बनो, वेद का प्रचार करो, वानप्रस्थी बनो, वेद का प्रचार करो, ये भी है समाज की उन्नति। और जो 16वां संस्कार है, इससे समाज की उन्नति कैसे होती है? जो अंत्येष्टि संस्कार हम करते हैं उसको हम पर्याप्त बताए गए हैं, घी से ही उसका संस्कार करें, दाह संस्कार करें, रबड़ इत्यादि न जलावें। रबड़ जलाने से, रबड़ को बोलते हैं कागोत्सु, ये जलाने से वातावरण दूषित होता है, समाज जो है अस्वस्थ हो जाता है, अर्थात समाज में रहने वाले, तो समाज की उन्नति नहीं होती। तो ये 16 संस्कार, ये 16 संस्कार को करने से जो है हर प्रकार से उन्नति होती है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। और इसमें हमें क्या करना है? श्रम करना है। यही हमारा श्रम है, यही परमात्मा की भक्ति है और यही परमात्मा की आज्ञा का पालन है। अगर हम सही संतान उत्पन्न नहीं करेंगे और संस्कार नहीं देंगे तो हमारे जो पूर्वजों ने श्रम किया वह श्रम जो है निरर्थक जाएगा, अर्थात वो सार्थक नहीं होगा। नहीं होगा कब? हमारे जवानों को हमें तैयार करना है। हम जब संस्कार की बात करते हैं, श्रम की बात करते हैं, तो यही एक श्रम बच जाता है हमारे लिए, अर्थात जो हमें करना चाहिए कि इससे हर प्रकार से हम उन्नत रहेंगे। श्रम दिवस हमने कल मनाया, सभी के हृदय, मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में यही बात रही कि हम जो बाहर का काम करते हैं, श्रम करते हैं, ये श्रम ही दिवस हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इन जो है आज हमारे देश में कृषि ना के बराबर है, तो हम श्रम करें तो विशेष श्रम अर्थात जो है परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करें। परमपिता परमात्मा जैसे यह संसार बनाया, यह संसार के प्रारंभ में युवा के माध्यम से संसार को आगे चलाया, आप भी हम मनुष्य में आगे चलाएं। मैं तो ये निवेदन करूँगा हमारी जितनी भी संस्थाएँ हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं जो हैं हमारे प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं और जितने भी जो अंतरंग सदस्य हैं, 18 ले लो, तो 18 आप रहें और 18 जवान को अपने साथ बिठाएं, उसको एक ट्रेनिंग दो। वो अपने आपकी बैठक में वो बोलेंगे नहीं, वो केवल सुनेंगे, तो उसका अनुभव बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा। इस प्रकार से जो है कहने का तात्पर्य यह है कि हमको तैयारी करनी चाहिए। परिस्थिति कैसी है सभी जानते हैं, सभी जानते हैं जो है आज जो है देश को क्या चाहिए। मिल करके चलो, हमारे जो भोले नौजवान हैं, रास्ता भटक चुके हैं, हम उनको संस्कारों के माध्यम से बनाएं। हम किसी पर आशा नहीं रह सकते, हम स्वयं पर आत्मविश्वास रखें। एक कहावत है, बोल करके मैं समाप्त करूँगा, लकड़ी के कीड़े कुर्सी खा रहे हैं। ध्यान से सुनना, लकड़ी के कीड़े कुर्सी खा रहे हैं, कुर्सी के कीड़े समाज को खा रहे हैं। तो समाज को बचाना है तो जवानों को बचाओ, परमात्मा की भक्ति करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, समाज को उत्तम संतान दो और जो है आप अपने जीवन को सार्थक करो। आपने ध्यान से सुना, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वैदिक नाद।
2: सुबह के 6:17 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां। वाक्वा रूट बनते रूट क्लेफोन नंबर 3, रूट 21 नंबर 1, रूई महंत कबीर, मौसम कोऑपरेटिव और सिटी रितु, साथ में रूट सल्फरी नंबर 1 के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कल रविवार 3 मई को सुबह के 11:30 से शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और वाक्वा रूट थोंकिर पाविदामू रूट बनतेर रूट प्लेटफॉर्म नंबर 1 नंबर 3 रूट वैता नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मॉडर्न स्क्वायर रूट लिनिबर्टो रूट दे क्लब रूट जैक्सन और रूट लम्बेटी के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कल 3 मई को दिन के 1 बजे से शाम के 4:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और वाक्वा और एनर्जी सिग्लेन पार्क के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 3 मई को दिन के 9 बजे से दोपहर बाद के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
3: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

प्रिय श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे महाराणा प्रताप दिवस के संदर्भ में विशेष प्रोग्राम पंडित श्याम जी द्वारा, और ये वार्ता मैं लेकर जाएगा सुबह के ठीक साढ़े छः बजे आप सुनेंगे पूरा समाचार बुलेटिन, शोक समाचार, सूचनाएं, मौसम का और स्पोर्ट्स रिव्यू। उसके बाद हमारी आपकी प्यारी सी मुलाकात होगी न्यू मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना सुबह के 7:05 पर। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मर्शल। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।

देवियो सज्जनो प्यारे बच्चो सादर सप्रेम नमस्ते। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, क्या लिखूं प्रताप की गाथा, कलम की स्याही कम पड़ती है। हे प्रताप, तुझे शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। श्रोताओं, महाराणा प्रताप का नाम लेते ही हमारे मन में देश प्रेमी, स्वतंत्रता उपासक, वीरता के ओज से भरे चेहरे तथा लंबी मूछों वाले, हाथ में भाला लिए एक अश्वारोही का चित्र उभर आता है। प्रत्येक भारतीय उन्हें एक श्रद्धा का पात्र तथा जन्मभूमि की स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक मानता है। इसके अतिरिक्त उनके चरित्र में एक कुशल राजनीतिज्ञ, आदर्श संगठनकर्ता एवं चतुर राजनीतिज्ञ आदि की सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। यह उनके इन सभी गुणों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। श्रोताओं, स्वतंत्रता न होने पर सभी सुख सुविधाएं अर्थहीन हैं तथा इसके सुरक्षित रहने पर वन्य जीवन भी संतोषप्रद है। महाराणा प्रताप के जीवन का यही मूल मंत्र था। इसी को दृष्टि में रखकर उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष का मार्ग अपनाया। उस समय के प्रायः सभी राजाओं ने अपने राजमुकुट मुगल सम्राट अकबर के चरणों में रख दिए थे, जिनके बदले में उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई थी तथा मुगल सम्राट के दरबार में ऊंचे ऊंचे पद मिले थे। यदि प्रताप चाहते तो वो भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि ऐसा वे कर लेते तो आज प्रताप प्रताप नहीं रहते, वह भी मुगलों के अधीन जीवन यापन करने वाले अन्य राजाओं की तरह भुला दिए जाते। भारतीय संस्कृति तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने वनवासी बनना अच्छा समझा, किंतु दिल्ली दरबार में जाने की कल्पना भी नहीं की। उनकी इसी विशेषता के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए डॉक्टर रघुवीर सिंह लिखते हैं, भारत की राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयत्न करने वाले अकबर के बजाय अपने छोटे से राज्य मेवाड़ के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए मर मिटने वाले राणा प्रताप ही सदा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्श बने रहे। अपने साथियों के हौसले बढ़ाने के लिए

0: प्रताप अक्सर कहते, युद्ध करना है या सोने चांदी के बर्तनों में गुलामी की रोटियां खानी है, वही तय करेंगे। हम रहें ना रहें, मातृभूमि का स्वाभिमान रहे, आत्मसम्मान खोकर मुगले आजम के दरबार में जाने से पहले मुझे मौत मंजूर है। चित्तौड़ हिंदुस्तान का शौर्य है और शक्ति का प्रतीक हमेशा रहेगा। अपने इस संघर्ष से उन्होंने मुगल साम्राज्य को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि जन और धन का बल ही सब कुछ नहीं है। यदि व्यक्ति का आत्मबल ऊंचा हो तो वह किसी भी विपत्ति का सामना कर सकता है और अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकता है। प्रताप स्वतंत्रता के परम उपासक थे। वह स्वतंत्रता के लिए ही जीवित रहे तथा सदा स्वतंत्र रहे। महाराणा प्रताप का महाप्रयाण राजवंश के उस गरिमामय का भी अवमान है जिसने विश्व के स्वाधीनता प्रेमियों को एक प्रेरणा दी है, उन्हें चमत्कृत किया है। महाराणा प्रताप जैसे परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी वीरले ही पैदा होते हैं। वीरता, त्याग, देश प्रेम और निःस्वार्थ भावना से कर्तव्य का पालन करना महान एवं पुरुषोचित गुण है जिनका मानव समाज सर्वत्र और सदा से सम्मान करता आया है। इन गुणों के साथ ही एक अदम्य मनोबल महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी विशेषता है। इसी कारण वह उस प्रशंसनीय गौरव को प्राप्त करने में समर्थ हुए जिसे कोई भी अन्य तत्कालीन शासक नहीं प्राप्त कर सका। इसीलिए प्रताप दिवंगत होने के लगभग 486 वर्ष बाद भी भारतीय जनमानस में श्रद्धा के पात्र बने हुए हैं और भविष्य में भी बने रहेंगे। भौतिक रूप में न रहने पर भी उनका आदर्श भारतीयों को युगों युगों तक देश प्रेम, स्वतंत्रता, अनुराग, संघर्ष आदि की प्रेरणा देता रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय भारत।
1: अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।
3: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 6:30 बजे हैं। सुबह के इस बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां पेश हैं। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टिट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइसेस के दौरान प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा करेगा, कहा श्रम मंत्री ने। 40 घंटों के कार्य सप्ताह को लागू करने का प्रस्ताव लोगों के बीच चर्चा का विषय। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेशेवर और पारिवारिक जीवन की बेहतर संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं इस बुलेटिन में। विमानन क्षेत्र में मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी। एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया। विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका को दी धमकी। उसने कहा कि यदि हमला हुआ तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। तब पेश समाचार विस्तार से। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम पर आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार हो। कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश

0: देश में श्रम मंत्री रिजा उद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित हैं, इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट, वर्क फ्रॉम होम, वर्कफेयर प्रोग्राम आदि शामिल हैं। कल रात एमबीसी वन पर उनका यह संदेश प्रसारित हुआ, इसका एक अंश पेश है।
1: Dans les jours qui peuvent venir, le National Tripartite Council pour considérer plusieurs propositions pour amender la loi. Parmi les sujets qu'ils ont pu discuter, pour une semaine 40 heures et un secteur qui n'est pas applicable, pour une révision définition travailleur dans Workers' Rights Act pour couvrir aussi un travailleur qui gagne plus que 50 000 roupies par mois. Nous pouvons aussi revoir le cadre légal de work from home et flexi-time. Améliore Portable Retirement Gratuity Fund, assure-nous qu'il y a un comité disciplinaire vraiment indépendant et aussi améliore le mécanisme pour résoudre un problème industriel. Mais déjà, moi, on a le plaisir d'annoncer que le comité interministériel qui moi-même me préside, le protocole applicable en cas d'avis de pluie torrentielle, fin complète ce rapport et probablement la semaine prochaine, nous pouvons demander un cabinet d'un seul accord pour qu'il devienne avant, quand il a un avis de pluie torrentielle, puis il n'a aucune discrimination entre travailleurs secteur privé et fonctionnaires.
0: 40 घंटों के कार्य सप्ताह को लागू करने का प्रस्ताव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वहीं अन्य लोग वेतन, ओवरटाइम और इस उपाय के लागू होने की शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव बना हुआ है जो जनता के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन पाएंगे।
2: Une bonne mesure, mais concernant le secteur qui nous fait travail, il n'est pas applicable. Pour prendre plus de temps pour nous, la famille, pour nous-mêmes, nous chercher un live, nous personnel live. Parce que là, nous, les temps finissent sans travail, la maison dormir, ça aime tout.
3: Mais ça, nous n'avons pas décidé parce que nous travaillons déjà dans une fast food. Parfois, quand nous payons notre travail, bizarre, nous payons assisé, mais seulement nous la payons pas coupée. Parfois, quand on a travail, nous pouvons faire travail. Ça nous dépend de nous. Nous pouvons faire aller.
4: Dans le domaine forage. Enfin, pour être ici, il fait mes affaires à la case. Mais il occupe des enfants un peu plus bien, tout. Quand il a l'affection à un papa, à cause, enfin, il peut travailler pour nous, mais il n'est pas là. Il ne casse pas faire, tout. Mais je dis, je ne suis pas content d'en travailler avant tout. Si vous n'êtes pas content, quoi, pas valer.
5: Enfin, je suis dans le domaine de l'école, à la crèche. Mais pour moi, je pense qu'il faut. Parce que repos et travailler, c'est des best friends. Je pense que vous devez mettre ça. Avoir des repos plus travailler. 8 heures temps par jour, c'est très bien. Comme ça, il va avoir plein de temps pour voir ses enfants, et son épouse.
6: Nous 40 heures même. J'espère bien les employés vont essayer d'avoir 40 heures pareil comme tout le monde. Parce que ce sera mieux pour tout le monde aussi. Hein. Parce que le repos, c'est important.
0: जहाँ एक ओर कल श्रम दिवस मनाया गया, वहीं रोजगार बाजार और उसके विकास का सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी मांग में भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, ऐसा वकील नीलकंठ दलू ने कहा। शुक्रवार 1 मई की सुबह के इंटरव्यू में एएमएम पर वे हमारे सहयोग के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उनके अनुसार वर्षों से अपर्याप्त योजना के कारण अब ठोस फैसलों की आवश्यकता है। बात अब विमानन क्षेत्र की। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए संभावित उपायों का अध्ययन करना है। एयर मॉरिशस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष धीरन कुमार दीबी की ने पुष्टि की कि यह समिति हर दिन बैठक करती है ताकि ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा सके। उनको सुनते हैं विवरण गीता सुनारान का।
7: एयर मॉरिशस ने एक कमेटी कायम की है जिसे वॉर रूम कहा गया है और जो हर रोज बैठक लगाती है और जेट फ्यूल के दामों पर गौर किया जाता है। एयर मॉरिशस के विमानों और उसकी लागत के प्रभावों पर भी हर रोज जो घटता है ये आश्वस्त किया जाता है कि चाहे उड़ान हो या एयर मॉरिशस के कार्यों की अन्य पहलू, उन्हें एडजस्ट करना चाहिए ताकि कार्य की लागत पर खराब प्रभावों को कम किया जा सके जो गल्फ युद्ध और ईंधन के दामों के कारण पड़ रहा है। हर रोज मॉनिटरिंग की जाती है।
0: यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। मॉरिशस में कैनबिस यानी गांजा सुधार एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। 14वीं बैठक गुरुवार को पोर्टली में आयोजित की गई जो नेशनल ड्रग मास्टर प्लान के लॉन्च के उपलक्ष्य में हुई। इसमें विशेषज्ञों ने भाग लिया ऐसे समय में जब अधिकारी कानून में संभावित बदलाव के प्रस्ताव का आकलन कर रहे हैं। सौताना मोसिनो की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनरान का।
7: दशकों तक अपराधीकरण और रुकावटों के बाद अब अधिकारियों ने आखिरकार एक व्यापक राष्ट्रीय परामर्श के लिए रास्ता खोल दिया है जिसका उद्देश्य देश के दृष्टिकोण को गहराई से पुनर्विचार करना है। इन परामर्शों में कई पक्षों को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि विशेषज्ञता और वास्तविक अनुभव दोनों को जोड़ा जा सके। तकनीकी समिति में नताली रोज इस बात पर जोर देती है कि वैज्ञानिक आंकड़ों और जमीनी हकीकत दोनों को शामिल करना जरूरी है और विषयगत चर्चाओं की घोषणा करती हैं। कट की निदेशिका जामी कौचिक इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों और पॉलीकंसेप्शन यानी बहु नशा की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ संगठन की भूमिका को याद दिलाती हैं, जो अक्सर प्रणाली के किनारे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक और साझेदार फोरेंसिक साइंस लेबोरेटोरी है जिसका प्रतिनिधित्व आदिल तूफानी कर रहे हैं और जो नाडेक के साथ मजबूत सहयोग के तहत काम कर रही है। इन परामर्शों के बाद अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा और अंतिम रिपोर्ट जून 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है।
0: 33.4 मिलियन रुपए, ये वो कुल राशि है जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी पहली नीलामी के दौरान एकत्र की। यह आयोजन 4 दिनों तक चला और इससे प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। लवीना सुफी की रिपोर्ट है, विवरण गीता सुनारान का।
7: ये नीलामी 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की गई। कुल 48 वाहनों को खरीदार मिले जिनमें 7 नावें, 7 मोटरसाइकिल्स, 2 बॉबकैट मशीनें और 2 ट्रक शामिल थे। ये प्रक्रिया FCC अधिनियम के 29 मार्च 2024 को लागू होने के बाद संभव हो पाई। अब आयोग को अपराध से जुड़े जब्त किए गए या उपयोग किए गए सामान को बेचने का अधिकार है। सभी कार्रवाइयां जिनमें खरीदारों को संपत्ति सौंपना भी शामिल है, एक स्वतंत्र नीलामीकर्ता की निगरानी में पूरी की गई। इस पहली सफलता के बाद FCC अब अगली नीलामी आयोजित करने की योजना बना रहा है जिसमें जब्त की गई अचल संपत्तियां शामिल होंगी।
0: अस्पतालों को धीरे धीरे एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप में बदलना जहां मरीज एक ही छत के नीचे सभी सेवाओं का लाभ उठा सके, यह तीसरी डायबिटीज एंड वास्कुलर हेल्थ सेंटर का उद्देश्य है जिसका आधिकारिक उद्घाटन बुधवार 29 अप्रैल को सर निरोज जगन्नाथ अस्पताल फ्लैक में किया गया। ये एक पूर्ण इकाई है जिसका लक्ष्य मधुमेह के उपचार को मजबूत करना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ अनिल बेचू को सुनते हैं।
7: पिछले साल बजट में ऐलान किया गया था कि सभी अस्पतालों में एक डायबिटीज सेंटर होना चाहिए। देश में यही सबसे बड़ी बीमारी है, हजारों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, करीब 2 लाख लोग। फिर जब कोई अस्पताल आता है तब ये एक वन स्टॉप शॉप होना चाहिए। प्रवेश करते ही आँखों की जाँच करनी चाहिए, पैरों में उपकरण लगा कर जाँच करवानी चाहिए कि खून अच्छी तरह बह रहा है या नहीं। काउंसलिंग भी होनी चाहिए, एक ही जगह पर सब कुछ करवा लेना चाहिए, इसलिए ये केंद्र बनाया गया है। एक जीतू अस्पताल में है, दूसरा SSO मेडिक्लिनिक में और तीसरा यहाँ। सभी 5 अस्पतालों में बजट से पहले ऐसा कर लिया जाएगा, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ये ठीक से चल रहा है।
0: Voilà, विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला किया। उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस

प्रेस को बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो गया है क्योंकि वर्तमान में एक युद्ध विराम लागू है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें युद्ध से संबंधित विधायी मंजूरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्यथा उससे सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को भेजे गए एक पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस वॉर पावर्स एक्ट का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि पिछले महीने ईरान के साथ सहमत युद्ध विराम ने इस कानूनी समय सीमा को रोक दिया है। जानते हैं मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान देश भर में बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बारिश होगी। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी पश्चिमी समंदर में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 19 से 21 और अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।

देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और टेक्निकी पर कादर का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

शोक समाचार सुनिए। हाईलैंड्स रोड फिनिक्स में, हाईलैंड्स रोड फिनिक्स में 89 साल की 89 years old की मिसिस बीबी रुकियान भाई सुभाची, मिसिस बीबी रुकियान भाई सुभाची, पैदाशी नाम हुसैन बख्श और जो रुकियान के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके मकान हाईलैंड्स रोड फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। कॉम्बुम्बाई फॉरेस्ट साइड में 59 साल की 59 years old की श्रीमती श्यामा देवी दागा पैदाशी नाम रामहित और जो अनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके मकान कॉम्बुम्बाई फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगाहा लाभास्खे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। कॉम्बन वैन कौचे मिलितिया में 71 साल के 71 years old के जनाब आज़ाद अकीम गुजर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके बेटे अकीम वसीफ मोहम्मद के मकान ब्लॉक 16 कॉम्बन वैन कौचे मिलितिया से उठाकर दफनाने के लिए आलमा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। 80 साल की 80 years old की श्रीमती धनवंती सुखराम जो मामा सुनील के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे लाशा पैलौदों तेली एंड सन्स गोथ्वायाल बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछित खिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर पाँच स्वामी दयानंद स्ट्रीट बुबासे में 50 साल के 50 years old के श्री निर्मल दुखी जो विक्रम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके मकान नंबर 5 स्वामी दयानंद स्ट्रीट बुबासे

से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शेबैल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। Avenue Paillanqueux, moi seulement sans souci, montagne blanche, mais. Avenue Paillanqueux, moi seulement sans souci, montagne blanche, mais. 60 साल के 60 years old के श्री हरिदत्त तकुद्दीन, श्री हरिदत्त तकुद्दीन, जो सूरज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके भाई दानन तकुद्दीन के मकान Avenue Paillanqueux, मोसलमा सांस उसी मोताई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट नून। शिवाला रोड लाग्रीमेंट सेंट पियर में, शिवाला रोड लाग्रीमेंट सेंट पियर में 67 साल के 67 इयर्स ओल्ड के श्री संजीवा नरसिम्हा अपादू, श्री संजीवा नरसिम्हा अपादू, जो संजीवा विष्णु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी इमा अपादू के मकान शिवाला रोड लाग्रीमेंट सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पियर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह का 6:49 हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़। सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। शनिवार 2 मई 2026 एमबीसी के हमारे स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश फुटबॉल में लीड्स ने अपनी लीड बढ़ाई, तो फुटबॉल प्रेमियों का सारा ध्यान इस सप्ताहांत और खासतौर पे कल रविवार के लिए द बैटल ऑफ द रेड्स पर केंद्रित है। और इस बीच मॉरिशस के हमारे युवा कराटे खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित WUFK कराटे चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और 1 चांदी का पदक हासिल किया है। 19 साल की कैटेगरी में यशराव लक्सिमो गोल्ड मेडल जीत पाया, तो 18 से 20 साल वाली कैटेगरी में वर्ग में शेन वीरारागू ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया, तो उसके भाई शोन वीरारागू को मिला चांदी का पदक। आज इंडिविजुअल कैटेगरी के मुकाबले जारी रखे जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में ही, तो कल से टीम कंपटीशन शुरू होगी। क्षेत्रीय स्तर पर रिविया जुरापा में कल रविवार की सुबह 9 बजे एक इंटर विलेज पेतोंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। रिविया जुरापा जिला परिषद द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता वहीं के गांधी स्क्वायर पेतोंग कोर्ट में लगेगी। और मॉरिशस के एक्स इंटरनेशनल खिलाड़ी गोल्डन स्टार्स अपना अगला मैच अगले 10 मई को खेलेंगे वेलोड्रोम क्यूपिप में लेक्सप्रेस अखबार टीम के विरुद्ध। इस बीच अपनी 32वीं सालगिरह के मौके पर कल मुकेश रामरेखा को सम्मानित किया गया। और इंग्लिश फुटबॉल का 35वां सप्ताह 35th week कल रात लीड्स यूनाइटेड की जीत और उसके जबरदस्त फॉर्म से आरंभ हुआ। लीड्स यूनाइटेड 3-1 एंटन स्टाक का एक पहला गोल खेल के 8वें मिनट पर नोवा ओकाफो और डोमिनिक काल्वेट लेविन के बाकी गोल। लीड्स 3-1 से ये मैच जीत गए और इस प्रकार वे अब 14वें स्थान पर हैं 43 अंकों के साथ विद 43 points। लीड्स प्रथम रिलेगेशन टीम टोटनहम हॉटस्पर से अब 9 अंक आगे हैं। टोटनहम को चाहिए और 2 अंक, वेस्ट हैम यूनाइटेड उससे 2 अंक आगे हैं, इसलिए मामला गर्म है टोटनहम हॉटस्पर के लिए। सो लीड्स यूनाइटेड को हार्दिक बधाई जो अब 14वें स्थान पर आ गए हैं और वे अब कह सकते हैं सेफ हैं, सुरक्षित हैं, किंतु मैथमेटिकली अभी भी कुछ भी

0: विरुद्ध और आज रात 8:30 बजे आर्सेनल वर्सेस फुलहम। द गनर्स को यदि टाइटल चाहिए तो उन्हें ये मैच और बाकी सभी मैच जीतने ही पड़ेंगे, अन्यथा मैनचेस्टर सिटी नाम का शेर उसे नहीं छोड़ेगा। सो आज रात 8:30 बजे आर्सेनल वर्सेस फुलहम। सुपर संडे के लिए सबसे भारी राइवलरी कल 6:30 बजे द बैटल ऑफ द रेड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। 6:30 बजे दोनों के बीच केवल 3 अंकों का अंतर है, इसलिए राइवलरी एक तरफ, ये सम्मान और अपमान का भी प्रश्न है। मैटेउस कुन्या ट्रेनिंग पे लौट आया है, वो ब्रूनो फर्नांडेस और बेन्यामिन सेस्को के साथ पार्टनर करने को तैयार है, जबकि मोहम्मद सलाह इधर और एलिसन बेकिया उधर अभी तक आउट है। एलिसन बेकिया ट्रेनिंग पर लौट नहीं पाया है अब तक, इसलिए फ्रेडी वुडमैन के साथ फ्लोरियन वुड्स और लोन स्ट्राइकर अलेक्जेंडर ईसाक से काफ़ी उम्मीदें की जा रही हैं, क्योंकि ईगो एकीति के अभी तक घायल है। इसलिए लगे रहो और द रेड डेविल्स वर्सेस द रेड्स संडे की 6:30 बजे। किंतु संडे का पहला मैच, कल का पहला मैच 5:00 बजे ही खेला जाएगा, बोर्नमुथ वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। और रविवार का क्लोजिंग मैच भी काफ़ी हद तक धमाकेदार साबित होने वाला है, 10:00 बजे कल 10:00 बजे एस्टन विला का मुकाबला टोटेनम हॉटस्पर से है। द विलेन्स फिर से अपना चौथा स्थान पकड़ने की कोशिश करेंगे और रोबर्टो डी ज़ेबी के स्पर्स रिलेगेशन जोन से निकलने का प्रयास करेंगे। मैच से पहले उन्होंने निगेटिविटी को फाड़ते हुए अपने खिलाड़ियों से कहा कि हमें रोना नहीं बल्कि धोना चाहिए। सो इतना सब कुछ इंग्लिश फुटबॉल को लेकर। लीग टेबल में अभी तक आर्सेनल पहले स्थान पर है, 73 अंक 73 पॉइंट्स। उसने एक मैच ज़्यादा खेला है मैनचेस्टर सिटी से, जिसके पास है 70 पॉइंट्स। मैनचेस्टर यूनाइटेड 61, लिवरपूल 58, अस्टन विला के पास भी 58, तो छठे स्थान पर है ब्राइटन 50 अंकों के साथ। कल कुछ और मैच खेले गए। स्पेन के लालीगा में कल मलोका ने एवे जाकर जिरोना को 1-0 से हराया। इटली के सेरिया में पिज़ा 1 लेचे 2। और इंडियन सुपर लीग में कल जो मात्र मैच खेला गया उसमें जमशेदपुर ने गोवा को 2-0 से परास्त किया। टेनिस में फिर से यानिक सिनर ने अपना क्लास दिखाया, कल फ्रांस के ऑचुए फिस को 6-2 और 6-4 से हराकर विश्व नंबर 1 यानिक सिनर लगातार 5वें मैड्रिड ओपन फाइनल में पहुंचा है, जहां पर उसका मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेरेव से होगा। लड़कियों में 19 वर्षीय रूसी टीनेजर मीरा एंड्रीवा अपने प्रथम मैड्रिड ओपन में पहुंची, सेमीफाइनल में उसने एले बैचिस को 6-4 और 7-6 से परास्त किया। अब फाइनल आज ही खेला जाएगा, मीरा एंड्रीवा का मुकाबला माता कुस्चिक से है। फॉर्मूला 1 की बात करें, लगभग 1 महीने की फोर्स्ड छुट्टी के बाद आखिरकार फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप वापस लौट आई है। इस सप्ताहांत मायामी ग्रैंड प्री रेस लगेगी, जिसके प्रथम प्रैक्टिस में कल फिरारी के शॉल लेक्लेयर की जीत हुई, पर बाद में नोरी भी जीत पाया एक स्प्रिंट पर। आज रात पोल पोजीशन के लिए क्वालिफाइंग और स्प्रिंट रेस लगने वाली है। उल्लेखनीय है कि जनरल रैंकिंग में फिलहाल मर्सिडीज का किमी एंटोनेली पहले स्थान पर है, वो अपने ही टीममेट जॉर्ज रसेल से 9 अंक आगे है। और क्रिकेट में टाटा इंडियन प्रीमियर लीग में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से परास्त किया। रॉयन पराग के 90 रन राजस्थान को बचा नहीं पाए और उन्हें टॉप पोजीशन से वंचित किया, टॉप प्लेस से वंचित किया, जबकि वैभव सूर्यवंशी केवल 4 रन ही बनाकर आउट हुआ। आज इसी आईपीएल में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स लोहा लेंगे मुंबई इंडियंस से। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नुथावाय नुलावेनिया रिटेल के सेक्टर में अकेल कोल्ड स्टोरेज जोन रॉयल रोड रिविया जु रॉम्पर में पावल जाला एगो मेल गुड व्हीकल्स ड्राइवर खोजता जेकर फॉर्म 3 संगे 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया 58 39 41 20 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 मई 2026 क्लीनिंग सर्विसेज के सेक्टर में अल्फा फैसिलिटीज ग्रुप लिमिटेड जन पाई रोड पाई में पावल जला 100 मेल और फीमेल क्लीनर्स खोजता 15 मेल और फीमेल सुपरवाइजर्स और खोजता 25 मेल बागाशिस्ट एप्लीकेशन करे खातिर हाउ जे पहुंच जाइया न तो सकबा टेलीफोन करे 212 40 20 न 54 99 58 55 एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 मानी की 31 मई 2026 एगो प्राइवेट हाउस होल्ड एगो हाउसमेट खोजता वो भी रिविया जु रॉम्पर के रेशियो में जन कैंडिडेट इंटरेस्टे हवन चाहेला 6 महीना के एक्सपीरियंस हो के और एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोन करिया रिविया जु रॉम्पर EIC इन नंबर पर 412 69 25 साथ ही एगो हाउसमेट ला रोजा के रेशियो में खोजल जाता एप्लीकेशन करे खातिर रोजबेल EIC टेलीफोन करिया 627 48 33 द इरहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नो ट्रावाय नो लावेनिया
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

सुबह की 7:07 हुए हैं और आप हमें सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर। लीजिए सुनिए एक ज़रूरी सूचना। वृंदावन सार्वजनिक मंदिर जो पालमा रोड काटाबोन में पाया जाता है, जनता को आमंत्रित करता है हनुमान अखंड हनुमान चालीसा चांटिंग में भाग लेने के लिए, और ये होगा कल रविवार 3 मई को सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक वृंदावन सार्वजनिक मंदिर में, और सुबह की 5 बजे हनुमान अभिषेक और पूजा, और उसके बाद सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक अखंड हनुमान चालीसा चांटिंग, पूरा दिन दर्शन भी होगा। शाम के 6 बजे महायज्ञ आरती और महाप्रसाद दिया जाएगा। सभी लोगों

0: आमंत्रित है। आप सभी लोग परिवार बच्चे सहित आ सकते हैं, इस पूजा में भाग ले सकते हैं। तो भूलिएगा मत, वृंदावन सार्वजनिक मंदिर जो पामा रोड काटो भवन में पाया जाता है, कल वहाँ पर अखंड हनुमान चालीसा चैंटिंग का आयोजन किया गया है। और अब लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। अपर वैली दे प्रेत के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है। अपर वैली दे प्रेत और चित्रकूट के लोगों को ये सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 2 मई को सुबह के 6:30 बजे से दिन के 11 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और कावलिन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 2 मई को सुबह के 11:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और पिछित रिवियर बिसेसा लेन, जोइसरी लेन और रूट रॉयल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार को दिन के 1 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ में फॉरसाइड, मेरिज स्ट्रीट, डेबी एवेन्यू, डेबी लेन, मोसेलमों वालाइडो, मोसेलमों प्याट, पाइडिया स्ट्रीट, फ्रेडरिक बनफेन स्ट्रीट और लाभासी के लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 3 मई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ में रेजिडेंस लाफेम, मैजिक डील, ले स्टाद जर्मे, कोमोमो बोंबू, पोलियको लिमिटेड, शोमिया ट्रांसफर स्टेशन के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। साथ में कोहो मॉडल, चापमान व्यू और आसपास में जो गलियां हैं वहां के लोगों को सूचित किया जाता है कि आज शनिवार 2 मई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर बाद के 2:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और सैं पियर, बॉशेरी रोड, रोजलिन रोड, रिवियर माफ़ कीजिए, फिर से सुन लीजिए अभिज्ञप्ति, सैं पियर, बॉशेरी रोड, रोजलिन कॉटेज, रिवियर बैटिस्ट, पेटी वर्जे और लुपूस के रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि कल रविवार 3 मई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे के बीच बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, बिना पूर्व सूचना की बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सी भी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: कल जो बीत चुका वो एक सपना था, जो है वो आपका हकीकत है, वर्तमान है और आने वाला भविष्य है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने वर्तमान में जीता और भविष्य के बारे में सोचता है कि नहीं। सो सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं AM2 रेडियो मॉरिशस की लहरों पे, AM2 MBC रेडियो मॉरिशस, और हमारा लाइव प्रसारण चल रहा है MBC मोका से सुबह के 7:11 प्रस्तुत है द मस्त मॉर्निंग शो। सुबह का नजर अभी से लेकर दिन के 9 बजे तक कुछ प्यारे प्यारे गाने, दिलचस्प म्यूजिक, छोटी सी कहानी, कविता, बॉलीवुड न्यूज एंड सो मच मोर। जी हाँ, बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में, आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जरूर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुबह का नजाना प्रोग्राम को आज के चिंतन के साथ डॉक्टर झमन जी द्वारा।
2: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
3: संसार में प्राणी स्वतंत्र और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं। उनको स्वार्थ के लिए कष्ट पहुंचाना महान पाप है।

जी हाँ, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। जिंदगी में परिस्थितियाँ कभी कभी बहुत कठिन हो जाती है और इंसान घबरा जाता है, हिम्मत हार जाता है, पर आप तो बहादुर है, शक्तिशाली है कि नहीं। सो कभी भी हिम्मत और हौसला न हारे। जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, परंतु बहादुर और अकलमंद इंसान वो है जो दुख सुख का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। सुबह के 7:17 नाउ डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम। अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजाना कार्यक्रम। 8:15 होगा ज्ञान सरोवर हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से, 8:00 भोजन।

पूर्वी समाचार 9 बजे फिर आठ के 10 मिनट पर सुबह का नजरना पाव 2 9 बजे फ्लैश न्यूज, उसके बाद आज की चर्चा किरण के साथ, दिन के 10 बजे समाचार, 10:03 पर अनवर से उर्दू प्रोग्राम, दिन के 11 बजे समाचार, 11:03 पर तमिल कार्यक्रम मुरुगन के साथ, दिन के 12:15 वंदना के साथ तेलुगु कार्यक्रम, दिन के 1 बजे बहुरंग प्रोग्राम शीरिश के साथ, फिर दिन के 1:45 गीत बहार प्रोग्राम गुजराती भाषा में अमित्या के साथ, आपकी पसंद प्रोग्राम सुरेखा बद्री सिंह के साथ 2:15 से शाम के 4 बजे के बीच, शाम के 4 बजे अंजू जी के साथ प्रोग्राम साहित्य दर्पण, शाम के 5 बजे संजय प्रस्तुत करेंगे प्रोग्राम खेल खिलाड़ी, शाम के 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन, शाम के 6:30 डेविड के साथ चाइनीज प्रोग्राम हाई गेलियान गैना, रात्रि के 7 बजे अंतनाव न्यावागम तमिल प्रोग्राम युवा लिसन के साथ, रात्रि के 7:30 गिरी शालिनी के साथ तेलुगु प्रोग्राम स्वराला वेदिका, रात्रि के 7:50 पर गीत गंगा बापू भाई के साथ, दिन के रात के 8:10 पर अनिता के साथ भजली प्रभु का नाम, रात के 8:40 पर महफिल शब सैयदा के साथ, रात के 9 बजे भोजपुर का रत्ना अदालत की पेशकश में, रात के 11 बजे नीतू शाह के साथ सुनहरे पल, और रात के 12 बजे से कल सुबह के 5 बजे तक नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। सुरुस्त आशा करते हैं कि दिन भर आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े रहेंगे। अगर ये बात है तो चलिए आपको सुनवाते हैं अगला गाना। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म गाइड से लिया गया।

0: MBC Astea da Oulame. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get une chaîne en direct, écoute une radio préférée, découvre films, séries et si tu pars à ton journal télévisé, n'importe où tu es. Download MBC Play sur App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
1: ये तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि महंगाई का ज़माना है और ऐसे में कौन सा वो शख्स है जो धनवान नहीं बनना चाहेगा। आप में से बहुत से लोग हैं जो लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, मिलियनेयर बिलियनेयर बनना चाहते हैं। अगर ये बात है तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है करोड़पति लड़का। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और माँ घर का काम करती थी। कई बार ऐसा होता कि घर में दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता, लेकिन आरव की आंखों में एक सपना था। वह एक दिन करोड़पति बनना चाहता था। क्या बात है, गाँव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, थू करोड़पति, पहले अपनी हालत तो देखो। लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। आरव दिन में स्कूल जाता और शाम के वक्त खेतों में अपने पिता की मदद करता। रात को जब सो जाते तो वह टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने पढ़ाई में अच्छे अंक हासिल किए। एक दिन उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। यह उसके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। शहर में उसने नई नई चीज़ें सीखी, कंप्यूटर, व्यापार और निवेश के तरीके। उसने छोटी सी नौकरी से शुरू की ताकि अपने खर्च खुद उठा सके। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत नुकसान हुआ। कई बार तो उसे लगा कि सब छोड़ छाड़ दे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने गलतियों से सीखा और फिर से कोशिश की। कुछ सालों बाद उसका व्यवसाय चल पड़ा। धीरे धीरे वह बढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब आरव सच में करोड़पति बन गया। आहा, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वह अपने गांव लौटा, वहां स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों की मदद की और अपने माता पिता का सपना पूरा किया। कहानी की सीख ये है दोस्तों कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। परिस्थितियां बदलती रहती है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो हर सपना सच हो सकता है। सो अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनत कीजिए और एक दिन आप भी करोड़पति बन सकते हैं, क्यों नहीं।

और अब कुछ बॉलीवुड न्यूज हो जाए। जी हाँ, शाहरुख खान अपने आने वाली फिल्मों को लेकर फिर चर्चा में है। पठान और जवान की सफलता के बाद उनके नए प्रोडक्शन पर प्रेस की नजर है और सलमान खान भी अपनी अगली एक्शन फिल्म की तैयारी कर रही है और रणबीर कपूर की हाल ही फिल्मों के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है और अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर को लेकर रिलेशनशिप की खबरें अक्सर चर्चा में रहती है और कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी के बाद भी प्रेस के फेवरेट कपल बन गए हैं। और अगर दीपिका पादुकोण के बारे में बात करें सो हाल ही में अवॉर्ड ओकेजन में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को उनकी शानदार एक्टिंग के लिए सराहा गया। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म किंग के सेट पर नजर आई, उसकी बेबी बंप वाली तस्वीरें भी वायरल हो रही है और साथ में रणबीर सिंह भी मौजूद थे। और मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर अब इंडी म्यूज़िक की ओर बढ़ रही है, उनका नाम है शेखर राजवानी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के कमर्शियल प्रेशर से हटकर अब उन्हें ज़्यादा आज़ादी मिल गई है और शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट जैसे सितारे फिर से इंटरनेशनल फैशन इवेंट में छा रहे हैं। और नई फिल्में भी अभी आने वाली है इस साल 2026 में, जैसे कि राजा शिवाजी, इट विल बी हिस्टोरिकल ड्रामा, पति पत्नी और वो दो एक कॉमेडी ड्रामा होगी फिल्म और चांद मेरा दिल रोमांटिक फिल्म। और ओवरऑल ट्रेंड में बॉलीवुड जब ग्लोबल लेवल पर तेज़ी से बढ़ रहा है और आपको बता दें कि शाहरुख खान जो है किंग खान है बॉलीवुड के और हालांकि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है फिर भी उसे बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं फिल्मों में काम करने के लिए, बट ही इज़ क्वाइट चूजी यू नो। और साथ में सलमान खान साहब भी, उन्हें भी उनकी भी उम्र काफ़ी बढ़ गई है और आज जहां पर नए नए सितारे बॉलीवुड में नज़र आए पर लोग आज भी सलमान खान और शाहरुख खान को बेहद पसंद करते हैं। सो सलमान खान और शाहरुख खान को फिल्में तो मिल रही बट दे आर वेरी चूजी क्योंकि वो लोग अपनी उम्र के अनुसार देख रहे हैं कि कौन सी हीरोइन मैच करेंगे उनके साथ, उनका पेयर बनना चाहेंगे। सो हम तो विश करते हैं गुड लक टू सलमान खान एंड शाहरुख खान, द किंग खान ऑफ बॉलीवुड, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो हमें अच्छी अच्छी फिल्में देंगे। अभी के लिए हो जाए गाना, फिल्म का नाम है सौतन की बेटी।

सुबह के 7:22 हो रहे हैं और दोस्तों कुछ दिन पहले ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से विंटर आउटलुक जारी किया फॉर द ईयर 2026 और सर्दियों का

मौसम आ रहा है। 15 मई से ऑफिशियली हम सर्दी के मौसम में प्रवेश करेंगे। नाउ इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन समर एंड विंटर। और जहाँ तक तापमान की बात है, सो जून जुलाई के महीने में तापमान दिन के दौरान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होगा, रात में 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। औसत सर्दियों का तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब ठंड ज़्यादा नहीं बल्कि हल्की ठंडी और आरामदायक होगी। और जहाँ तक बारिश और मौसम का सवाल है, सो सर्दियों में बारिश कम होगी। जून जुलाई में सिर्फ हल्की फुल्की बारिश या ओकेजनल शावर्स हो सकते हैं। मौसम ज़्यादातर सूखा और साफ रहेगा। इस मौसम में कूल विंड्स ट्रेड विंड्स चलती है, खासकर ईस्टर्न और साउदर्न कोस्ट पर हवा थोड़ी तेज़ मजबूत होगी और समुद्र का तापमान लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और रोज़ लगभग 7 से 8 घंटे तक धूप खिली रहेगी। स्विमिंग और बीच एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा समय होगा। और ओवरऑल विंटर आउटलुक 2026 के अनुसार मौसम कूल ड्राई कंफर्टेबल रहेगा, हीट ह्यूमिडिटी कम होगी और ट्रैवल घूमने के लिए बेस्ट सीजन में से एक है। और बेशक विंटर का जो सीज़न होता है ठंड तो पड़ती है, सो हमें अपनी प्रिकॉशंस लेने हैं। आज फ्रॉम 15th of May, जी हाँ, ऑफिशियली विल बी इन विंटर। और इस वीकेंड को भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तापमान में गिरावट होगी और कुछ जगहों पर काफ़ी ठंड भी पड़ सकती है। मौसम जैसा भी हो, आप अपना ख्याल रखें। और ऐसे में चलिए, सुबह का नजाना पहुँचवा यहीं पर समाप्त होता है। हम आपको सुनवाते अब हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम, और यह हमें लेकर जाएगा सुबह के ठीक 8 बजे, जहाँ पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार। सो चलिए सुनते हैं हिंदी स्पीकिंग यूनियन की ओर से ज्ञान सर्वर कार्यक्रम।

0: ज्ञान सरोवर हिंदी संगठन अर्थात हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा प्रस्तुत इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी प्रिय श्रोताओं को हमारा हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत है। आप श्रोताओं को विदित ही है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हिंदी भाषा एवं साहित्य पर बात करने के साथ साथ हम समसामयिक विषयों पर भी चर्चा करते आ रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही समसामयिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। विषय है श्रम दिवस, और इस विषय पर बात करने हेतु हमने स्टूडियो में श्री सत्यदेव प्रीतम जी को आमंत्रित किया है। प्रीतम जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे स्टूडियो के श्रोतागण उनसे भली भांति परिचित हैं। वे रेडियो एवं टीवी पर चला गांव घूमे कार्यक्रम कई वर्षों तक प्रस्तुत करते आ रहे थे। वर्तमान में प्रीतम जी आर्य सभा के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। वैसे वे हिंदी पर्यवेक्षक पद से वे सेवानिवृत्त हुए हैं और आर्योदय के प्रधान संपादक हैं, और सरकार ने उन्हें GOS के उपाधि से सम्मानित किया है। तो प्रीतम जी स्टूडियो में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रम दिवस, यह दिन दुनिया भर के मजदूरों, कामगारों एवं श्रमिक वर्ग के योगदान, उनके संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। प्रीतम जी, इस दिवस पर आप अपने विचार दीजिएगा।
1: बहुत ठीक। श्रम दिवस, श्रम का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं लेबर।
0: लेबर,
1: लेबर ही से लेबरर बना है।
0: जी हाँ,
1: कामगार।
0: कामगार।
1: और लेबरर का मतलब जैसे सुनार है, दर्जी है, ये इसको लेबरर नहीं बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उस बैठे बैठे काम करते हैं, पसीना नहीं निकलता है, श्रम नहीं।
0: अच्छा।
1: इसलिए जिसमें परिश्रम करते हैं, पसीना निकलता है, तर हो जाते हैं, कमीज़ कपड़े भीग जाते हैं, उसको बोलते हैं लेबरर।
0: अच्छा डॉक्टर प्रीतम जी, जैसे अब अध्यापक है, डॉक्टर है, वे लोग भी तो श्रम करते हैं ना?
1: श्रम करते हैं, लेकिन एक वैसा श्रम नहीं करते।

0: करते हैं, जैसे कारखाने में मजदूर करता है, गन्ने के खेत में काम करता है फावड़े से या
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: ये मैं ये बोलना चाहता हूँ।
1: अच्छा ठीक है।
0: अब ये श्रम दिवस लेबर डे,
1: जी हाँ,
0: हमारे श्रोतागण पूछेंगे कि दुनिया के विभिन्न देशों में ये श्रम दिवस ऑब्जर्व करते मनाते हैं।
1: हाँ, जैसे मॉरिशस में हम पहली मई को हम मनाते हैं,
0: पहली मई को मनाते हैं
1: जी हाँ,
0: हर साल
1: जी हाँ।
0: तो श्रोतागण पूछेंगे कब से मनाते हैं।
1: हाँ,
0: तो मैं इतिहास प्रेमी हूँ।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने खोज की और अच्छा है सुन लें आप बैठे हाँ, बैठे घर पर
1: जी हाँ,
0: कि ये 1938
1: अच्छा
0: हाँ 1938 में लेबर पार्टी का गठन हुआ था
1: जी हाँ,
0: स्थापना हुई थी मॉरिस किरे
1: अच्छा,
0: और पंडित हमारे पंडित
1: सहदेव
0: वगैरह, आंकचील, राम नारायण, जगदम्बी, बहुत
1: हाँ।
0: तो अब तक लंबा इतिहास हो गया
1: जी हाँ,
0: लेकिन इतिहास चलता रहता है
1: हाँ।
0: जो आज है कल हो जाएगा और जो परसों हो जाएगा
1: जी हाँ।
0: एक कल बीत जाएगा एक कल आएगा,
1: आएगा
0: ऐसा चलता रहता
1: जी
0: है
1: हाँ।
0: तो आज विशेषकर हम दो शब्द बोलेंगे श्रम दिवस पर
1: जी हाँ।
0: तो हमने कहा कि 38 में ये पहली बार शुरू हुआ था।
1: हाँ, ये मॉरिशस की बात।
0: हाँ, ये मॉरिशस की बात, क्योंकि मैंने खोज की जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, वहाँ काफी दिन पहले से होता है।
1: जी हाँ, अमेरिका में भी,
0: इंग्लैंड में भी सब
1: जी हाँ।
0: और इंग्लैंड में तो लेबर पार्टी है, लेबर
1: जैसे मॉरिशस में
0: मजदूर दल
1: दल,
0: तो उसका नाम ही है मजदूर दल। क्यों? वो 47 लोगों ने बनाया था।
1: अच्छा, श्रमिक संघ के।
0: हाँ, श्रमिक संघ के, जैसे हाँ, मॉरिशस में लेबर पार्टी।
1: हाँ,
0: हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम इतिहास बोल रहे हैं
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: कि वही बदल गया पॉलिटिक्स में।
1: 1948
0: में पहली बार चुनाव हुआ जब हमारे लोगों ने वोट डाले थे
1: जी हाँ।
0: और तब से लगातार आज तक होते आ रहा है, अभी गत साल हुआ।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब श्रम क्यों मनाते हैं? जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके, मॉरिशस में इतिहास पढ़ेंगे तो ये संजिका जिसको बोलते हैं हम संघ, मजदूर मजदूरों के
1: श्रमिक संघ,
0: श्रमिक संघ
1: हाँ।
0: और समुद्र में जो काम करते हैं, माल उतारते हैं, लादते हैं, वे भी, तो उन लोगों का संघ नहीं था।
1: अच्छा
0: हाँ, ये मॉरिस किरे ने पहली बार बनाया और वो कियोस जो है आज तक मौजूद है, उसको तोड़ते नहीं है शादी मॉस में।
1: हाँ,
0: इधर से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में
1: हाँ,
0: आर्य सभा मिलने से पहले लेफ्ट हैंड, वो ऐतिहासिक कियोस है, उसको
1: अच्छा,
0: तोड़ेंगे नहीं।
1: हाँ, बिल्कुल,
0: आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी देखते रहेगी, पूछेंगे क्या
1: हाँ,
0: है
1: क्या
0: नहीं
1: है, उसका इतिहास जानना,
0: इतिहास जानना चाहता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक देश का इतिहास सबसे बड़ी चीज है।
1: हाँ,
0: जिस देश के लोग इतिहास नहीं जानते हैं वे भविष्य बना नहीं सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वर्तमान में खड़े होकर भूतकाल में जो बीता उसके अनुभव लेकर हम भविष्य बनाते हैं। ये तीनों कालों का प्रयोग होता है।
1: सही सही है।
0: तो श्रम, जैसे आरंभ में कहा हमने, श्रम बहुत देशों में है, खासकर मैं जब खोज कर रहा था विश्वकोश जब उलाटा
1: जी हाँ,
0: तो देखा कि ऑस्ट्रेलिया में
1: हाँ,
0: न्यू साउथ वेल्स में, क्वींसलैंड में
1: अच्छा,
0: और हम तो पहली मई को मनाते हैं
1: हाँ,
0: सर्वत्र पहली मई को नहीं मनाते हैं।
1: हाँ हाँ, कहीं पर सितंबर में भी मनाते हैं,
0: अक्टूबर में भी मनाते हैं, कहीं सितंबर में आते हैं।
1: सितंबर का पहला जो सोमवार आता है,
0: सोमवार आता है। तो जैसे साउथ वेल्स में, न्यूजीलैंड में वो अक्टूबर में मनाते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और कहीं मई में हम
1: लोग तो मई मनाते हैं।
0: क्वींसलैंड में मई में मनाते हैं या उसके आने वाले मंडे को मनाते हैं, सोमवार को
1: जी हाँ।
0: तो वो लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, हम पहली मई को करेंगे और वो लोग जिस तारीख को शुरू किया था वो उसको मनाते हैं।
1: हाँ जी हाँ। तो प्रीतम जी, देखिएगा श्रम दिवस मतलब हमारे यहाँ एक आम छुट्टी का दिन है जी हाँ। तो ये जो श्रमिक संघ लोग हैं, किस तरह की गतिविधियां आयोजित करते हैं
0: करते हैं

0: ऐसे तो श्रमिक संघ गतिविधियां मनाते ही आते हैं
1: जी,
0: एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, लेकिन चूंकि आम छुट्टी का दिन है उससे फ़ायदा उठाते हुए हम अपने लोगों को, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की,

0: बनाया गया, खड़ा किया गया, उसकी याद में हम स्मशान भूमि में जाते हैं,
1: हाँ,
0: फूल चढ़ाते हैं,
1: हाँ,
0: याद करते हैं।
1: हाँ, ये जो नाम अभी आपने लिए,
0: हाँ,
1: जो जैसे पंडित सहदेव,
0: सहदेव
1: उनकी समाधि पर,
0: हाँ, राम नारायण,
1: हाँ,
0: जगदम्बी और बहुत है।
1: अच्छा अच्छा ठीक है।
0: होजमो को भूल नहीं सकते हैं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: वो आरंभ के लोग हैं,
1: हाँ,
0: और वो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, अनुभव था उनका, ऐसे पढ़ने लिखे जानते थे,
1: हाँ,
0: लेकिन
1: हाँ,
0: अकादेमिक,
1: हाँ,
0: विद्वान बोलते हैं वो,
1: हाँ,
0: लिटरेचर का आदमी नहीं थे। लिटरेचर का आदमी नहीं आता है इधर,
1: बिल्कुल
0: अध्यापकों, हाँ, के संग में वो, हाँ, अध्यापक होंगे।
1: हाँ, एक नाम शायद छूट रहा है हम लोगों से, ये जो है अंजलि कूपन। हाँ,
0: अंजलि कूपन को हम भूल नहीं सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मॉरिशस स्वतंत्र हुआ बिना खून बहाए, भारत में देखो कितने खून बहा। तो मैंने कहा भारत की आबादी के मुताबिक उनकी संख्या बड़ी होनी चाहिए। मॉरिशस में मुश्किल से 1 मिलियन लोग हैं, 1.3 मिलियन या 4 मिलियन कुछ भी हो, तो यहाँ भी तो बेलजाहेल में 4 आदमी ने खून बहाया, फिर फ्यूएल में,
1: जी हाँ,
0: फिर लिस्कालिए में,
1: बिल्कुल,
0: तो इतना बस है, और कितना खून बहा,
1: काफी खून बहा
0: हाँ, और अंजलि ने तो कमाल कर दिया भाई,
1: बिल्कुल,
0: वो तो गर्भवती थी,
1: बिल्कुल, हाँ,
0: उसमें उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी हलाक हो गया, चला गया। और खुशी की बात ये है कि जिस गांव में मैं रहता था,
1: अच्छा, कोटेज में
0: उन लोगों को वहीं पर अंत्येष्टि क्रिया हुई है।
1: अच्छा अच्छा, ये सब तो ऐतिहासिक
0: बात है। ऐतिहासिक
1: है, हाँ, बहुत अच्छा।
0: और मैं 1943 में मैं 4 साल का था, मुश्किल से 4.5 साल का, तो मैंने देखा वासुदेव सुंदियाल आगे आगे चल रहे थे, नहाले धोले शीश गुथाले चतुर अलबेली,
1: वाह,
0: ये गाते थे, और बहुत से लोग प्रोसेशन में,
1: हाँ,
0: जा रहे थे,
1: हाँ,
0: राली निकालते थे। और इसके बाद भी पंडित राम नारायण हरदम, चूंकि कोटेज में उन लोगों का अंत्येष्टि क्रिया की गई थी,
1: हाँ,
0: तो कोटेज में जो फोबाक है, एक बहुत बड़ा विशाल मैदान है, वहाँ हर साल 27 सितंबर को,
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो 27 सितंबर 1943 में वो हत्या गोलीकांड हुआ
1: हाँ,
0: था,
1: हाँ,
0: तो हर साल मनाते थे, और मैं छोटा था जाता था वहाँ पर,
1: हाँ,
0: कभी कभी जब थोड़ा बड़ा हो गया 9-10 साल का,
1: हाँ,
0: तो पंडित राम नारायण कोटेज ही का था, मैं उसे चचा बोलता था, मेरे पिताजी का मित्र था, तो वो हमें 2 शब्द बोलने को की मांग करते थे।
1: तो शायद आपको जो है तभी से वो भाषण देने का,
0: हाँ,
1: जो है,
0: और फिर भाषण देने की बात आ गई जब मैं धार्मिक सेवा शिविर में प्रवेश किया।
1: अच्छा, 67
0: में,
1: जी हाँ,
0: स्वतंत्रता से 1 साल पहले,
1: हाँ,
0: तो उसमें भी मैंने माइक पकड़ना सीख लिया,
1: बहुत अच्छा,
0: और भाषण देना सीख लिया, और जब हिंदी शुद्ध बोलने लगा तो चारों तरफ से मांग।
1: हाँ, अच्छा प्रीतम जी, देखिएगा जैसे अभी शायद आपने कहा कि हम श्रम दिवस पर गोष्ठियाँ भी आयोजित करते हैं, तो उन गोष्ठियों में विषय शायद यही है कि श्रमिकों की जो है उनका स्टेटस जो है बढ़ाना है,
0: मतलब भूलते नहीं है।
1: अधिकार जो है,
0: हाँ, अधिकार केवल ये जो संघ है, केवल अधिकार मांगने की बात नहीं है, बहुत सी बातें हैं उसमें, अधिकार तो है ही, कहीं पर जुल्म ढा रहे हैं,
1: हाँ,
0: काम अधिक करा रहे हैं,
1: जी हाँ,
0: पैसा कम दे रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, बहुत बहुत बातें इसमें आ जाती हैं श्रमिक संघ में।
1: तभी तो लेबर ऑर्डर के मुताबिक जो है 8 घंटे प्रतिदिन केवल,
0: प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक नहीं। हाँ, हमारे पूर्वज जब आए थे,
1: हाँ,
0: मुझे मालूम था, मैं छोटा था, पिताजी कुछ दिन के लिए मजदूरी करते थे, वो गाड़ीवान थे,
1: हाँ,
0: तो सुबह निकलते थे, पिताजी के मुंह हम नहीं देख पाते थे, और शाम

0: हमको लौटे थे तो मुंह नहीं देख पाते थे,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: तो हम केवल रविवार को पिताजी के दर्शन कर सकते थे, ऐसी बात
1: है। लेकिन जो है प्रीतम जी कभी सुना है कि रविवार को भी उन लोगों से काम लिया जाता था?
0: तो रविवार को तो काम लिया, वो लोग जब गिरजाघर जाते थे मालिक लोग तो कोवे बोलते हैं ना कि इतना काम करो, तो ताकि वो कभी छुट्टी नहीं मिलती थी।
1: हाँ ठीक है, तो हम आज के इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच आए हैं। हम अपने अतिथि श्री प्रीतम जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे, अपने श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, और आज हमारे जो टेक्नीशियन है उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और मजदूर दिवस की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को हम पेश करना चाहेंगे। तो अगले सप्ताह इसी तरह के कार्यक्रम को लेकर हम आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और हमारे जो अतिथि है श्री प्रीतम जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।
1: ठीक है, फिर मिलेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घड़ी मिलाल फजर के 8 बजल बा। सुना संक्षिप्त समाचार सुना जा सबको के नमस्ते आरी बुलेटिन में स्वागत। मॉरिशस में कार्य परिस्थिति आरी औद्योगिक संबंध की आर बेहतर बनाए के ये उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत करल गल प्रस्ताव की समीक्षा करी जिमें कानून में सुधार आनल जा सकी। काल सांझ के जनता के संबोधित अपन संदेश में श्रम मंत्री रिजाओ तिम बतैलन कि कई गो सुधार प्रस्तावित करल गल है। इमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में काम करवा लोग के परिभाषा की समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचा के निर्धारण आदि, वर्क फेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़ल पहलू शामिल बाटे। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन के कीमत में बढ़ोतरी आवत बाटे। मॉरिशस के संचालन लागत परी एकरा से दबाव होत बाटे। एकर परिणाम यह कि हवाई टिकट के कीमत परी एकर असर पड़े सकी। स्थिति से निपटे खातिर राष्ट्रीय विमानन कंपनी एगो वॉर रूम स्थापित करले बाटे, एगो समिति जेकर उद्देश्य ई बढ़ोतरी के प्रभाव के कमती करे के हो। 33.4 मिलियन रुपया ई कुल राशि है फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन जे अपन पहला नीलामी के दौरान एकत्र करले बाटे। ई आयोजन 4 दिन लेक चली और एकर से प्राप्त धनराशि के एगो हिस्सा के प्रयोग राष्ट्रीय विकास परियोजना खातिर करल जाए। ई नीलामी 27 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित करल गल। कुल मिला के 48 वाहन बेचल गल, जिनमें 7 गो नौका, 7 मोटरसाइकिल, 2 बबकट मशीन आरी 2 गो ट्रक शामिल बाटे। अस्पताल के गते गते एगो वास्तविक वन स्टॉप शॉप में बदले के जहाँ परी मरीज लोग के एक एक गो जगह परी सब सुविधा मिली। इति सरकार डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर के उद्देश्य है जेकर उद्घाटन बुध के स अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल फ्लाक में करल गल। ई एगो पूर्ण इकाई है जेकर लक्ष्य मधुमेह के उपचार के मजबूत करे के है। विदेश के खबर में भारत के हैदराबाद में तेज रफ्तार से चले होला गाड़ी नियंत्रण खो के एगो ट्रक से टकरा गल। ई हादसा में 4 जना के मौत भेल बाटे, 1 जना के गंभीर रूप से घाव लगल बाटे, ओकर हालत नाजुक बाटे। ई दुर्घटना के सही कारण के पता लगाए खातिर एगो जांच शुरू कर गल ह। ई रहल संक्षिप्त समाचार, तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमनी के आज्ञा दिए, नमस्ते।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: Shok samachar suna ja. मिशन क्रॉस रोड बोनाकई में 82 बरिस के कथवा दुजों के श्रीमती राधिका नुबीन, श्रीमती नादिका नुबीन जे राधिक नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। सांझ के 3 बजे उनकर घरे मिशन क्रॉस रोड मोनाकई से उठा के क्रियाक्रम खातिर इलाका के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टू डेट 3 PM ब्लॉक 16 कॉम्बन वैन कौचे मिलितिया में 71 बरिस के 67 वर्षों के जनाब आज़ाद अकीम, जनाब आज़ाद अकीम गुजर गल हवन। जनाजा आज फजर के 10 बजे उनकर बेटा अकीम वजीफ मोहम्मद के घरे ब्लॉक 16 कॉम्बन वैन कौचे मिलितिया से उठा के दफनाए खातिर आलमा के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडिया 10 AM हाईलैंड्स रोड फिनिक्स में 89 बरिस के खतवैनवों के मिसिस बी बी रुकियान भाई सुभाची, मिसिस बी बी रुकियान भाई सुभाची पैराशी नाम हुसैन बख्स आजे रुकियान नाम से जस्सी जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी। 11 बजे उनकर घरे हाईलैंड्स रोड फिनिक्स से उठा के दफनाए खातिर इलाका के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडिया 11 AM कौबुम्बाई फॉरेस्ट साइड में 59 बरिस के 57 वर्षों के श्रीमती श्यामा देवी दागा, श्रीमती श्यामा देवी दागा पैराशी नाम रामहित आरजे अनीता नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरकल हवन माटी। दिन के 1:30 बजे उनकर घरे कौबुम्बाई फॉरेस्ट साइड से उठा के क्रियाक्रम खातिर बिगाहाला भास्खे के श्मशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टू डेट 1:30 PM 80 बरिस के काथोवेंतों के श्रीमती धनवंती सुखराम, श्रीमती धनवंती सुखराम जे मामा सुनील नाम से जस्ती जानल जातलन गुजरगल हवन माटी डूबज के आधा परी उनकर लाशा पेला दौते लियन सन सोथवायल बुबासन से उठा के क्रियाक्रम खातिर पिछित क्रिया के श्मशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टू डेट 2:30 PM। नंबर 5 स्वामी दयानंद स्ट्रीट बुबासे में 50 बरिस के सैकों तौके श्री निर्मल दुकी, श्री निर्मल दुकी जे विक्रम नाम से जस्सी जानल जातलन गुजरगल हवन माती दिन के डूबजे उनकर घरे नंबर 5 स्वामी दयानंद स्ट्रीट बुबासे से उठा के केराकरम खातिर शिव बैल के श्मशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टूडे 2 PM। Avenue Payanque, Mosselman sans souci Montagne Blanche, mais 60 bariske 60 tanke, Shri Haridat Takodin, Shri Haridat Takodin, Je Suraj Nam se Jasti Janal Jatalan Guzargal Hawan, Mati Din ke 12 baje unkar bhai, Danan Takodin ke ghare, Avenue Payanque, Mosselman sans souci Montagne Blanche se uthake, Kirakaram khater ilaka ke shmashan bhumi le jabal jaye, permission today at noon. शिवाला रोड लाघमो सैंपिया में 67 बरिस के 67 अंके श्री संजीवा नरसिम्हा पादू, श्री संजीवा नरसिम्हा पादू जे संजीवा विष्णु नाम से जस्ती जानल जाथलन गुजरगल हवन माटी आज दिन के 4 बजे उनकर पत्नी एमा पादू के घरे शिवाला रोड लाघमो सैंपिया से उठा के किराकरम खातिर सैकुंस्तों सैंपिया के श्मशान भूमि ले जावल जाए परमिशन टू डेट 4 PM। शोक में डूबली सब परिवार संगे हमने के सहानुभूति है।
0: ये है रेडियो मॉरिशस।

छोटी सी है बात दिल नहीं माने, बहुत ही प्यारा सा गाना था यह। हमें यकीन है आपको गीत पसंद आया होगा। इट वॉज फ्रॉम द मूवी काश। सुबह 11:16 हो रही है, आप हमें सुन रहे हैं AM2 MBC रेडियो मॉरिशस पर। लीजिए सुनिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं। सत्य साई बाबा गुडलैंड साई सेंटर में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है आज शनिवार 2 मई को दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच। And the venue is Anai Velan Kani Goodlands near Fashion Bazaar. So, हमेशा याद कीजिएगा कि खून का जो डोनेशन होता है, रक्तदान होता है, बहुत ज़रूरी होता है किसी की जान बचाने के लिए। और अक्सर देखते हैं लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है, या मैटरनिटी वार्ड में खून की कमी होती है, या कोई भी बीमारी हो, लोगों को खून चाहिए। सो इसीलिए ये आपको आमंत्रित किया जाता है, पूरी जनता आमंत्रित है इस रक्तदान में भाग लेने के लिए। सो डोंट फॉरगेट, आज रक्तदान का आयोजन किया गया है श्री सत्य साई बाबा गुडलैंड साई सेंटर में, और समय है दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। 1 drop of blood can save the lives of so many people, so don't forget, service to man is service to God. Om Sai Ram. और एक सूचना है, जी हाँ, अखंड वृंदावन सार्वजनिक मंदिर आपको और आपके पूरे परिवार को अखंड हनुमान चालीसा चैंटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। संडे 3 मई को होगा ये, सुबह के 6 बजे से नॉन स्टॉप शाम के 6 बजे तक। द रेंडेवू इज एट वृंदावन सार्वजनिक मंदिर, पालमा रोड, कैटरबोर्न। सुबह के 5 बजे का कलश स्थापन, हनुमान अभिषेक और पूजा, फिर 6:02 से लेकर शाम के 6 बजे तक अखंड हनुमान चालीसा। उसके बाद 6:02 शाम के 6:02 पर महायज आरती और महाप्रसाद का वितरण होगा। सभी लोगों को आमंत्रित है इस अखंड हनुमान चालीसा गायन में भाग लेने के लिए। सभी आप सुन रहे थे कुछ ज़रूरी सूचनाएं।

सुबह 11:18 मिनट और अभी से लेकर 9 बजे तक सुबह का नजराना प्रोग्राम डेडिकेशन टाइम। किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, मंगनी है या कोई भी खास मौका, और अगर आप उनके नाम संदेश भेजना चाहते हैं तो फोन कीजिए 4028085 पर। कल संडे को साइलिश महावीर अपना जन्मदिन मना रही है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, बधाइयां और प्यार है उनकी, बधाइयां और प्यार उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके पिताजी जीवन महावीर और सब महावीर परिवार की ओर से साइलिश महावीर को ढेर सारा प्यार। और ए दोस्त, आपको हमारी ओर से भी ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो और आपके सभी सपने पूरे हो। एंड साइलिश महावीर इज़ ए वेरी गुड पर्सन, दिल के बहुत अच्छे और नेक इंसान और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो ए दोस्त, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर एमबीसी की पूरी टीम की ओर से साइलिश महावीर आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हैप्पी बर्थडे टू यू। और चलिए इसे में सुन आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी कामचोर।

0: MBC, Astia de Oulame. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get une chaîne en direct, écoute une radio préférée, découvre films, séries et si tu parles au journal télévisé, n'importe quoi tu été. Download MBC Play au App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
1: जी एमबीसी प्ले पर आप हमें सुन सकते हैं। यस, जितने भी हमारे एमबीसी के टीवी चैनल्स हैं आप देख सकते हैं एमबीसी प्ले पर। सो यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यू कैन लिसन टू ऑल आवर रेडियो प्रोग्राम्स एंड वॉच टीवी प्रोग्राम्स ऑन एमबीसी प्ले। सो 11:25 और बेशक अगला गाना तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है। फिल्म का नाम है कल की आवाज़ और ये गीत खासम खास देवदत्त शिवरतन जी के नाम उनकी प्यारी सी पत्नी है साकुन, बेटा है कबीश विशाल और उनके सभी परिवार जो मिडलैंड्स और रोजबेल के रहने वाले हैं। और यह गीत ईश्वरलाल मोहन की रोशन की प्यारी सी पत्नी है इंदिरा, बेटा है अजय, बहू है आशा, गोविंद परिवार जो बिलनौर मेबक से है और काहो मान्युक के सभी निवासियों के लिए, काहो मान्युक मेबक के सभी निवासियों के यह गीत चलेगा बहुत बहुत प्यार के साथ। और आज सुनील दोमा का जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे सुनील दोमा जी, रहते हैं मोहताबा, बधाई और प्यार चंपा रामगतिया, देविका रामगतिया और सब रामगतिया परिवार की ओर से, और सुनील दोमा की पत्नी उनके बेटे बेटी की ओर से सुनील दोमा को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद है। साथ में एक गीत हम चलाएंगे आशा बेनी की नाती के नाम आहान है उनका नाम, पांचवा जन्मदिन है, बधाइयां हैं नानी आशा, नाना भावीश, मौसी नानसी और उनके सभी परिवार की ओर से। यह गीत हम चलाएंगे विश्वानी बाबूलाल के नाम उनके पति और बच्चों के नाम, वीना कुबसामी मेबक से है, सुलमा दुखी मेबक से, वीरापेन आपाया साजू होसाई दीना और प्रतिमा, ये गीत आपके नाम ही, और माधव की ओर से गीत उनकी मामा टीना, पापा कवि, दादी माला, पुपुरीना और सब बड़ा परिवार के नाम। राज मन्ना जी वहीं से है आपके नाम और सब मन्ना परिवार के लिए। जिमी दुखिया गीत आपके नाम, आपकी बेटी, आपकी माताजी, आपके भाई भाभी और पूरी दुखिया परिवार के लिए। जसवा जी हमारा साथ दे रहे, जसवा जी की ओर से उनकी मामा राजकुमारी सुदेश जसवा, उनकी मां राजकुमारी और सब जसवा परिवार के लिए। रतन निहाल गांव से उनकी पत्नी करुणा, पापा विजय और उनके पूरे परिवार के नाम। और यही गीत हम चला रहे हैं रेडियो मॉरिशस के सभी सुनने वालों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए इस समय। इंदिरा लौटन मौदालबे से है, ये गीत हम चलाएंगे लंदन में उनके परिवार के लिए, फिर राजेंद्र जी और इंदिरा जी और उनके पूरे परिवार के लिए। चित्रा जी मौदालबे से है, यही गीत संगीता अमीरन के नाम, रीता सितालू की ओर से। और प्यारा सगाना आप के नाम भी जो हमारे साथ जुड़े हुए रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। एकदम ही प्यारा सा एकदम सदाबहार गीत जो गीत हमेशा लोग सुनना चाहते हैं, बार बार इस गीत के लिए हमारे पास डेडिकेशन ईमेल्स आते रहते हैं। सो वो गीत गूंज पड़ा, तुम्हारी नजरों में हमने किसी को देखा और किसी को किसी से प्यार हो गया।

0: तुम्हारी नजरों से हमने देखा जब से चाहत झलक रही है, ओए होए क्या बात है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है और इस समय आप लोग हमारा साथ दे रहे, क्या बात है क्या बात है। सुबह 8:32 अगला गीत आइए मेहरबा, हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना है और देखते हैं लाइन पे कौन से दोस्त इंतजार कर रहे हैं। सुरागनी और कमला जी है, कमला जी काटकोको से है। हेलो कमला जी।
1: नमस्ते प्रताप जी,
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: सो आपको गाना होगा आइए मेहरबा,
1: जन्मदिन था मेरे नाती के जन्मदिन।
0: क्या नाम है?
1: आसनव नाम है उसका, और बाप के नाम है संजय, और माँ के कविता, और बहन के अनुष्का, और एक भाई के आविश। हम ऊपर दादी है, दादी सब रामायण परिवार की ओर से, तो वो अच्छा से पढ़ी, अच्छा से बड़ा आदमी बने, 100 साल तक जिए। जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं
0: जी, हमारी ओर से भी उन्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।
1: धन्यवाद, शुभ दिन।
0: शुभ दिन आपको। और एक दोस्त है लाइन पे, आइए मेहरबा। हेलो
2: हेलो पता भाई, नमस्कार।
0: सुरागिनी जी आपका स्वागत है।
2: हाँ, तुम लालन नहीं ले रही हो क्यों?
0: अगे एक के गोलालीन बा मम्मा साहब कोई सुने का एक ही लाइन है ना, बोलिए।
2: मेरा शादी का जन्मदिन है, मेरा शादी की सालगिरह है।
0: शादी की सालगिरह, कांग्रेचुलेशंस, वाओ क्या बात है, बधाई हो बधाई।
2: यही प्रार्थना करती हूँ जब देखिए सांस है।
0: और आपके पति पति दुल्हा का नाम क्या है?
2: चंद्रदेव।
0: चंद्रदेव और सुरागिनी, क्या नाम है?
2: रघुपति वार।
0: ओके सुरागिनी, आप हमें बताइए, आप 40 साल से आपकी शादी हुई है उनके साथ, कभी कभी होता है नोक झोंक होता रहता है?
2: हाँ होता है,
0: ये तो सभी कपल्स में होता है। फिर भी आप उनसे बहुत प्यार करती है?
2: हाँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करती
0: है, अपनी जान से भी ज्यादा, क्या बात है। हाँ, तो प्यार सा गीत।
2: तीन बच्चे है, सब शादी कर दी है।
0: ओके ओके,
2: शादी कर दिया। आशील, गजन, निष्ठा, बहु अर्चना,
0: हाँ,
2: और चार बच्चा है, अमाया सनाया।
0: सब दादी भी है, नानी भी है।
2: हाँ,
0: क्या बात है।
2: बेटी का दो बच्चे है, वैष्णव भूषाली, और एक अभी शादी हुआ है, 2 साल जा रही है, आशील नितुषा। यही सब रघु परिवार,
0: बाशेरी
2: से सब रघु परिवार।
0: ओके
2: ओके, स्वागत।
0: हाँ जी, हम भी दुआ करते हैं कि आपकी जोड़ी राम सीता की तरह हमेशा सलामत रहे, ठीक है?
2: धन्यवाद मेरा भाई।
0: ओके जी, ढेर सारा प्यार आप लोगों को। और दो से लाइन पे उनसे मिलेंगे। किस नाव थे जी? हेलो हेलो
3: हेलो,
0: नमस्ते, किस नाव थी जी, कैसी है? लगता है आपकी लाइन में प्रॉब्लम है, क्षमा चाहते। यस, हेलो हेलो
3: हेलो,
0: नमस्ते।
3: नमस्ते धर्म जी।
0: नहीं, मैं प्रताप सिंह हूँ। आप कैसी है?
3: कैसे हो? ठीक है?
0: ठीक है, आप कैसी है?
3: मैं ठीक हूँ।
0: अगला गाना
3: से गायत्री।
0: हाँ गायत्री जी, आपका। हाँ बोला गायत्री, बोला।
3: हाँ, वो गीत मांगा था ले जी के गोलानी वैसे रहा हमारे मौसी के कौसाब रहेला।
0: कौन नंबर?
3: सीओ।
0: ओके,
3: सीओ बोलिला सर।
0: प्यार से?
3: आरो प्यार से। हाँ, ओकर दामाद बा विकी।
0: हाँ,
3: आरो ओकर बेटी बा कोमल। आरो ओकर नाती बा मनवीर। आरो ओकर बेटा बा नीतीश।
0: ओके,
3: आर हमारे तरफ से डाल देगी को जन्मदिन के गीत ऊपर।
0: ओके,
3: डाल के गीत डाल देगी, डाल दिया।
0: ओके, प्यार सा गीत उनके नाम करेंगे, ठीक है?

अभी चलिए तो बढ़ते गीत की ओर। आइए मेहरबान, आशा भोसे की आवाज़, फिल्म का नाम है हाउ रब्रिज। और जितने भी लोगों को ये गीत पसंद है, ये गीत आपके नाम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग मॉरिशस, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल लिसनिंग टू मी फ्रॉम अब्रॉड। अगर अभी किसी देश में रात है तो गुड नाइट, कहीं पर शाम है तो गुड इवनिंग, और कहीं पर यहाँ पर तो मॉर्निंग का समय है। मस्त मॉर्निंग शो सुबह का नजाना दिन के 9 बजे तक। चलिए मेहरबान, आपके नाम भी हो जाएगी। तो ऑल द लड्डूज एंड तितलीज, ये प्यारा सा गीत हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये गीत आपके नाम भी।

आइए मेहरबान पधारिए, बैठिए और हमें सुनिए रेडियो मॉरिशस की लहरों पे। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों का साथ। और अगला गीत हर दिल जो प्यार करेगा, उदय धनीराम जी के वजपोर से, उनकी प्यारी सी पत्नी है, बेटी बहू, बेटी दामाद और सब धनीराम परिवार के लिए। और ये गीत गीता जी के नाम, जो पोंफिया से हमें सुन रही है, हेलो जी। और रमा जी स्विट्जरलैंड से है, अजय और पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से है, और माता जी इंदिरा चिंताराम है यहाँ पर, चंदन उनके बेटे चंदन, बहू प्रिया, बेटी सलोनी, दामाद और सब चिंताराम परिवार के लिए अगला गीत जाएगा। और ये गीत हम चलाएंगे लाजवंत जी के नाम, बहुत बहुत प्यार के साथ। अनिता है फ्लिकॉन फ्लैग से, हेलो जी नमस्ते। एंड फिर यही गीत हम चलाएंगे विनय के नाम, विनय के, उनके दो बेटे हैं, पत्नी है और सभी परिवार, सब दुखन परिवार हमारा साथ दे रहे हैं। वाकवा से, हेलो जी, ये गीत आपके नाम भी। और जो लोग बीमार है, घर पे है, आराम पर मारे, अस्पताल या क्लिनिक में, ये गीत आप लोगों के नाम भी। और जो लोग अनाथ आश्रम में है, जिनका कोई नहीं है दुनिया में, और जो लोग मुश्किल घड़ियों से गुजर रहे, कठिन परिस्थितियों से गुजर, जो लोग डिप्रेशन में है, किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजरे हुए, या कोई आपके जीवन में आज नहीं रहा, वो भगवान को प्यारा हो गए, तो हम आपके साथ हैं। इस मुश्किल घड़ी में आपको अपने आप को संभालना है। देखिए, ज़िंदगी में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब किसी न किसी को जाना पड़ता है दुनिया से। हम लाख कोशिश कर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का यही नियम है कि जो भी आता है उसे जाना पड़ता है। सो हम एक दिन रोएंगे, दो दिन रोएंगे, एक सप्ताह, एक साल रोएंगे, उसके बाद क्या वो व्यक्ति लौट कर आएगा? कभी नहीं। सो एट टाइम्स यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू हैव टू बी रियलिस्टिक, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे। हम जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, वो आपके जीवन का अंग था, पर समय आने पर सबको जाना पड़ेगा। एक दिन हमारी भी बारी आएगी, बारी बारी से सभी लोग जाएंगे, बट वी हैव टू बी स्ट्रांग। इस मुश्किल घड़ी में भगवान आपको शक्ति दे, हम आपके साथ हैं, ठीक है। सो प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ चलिए अगला गीत सुनिए, हर दिल जो प्यार करेगा। अंग्रेजी में कहावत है, लाइफ इज अ शो एंड द शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए।

0: काश हर दिल में हर किसी के लिए प्यार मोहब्बत हो तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, लड़ाई झगड़े ना हो, सभी के दिल में बस मोहब्बत ही मोहब्बत हो। यही बस दुआएं हमारी रब से कि सबके दिल में प्यार हो, क्योंकि देखते हैं आजकल दिलों में बहुत सारी नफरतें हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी को देखकर मुंह चुराता है, तो कोई किसी को देखकर निंदा करता है। क्या हो गया है लोगों को आजकल? पहले का ज़माना कुछ और था, लोग गरीब ही थे पर सभी लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के पास जाते थे, अपनापन दिखाते थे। आज लोग इतने इंडिविजुअल सेल्फिश हो गए हैं कि क्या बताएं। सभी लोग केवल अपने मतलब के लिए देखते हैं, कोई किसी को नहीं देखता है कि किसी को किसी की ज़रूरत है या नहीं। वेल, हम तो दुआ करते हैं कि सभी लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे, एक दूसरे से मिलें और ये समाज खूबसूरत बन जाए। सुबह 11:50 चंदन सा बदन, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी सरस्वती चंद्र, 1968 में बनी थी ये फिल्म। और ये प्यारा सा गाना हम चलाएंगे इन सब लोगों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो
1: हेलो भाई जी,
0: नमस्ते जी।
1: नमस्ते, लाइन नहीं मिल रहा है।
0: अभी तो आपको लाइन मिल गई, आप कहते हैं लाइन नहीं मिल
1: रहा है ना, कब से मैं ट्राई कर।
0: हाँ तो बहुत से लोग फोन कर रहे हैं ना, बोलिए।
1: मेरी नातिन का जन्मदिन है, अब दिख सता पता नहीं नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा लाइन या नहीं मिलेगा, इसलिए मैं मांग रही हूँ एक गीत। मेरी नातिन का नाम है कृतिका और उसका बहन का नाम है श्वेतिका, उसका मामा का नाम है रेशमा, उसका पापा का नाम है विजय। बंधु परिवार और अधिकारी परिवार के लिए, आपके भी लिए, मेरी नातिन का 18 साल होगा।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें ढेर सारा प्यार है।
1: हाँ
0: ओके, और एक दूसरे लाइन पे हेलो।
2: हेलो
0: नमस्ते।
2: नमस्ते,
0: आप कौन है?
2: मैं श्रीमती हूँ
0: से।

0: पापा के नाम है शक्ति, मामा पूनम और दुगो चाचा के तरफ से, राकेश संजय दुगो चाची के तरफ से, आसना के जन्मदिन के बधाई देवत हवन सब, और उनका भाई है अखिलेश, और कल दुगो नाती के जन्मदिन रहल, नाती के एगो के नाम रहल नीलेश, एगो के नाम है विघ्नेश, और पापा राकेश, मामा निष्ठा, और पापा विकी, मामा दिव्या, और सब चंद्रमुनि परिवार के तरफ से, और हम दादी हैं सब परिवार के तरफ से, दोनों तीनों लड़का के बधाई देवत हैं सर, अच्छा से अपन जीवन में पढ़ियन सर, लिखियन सर, माँ बाप के नाम रोशन करियन जा, और सब परिवार के नाम रोशन करे खातिन लड़का लोग के आशीर्वाद देवत हैं सर।
1: हमारी ओर से भी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया। चलिए बढ़ते गीत की ओर। चंदन सबदन, हाय हाय क्या बात है, अगर हर कोई अपनी महबूबा या प्रेमिका ये गीत गाए तो प्रेमिका कभी नाराज ना हो।

हीरे से तेरा ये मुस्काना चंदन सा बदन। और इसी प्यारे से गीत के साथ ही सुबह का नजराना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने को आया है। सुबह के 6 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, आपके फोन कॉल्स और SMS के लिए शुक्रिया। 9 बजे समाचार, समाचारों के बाद आप सुनेंगे।

टाइम मैगजीन किरण चतुर जानकी के साथ हमारी आपकी मुलाकात यहीं तक थी। अब हम आपसे मिल रहे हैं कल संडे की शाम को, शाम के 3 से 4 बजे रेडियो मनोरंजन पर प्रोग्राम होगा ऐसा भी होता है। तो कल तक हमें दीजिए इजाजत। अजय प्रताप सिंह की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। नमस्कार, शुभ दिन, बॉन वीकेंड।

0: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 9 बजे हैं और संक्षिप्त समाचारों के साथ उपस्थित हो चुकी हैं याचना। नमस्कार याचना।
2: नमस्कार किरण और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल ही में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार लाया जा सके। कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रेजाउद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा करना, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचे का निर्धारण करना और वर्कफेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल होंगे। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की। विमानन क्षेत्र में पूर्व मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित उपायों का अध्ययन करना है। लक्ष्य है बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीतियों को तेजी से समायोजित करना। 33.4 मिलियन रुपए, ये वो कुल राशि है जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी पहली नीलामी के दौरान एकत्र की। यह आयोजन 4 दिनों तक चला और इससे प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। ये नीलामी 27 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित की गई। कुल मिलाकर 58 वाहन बेचे गए, जिनमें 7 नौकाएं, 7 मोटरसाइकिल, 2 बॉबकट मशीनें और 2 ट्रक्स शामिल हैं। ये प्रक्रिया FCC एक्ट के 29 मार्च 2024 से लागू होने के बाद संभव हो सकी है। अब आयोग को अपराध से जुड़े ये जब्त किए गए सामानों को बेचने का अधिकार प्राप्त है। अस्पतालों को धीरे धीरे एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप में बदलना, जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाओं से लाभ उठाने का मौका मिले, यही तीसरे डायबिटीज एंड वास्कुलर हेल्थ सेंटर का उद्देश्य है, जिसका आधिकारिक उद्घाटन बुधवार 29 अप्रैल को किया गया। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल फ्लैक में ये उद्घाटन समारोह लगा। ये एक पूर्ण इकाई है जिसका लक्ष्य मधुमेह के उपचार को मजबूत करना है, एक विशेष दृष्टिकोण के माध्यम से एक ही संस्थान के भीतर। विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो गया है क्योंकि वर्तमान में एक युद्ध विराम लागू है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें युद्ध से संबंधित विधायी मंजूरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और चलते चलते हम आपको बता दें कि इस फ्लैश न्यूज़ के बाद आज की चर्चा श्रम दिवस पर आधारित रहेगा। फ्लैश न्यूज़ के बाद किरण जानकी के मेहमान होंगे अप्रवासी घाट ट्रस्ट वन के अध्यक्ष सुखेन रामदास और तहल रामदीन। आप इसे इस फ्लैश के बाद देख पाएंगे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius.
4: Yeah.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: नमस्कार, आज की चर्चा कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा आज आधारित रहेगा श्रम दिवस पर। कल 1 मई को दुनिया भर ने श्रम दिवस फेजुथावाई लेबर डे मनाया। लेकिन इसके पीछे क्या संघर्ष रहा है, श्रम दिवस का अर्थ क्या है और मॉरिशस में श्रम दिवस को मनाने की प्रथा कब से शुरू हुई, मॉरिशस में श्रमिकों ने, उनके साथ साथ मजदूर वर्ग ने किस तरह से इस देश का निर्माण किया है, किस तरह से उन्होंने कार्य किया है, किन परिस्थितियों में उन्होंने मजदूरी की है, इन सभी बातों पर आज हम ध्यान देंगे। और आज के इस कार्यक्रम में हमने के दूगो खास मेहमान हवन जा। एक तो हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड, मतलब कि आप्रवासी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जिन संचालन करेला, उनकर चेयरमैन श्री सुखेंद्र रामदास जी। नमस्ते सुखेंद्र रामदास जी।
2: नमस्ते किरण जी।
1: और साथ में श्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग के एगो प्रतिनिधि श्री तहल रामदीन जी। चाचा जी नमस्ते।
3: नमस्ते जी।
1: आज के हमने के ये दोनों मेहमान हमने के श्रम दिवस के से जुड़ल जो बात बा, कैसे मजदूर वर्ग इस देश में काम कर ले हवन जा, काहे जरूरत पड़ल एगो आम छुट्टी के दिन हमने के देश में भी, छोटा देश टापू देश रहल, एगो कॉलोनियल देश रहल, हैजा भी काहे हमने श्रम दिवस मनावे के शुरू कर ली जा, एकर पीछे कौन कौन संघर्ष चलल, ऐसने नहीं मिलल रहल ई दिन हमने के छुट्टी के दिन, तो इस सब पर बातचीत करब जा। सबसे पहले तो सुखेंद्र रामदास जी, आपके बहुत बहुत स्वागत बा आज के इस मंच पर और आपके उपस्थिति खातिर बहुत धन्यवाद। हमने के देश में आप्रवासी घाट ट्रस्ट वन एगो ऐसा जगह है जहाँ पर मजदूर वर्ग के जब बात करते हैं जा, तो हूँ से गुजर के वो लोग मॉरिशस ऐलन जा। और आप्रवासी घाट में जब मजदूर वर्ग लोग ऐलन जा, तो ये लोग पहला काम करवा लोग रहन जा, जिन लोग के अब पगार देवल जाए, ये लोग से आगे हमने के देश में दास लोग रहन जा, गुलाम बनावल लोग रहन जा, जे लोग मुख्यतः अफ्रीकी मूल से रहन जा। और उकर बाद जब हमने के देश में श्रमिक वर्ग, जब मजदूर वर्ग स्थापित हो, तो वो लोग मुख्य रूप से भारत से रहन जा। और ये लोग जब काम करे के शुरू कर लन जा, तो ये लोग में और दास लोग में बहुत अंतर नहीं रहल। वो लोग के संगे जो वो लोग के मालिक हवन सब, शक्कर कोठी मालिक, शक्कर प्रतिष्ठान मालिक कौन सुखिए जो बाओं लोग रहन जा, रातों रात ये लोग के बर्ताव नहीं सकत बदले। आज वो लोग गुलाम संगे काम करते हवन जा, रातों रात काल से अब शर्तबन मजदूर, गिरमिटिया मजदूर लोग आके काम करे के शुरू कर लन जा, तो उन लोग के बर्ताव लगभग वैसे ही रहल, उन लोग संगे खाली थोड़ा पगार उन लोग के मिलत रहल। मतलब कि काम करके जो कोजिशों शर्त रहल बहुत कठिन रहल, बल्कि शर्त ही नहीं रहल, उन लोग गुलाम जैसन काम कर लन सा। फिर बहुत लंबा संघर्ष के बाद 1834 में ये मजदूर लोग ऐलन जा मॉरिशस में। 1936-38 में जाके श्रम दिवस मनावल गल पहला हला, 100 बरिस बाद। तो ये दिवस के आज हमने के देश में कौन अर्थ बा, काल भव्य रूप से ये देश में ये दिन मनावल गल, सब कोई शुभकामना प्रकट कर लग, सब कोई के मजदूर दिवस के शुभकामना, थोड़ा ये दिन के जो अर्थ बा ओकर पर हमने के बोला।
2: किरण जी, जैसे आप बोला हमने के पूर्वज लोग जब आ रहे हैं जा भारत से, तो अप्रवासी घाट पर उतरल लंजा, और उस समय बहुत कठिनाई रहल जौन स्थिति से आ रहा लंजा, जौन स्थिति में लोग रह रहा लंजा, तो एकर पाछे बहुत कठिनाई, बहुत दुख भरी बात रहल
1: जी।
2: और जैसे बनी राजा की जिस हिसाब से तौचित में बहुत
1: संघर्ष के बाद,
2: संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष के बाद सौ दिवस में पहला हल एगो जुटाव लग रहा, राइट, तो
1: ये मजदूर लोग के सम्मान में,
2: सम्मान में जैसे तू ही बोला कि बाओ सुखिए कोलों बोले तो नीचे उलिपोक में, तो लोग बहुत दुमिनय करत हर
1: कहे कि उन लोग तो गुलाम संगे काम कर ले हवन सा।
2: एग्जैक्टली। हां, तो मोरिस किरी रहल, ग्यूरोजमेंट, अंकेचिल, पंडित सहदेव साथ साथ हमने के जो फजब नेशन बोली राजा शशि सौगाराम गुलाम तो वो लोग एगो एगो जुटाव लगेलन जा और हुआ पर जितना हमने के देश के कम करवा रहल सब लोग हुआ अलन जा और एगो मिसाज पासे करलन जा जो मिसाज पासे हो रहल कि चाहेला हमने के संगठन से रहेगी
1: एकजुट होके रहे
2: एकजुट के रहे के
1: जब एकता के साथ
2: एकता के साथ जब एकजुट के रह सा एकता के साथ रह सा तब ओके जैसे बोलीला जा लिडियों
1: एकता में शक्ति है
2: एकता में शक्ति है तो जब एकता में शक्ति है तो उसे सकब जा हमनी हाउ जोन भाव सुखिए बतनी सा ओकर फास करी
1: ओकर सामना करी
2: ओकर सामना करी तो जब सामना होल तब जाके लिपमी में कि एगो पब्लिक हॉलीडे जैसे बुझला सा दिखते होल
1: जी हाँ
2: तो होली फॉर्मेट में जो है हमने के चाहेला श्रद्धांजलि उत्पन्न करी के हमने के जितना कम करवा मजदूर लोग है बहुत एगो बड़ा दिन है जितना आदमी के नाम लेनी बहुत बड़ा काम करलन जा मजदूर लोग खातिर बस कि है लिपोमी में जो है हाउ लिपक में कोंजे नहीं रहल जैसे अभी कोंजे है
1: लोग तो सातों दिन काम करते रहे
2: सातों दिन रात आठ घंटा काम जैसे अभी बोला सब सब कुछ नहीं रहा होले पोक
1: तो सूरज उगे से आगे काम शुरू हो तो सूरज ढलला
2: के बाद तब लोग घर जाए जा तो हर कठिनाई से और मजदूर लोग आके काम कर ले जा और आज हम के देश इस स्थिति में बाटे
1: जरूर
2: तो हम तो बोलो कि बहुत बहुत धन्यवाद है जितना जितना बड़ा बड़ा आदमी लोग है जो डिसीजन ले रन जा तो हमने के जितना था भाई लोग बाटे मजदूर लोग बाटे वो लोग खाते नहीं आके कर लन जा
1: जरूर और अभी श्री सुखेंद्र रामदास जी हमने के बोलन कि कैसे हमने के देश में मजदूर वर्ग के इंसाफ दिलावे खातिर बड़ा बड़ा हस्ती लोग बल्कि आम हस्ती लोग रलन जा जे लोग सामने अलन जा इन लोग खातिर लड़लन जा और आज हमने खातिर बड़ा हस्ती होवन जा कहे कि एगो बहुत बड़ा संघर्ष लालित जेके बोली ला जा वो लोग अनलन जा और आज हमने संगे मजदूर वर्ग के एगो नेता होवन मजदूर वर्ग के एगो बुजुर्ग होवन जे हमने के उ बखत के अपन खुद के अनुभव सुनयन कि काम कैसे होत रहल आगे जब काम करे चाहबा तो कौन नियम रहल कब सकबा काम शुरू करे कौन उम्र से सकबा काम शुरू करे आज हमने के कितने ऐसन रेगुलेशंस बा ऐसन कानून बा ऐसन मंत्रालय बा जोन इस सब बात पर नियम लगेले होवन सा लेकिन चाचा जी नमस्ते
3: नमस्ते
1: आज हमने के बोला कि तू जब काम करे के शुरू करला तो कौन उम्र से शुरू करला उ बखत काम करे के कौन उम्र रहल और काम कैसे होवत रहल थोड़ा हम जाने चाहब जा
3: बहुत ठीक सबसे पहले श्रोता लोग के हम नमन करत हैं और आपको भी आभार प्रकट करते हैं कि हम किस जुनबा अपन प्रोग्राम में आए के आमंत्रित कर दा तो सबसे पहले हम जुनबा हमने के जौन पुरखन लोग हजारन सब में बहुत मेहनत तो लोग करलन सा और जितना कामगार लोग है जा पर मोरिस के उत्थान के लिए आगे विकास के लिए आगे बढ़ाए खातिर मेहनत करन सा सबके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हमारे जीवन में माने जाए हम लगभग 12 बरिस

0: से लाबूर काम करके शुरू सी जी एम पास होली तो आ डिब्बे लेके लेकिन हमारे बाप कॉलेज नहीं भेज लक हमके सतानरे तब इसमें में भेज दिलक हो जा हाउ कॉलेज में
1: चाचा जी अभी थोड़ा कौन उम्र हो बा
0: अब का तो है थोड़ा
1: जो बात करा था सी जी एम की तो कौन उम्र के कौन
0: मिले सा सेकंसिस में पास हो रही मिले सा सेकंसिस से काम में हिल गई हो जा सतानरे
1: कौन उम्र रहा बोल लो
0: 12 बरिस के
1: अच्छा
0: तो हाउ वक्त अभी जो ऐसी सुप्रमा से लोलो बा हौजा पर मिशियाले के लाखों रह और भितरवा में एगो बीरो रहल हाँ एगो बीरो रहल तब बीरोवा हौजा मिशियाले लापे ही करे तो हौजे लाहो में बंजर जमीन पड़ रहल तो हौवे में सैदा जुड़वा कोड़ात रहल तो हमारे बाप दादा का काम करे के हौजा तो वो वक़्त कौन काम करे हम हेल्ली जनरल जब सैदा कोड़ाला तो जो मरद रहला जोम वो फुर्सत मारेला फुर्सत मार के मठिया नरम कर दे तब मदाम लोग वो लोग हाउ मठिया के घींच के जितना बुचिए रही सैदा के तो वो लोग निकाल निकाल आगे फेंक ले जान सा
1: अब हमें के समझावा सैदा का हाथ ढेर क्यों नहीं जाने
0: गाजो गाजो सैदा जो बा गाजो के बोया तो वो बुचिया वो लोग बुचिया तो जितना बुचिया हुआ मिली वो लोग के तो लोग आगे फेंक ले जान सा तब आगे जब फेंक ले जान सा तो अब एक जना को मजिर हाउ सब बुचिया हुआ उठा के वो एक जगह रखी तो हाउ वो कमवा के बोले तो काम लेगा के काम तो हाउ वे लेरा के काम हम करते थे हम एगो गुनी में हाउ बुचियावन उठा के ले जाके दूर फेंकी अब जैसे जैसे वो लोग फेंक ले जैसे हम रमास के हो गए थे तो हाई ये हमारे काम रहा तब बाद में अब जब तनी हेथी होली तब हम रोज सैदा कोड़े के अब डाल दिलन सब पियूष से अब हमू लगली कोड़े तब बुचिया कोड़ा फेंका हेथी कर लेकिन वो बखत हाउ परिस्थिति जो रहा एकदम दयनीय रहल जाने लाओ सैदा जब कोड़ दिला तब मान ले जाए 2 बजे काम समाप्त होल तब मान ले जाए अब सदार खड़ा होके अब ऐसे के गोद्रै कोड़ाई जेकर पौची में जे गो बुचिया मिल गल तो
1: मारू हो गल मतलब उस दिन के पगार नहीं मिली
0: नहीं मिली मारू गल
1: दिन भर जो काम कर ला पानी में
0: मारू गल ऐसन पोजिशन रहल तैसन परिस्थिति में जब काम गए तब बहुत सावधानी से पड़े हमनी के काम करे के भर सक बचाए के जमे एगो जैसे मटिया खींचला तब मान ले जाए बुचिया वाल तो के हाथ से थे करके बस आगे फेंक दो ऐसे ऐसे करके कर ले गली सा तो ऊ बखत हम के हमारे लापे रहल एन 60 जून है
1: एन 60
0: एन 60
1: एन रूपी 60
0: हाँ एन रूपी 60 सब एजा 9 रूपी 60 हमारे एक समय के लापे होता तो हाउ जे बीरो में पे करी मिशियाल है तो जाके पैसा लेके घर जा अब तनी सुन होशियार हो ली और मदाम लोग के पे होता देजिस
1: जोम के पे
0: हाँ देव पी जिस और जोम लोग के थोड़ा ऊपी सैकौत वो लोग के जूने रहू बखत तो काम करत करत करत करत अब जब तनी होशियार हो गई सा तो अब हमनी के जूने मोते होल हमनी के जूने होल दे सोसानदूज देव पी सोसानदूज अब हमने केला पे ही मिले लगल काम करे अब सैदा नहीं प्लोताशियों भी करी सा कान रोपाई लेकिन छिटके जोन बाटे लाते बिछावा बिछा के तोपा ओकर लताश दिया था तो हमने के परे लगभग 5 बजे कारों में चल जाए कि हमारे को भौजी रहल और एगो बहन रहल झुनिया का नाम रहल तो उन लोग हम बुनेरे जगा दिए सब लोग के संगे चले के तो जाके हाउ लेकिन के ढेरी से अब छीटे के शुरू कर दे सब
1: मतलब भौजी बहन सब कोई मिल के जथा जा काम करे
0: हाँ तब हाउ काम का अब जे लेकिन छिटा गल अब लाते थाली आली फाने करके ओके बिछाओ अब सरियाव सरिया के तोप तो तोहर 3 लालिन के लताश बत तोप दिला तस चल घरे है हमने के काम रहल
1: चाचा जी अभी जो बात बोलत हवा हम के नवा पीढ़ी लोग सुनत हो जा तो वो लोग के अचरज होत हो कि ऐसन कौन जिसो में काम होल बा इस विषय के गहराई में अभी हम थोड़ा और जाप जा और सुखेंद्र रामदास आप भी एक जो राजनीतिक पहलू आज चलाल बा ओकर पर थोड़ा हमने के आगे बोलबा फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा कार्यक्रम में हम किरण आप सबको एक बार फिर स्वागत करत है। आज हमने श्रम दिवस पर बतिया थे जा श्रम दिवस जेके पहला मई फिर जुथावाय लेबर डे इस सब नाम से हमने मॉरिशस में जाने ला सा। और ये एगो ऐसा दिन है जेकर सम्मान जेके मनावे खातिर दुनिया भर में कितने गतिविधि चलेला। और ये एगो बहुत ही प्रतीकात्मक दिन है श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग के सम्मान करे के। ओकर साथ साथ जो ट्रेड यूनियनिस्ट हवन जा और जो नेता हवन जा जे लोग ई मजदूर वर्ग खातिर लड़लन जा संघर्ष करलन जा ई लोग के हक में कितने पिटिशन प्रस्तुत करलन जा ई सब हस्ती लोग के सम्मानित करे के भी एगो दिन है। अभी हमने संगे हवन आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के चेयरमैन श्री सुखेंद्र रामदास जी और साथ में मजदूर वर्ग के एगो प्रतिनिधि श्री तहल रामदीन जी। और ये दोनों व्यक्ति हमने के थोड़ा समय के ऊपर ले जाता हवन जा जहाँ पर ये सब बात पर हमने ध्यान देवत है जा कि कैसे ई देश में मजदूर वर्ग काम कर ले हवन कैसे मजदूर वर्ग खातिर श्रमिक संघ के साथ साथ नेता लोग आगे बढ़लन जा उन लोग के हक में काम करे खातिर। और अभी सुखेंद्र रामदास जी कितने बड़ा हस्ती के नाम लेलन ये विषय पर अभी थोड़ा घड़ी में आवब जा। लेकिन सबसे आगे अभी चाचा जी हमने के एगो बहुत भावुक आँखों देखा हाल अपन स्वयं के अनुभव सुनैलन तो श्री रामदास जी आपका जोड़े चाहब जब ये विवरण सुनला चाचा जी के था।
2: जब चाचा जी बोलन अपन लिपो के बात तो हमरो चाचा जी बहुत बड़ा हवन हमर ले फिर भी याद आल कि जैसे बोलन मुसलमान समुदाय में एगो ब्लॉक के नाम तो हमके याद चलल अभी एगो लौंद असिनाल बोला सर उ लिपोक में पता नहीं रस चला हो रसनाल चलिए
1: भोजपुरी में सब जो नाम रहल ओके भोजपुरी बना दिले रहलन जा।
2: हाँ चला रसनाल चला कातमिल जो नबी सेंट जोसेफ बोलला सर चला कातमिल तो हुआ पर एगो ताबिस में रहल मसिलिया तो पोतपीमा से थ्रियोले से मुसलमान से तेरूज से सब कम करवा लोग हुआ सब मसिलिया में कान काटे जब कान कटा तो हर तो अंतरिकूप बोला तनी सर तो अंतरिकूप में कोई तमाकू रोपे जो ताबा बोली ला सभी तो तमाकू बोलते नहीं सर और कोई लेगिम करे
1: कहे कि कान तो कटा गल बा जमीन इसने पड़ल बा तो नहीं इसने छोड़ब ओके एक एक अगर पॉजिटिविटी और बढ़ाई
2: और बढ़ाई बा
1: दूसरा कुछ हाँ। रोप के
2: कानवा हुए रही सीमा
1: करदरी के
2: अंतरलीन अंतरलीन बोलते नहीं सर आई दोनों कान जहाँ रोप बा बीच में जो बा अंतरलीन तो ओके ओकर में फुसे कोड़ के तब कोई मिलौदू डाली कोई पोमडामू रोपी कोई बैंगन रोपी जैसे जिकर विचार होता
1: है आलू भी
3: मकई भी
2: नहीं आलू कान में आलू नहीं सिर्फ से डाली
1: अच्छा।
2: आलू के जब आलू जब प्लब तो चला पूरा आलू रही
1: अच्छा।
2: हाँ हाँ तो उस समय में तो आलू देखे में नहीं रहा चाचा उस समय में आलू नहीं रहा उस समय में कान रहा तम्बाकू रहा और लेगिम रोप तो हाउ लिपोक हम याद चला आर हाउ लिपोक में हमर पिताजी जोन रहलन उ सोफे कामियों रहल सोफे कामियों काम करते हर कान दिखालत हर सोफे कामियों में तो हमके याद आवता कि सुरुचित एगो गांव है थ्रियोले के लॉन्च जैसे थ्रियोले जब शुरू होला तो सुरुचित से शुरू हुए तो वहाँ पर मूला रहल मूला सुरुचित तो कबो पापा जब जाए बनोरे तो कबो देरी हो जाए तो खाई के लेके नहीं जाए तो अब हमारे यहाँ बिसिकलेट नहीं रहा हमारे दादा यहाँ को बिसिकलेट

0: Literal, hou lipok buatan sa bisiklet Philip, sa bisiklet kali, nace cha?
1: Hou
0: lipok mai hou,
1: Philip
0: kali. To data yang aja blok ki data, bisiklet tu ada tak? Kaha jai bi? Orang lekai orang sana, kaha jai bi? Khom jat tu kaha, nai data. Papa ke khai ke jaya, chori ke? Papa bula gol ba khai ke lagi jaya ke? To ham bisiklet pali ke jatni khai ke? Mula huma atan kerap sa, jep kor kamyo ai, to ke khai ke dip sa. To u mamam. हमरो खातिन एगो एक्सपीरियंस होल हमके अच्छा लागे जब मोला जब स एला जब हम पर कान पेराला त हाउ जन परफेवा होला राइट औ चीनी के त हाउ सब अच्छा लागे आ सगप स मोला घुमे जातनी स वहा के जन गार्जियन हल त देखे आप इच्छा जात हर तमनी के स्प्लिक करे हमनी के बोले जाई बोले कि सब भितरी धीर नै जइए स बस कि प्रिकॉशन ले सब लेतनी स तो ऐसे हो यादगार हमके चलाल जोन चचा जी बोलन तो
2: हाँ बहुत सुंदर और अभी बात कर लीजा कैसे ये सब मजदूर वर्ग देखा अभी तू ही बोला कि आप लोग के जोन खुशी के पल रहल जोन आनंद के घड़ी रहल वो भी काम से जुड़ल रहल वो जोन वातावरण रहल वो बखत जोन सुगंध आपके मिला था कान के पेरल रस के ये सब मतलब काम से ही जुड़ल बा एकर से बाहर आपके आप लोग के कोनो दुनिया ही नहीं रहल तो अभी हमने श्रमिक संघ लोग के बारे में नेता लोग के बारे में बताते लीजा काल पहला में ही रहल हमने के देश में कितने जना के श्रद्धांजलि प्रस्तुत होल हुई थोड़ा एकर बारे में बोला आज जब पहला मई के बारे में नौजवान लोग देखे लन जाता कैसे देखे लन जाए के और जब संघर्ष चलल तो आदोल्फ दुप्लेविट्स के भी नाम आवेला कहे कि वो पिचिशो कर ले रहलन ये सब मजदूर लोग के भलाई खातिर तो थोड़ा ये श्रद्धांजलि के दिन पर बात कर रहा और एक जो राजनीतिक पहलू बा आज मॉरिशस में एगो राजनीतिक दिन है थोड़ा एक पर बोला
0: पहला तो किरण जी हम बोलब आदोल्फ दुप्लेविट्स के जब नाम लेला तो हई हमने के कबू नहीं चाहना भुलाई के हमने कबू बोली ला जा कि वो जो हकीकत तो हकीकत है कि जन बाँस सुखी है जन बोली लासा तो आदोस प्रवित ने जब नाम बोल तब तो वो बाँवे रहल सिरमा उकर में रहम रहल
2: रहम
0: बहुत रहम रहल हमने के कम करवा खातिन तो वो बहुत जोर लगेलन अपन सोसाइटे में कि हाई जन हमने के मजदूर लोग बा तो वो लोग पर ढेर दुमीने नीचे लागरी के ठीक बा तो बहुत बेगो
2: पेचिशो करन
0: हाँ शब्द नहीं आवे तक कैसे ओके गमी ऐसे करब सा
2: हाँ।
0: आदोल प्रवीत के है जो नाम है
2: हाँ।
0: हमने के नवा पीढ़ी जो है तो है सब लिस्टो नहीं चाहना भुलाई के
2: और उनकर पेचिशियों के ही लेके और बाकी नेता लोग एक आगे बढ़े
0: आगे बढ़न जा
1: प्रभावित हो जा
2: हाँ। जरूर
0: तो कैसे काल देखला जा टेलीविजन में कि सगरो सगरो शहर में गी गुजमो रहल आए हुआ जाके श्रद्धांजलि होल सैजो में हुओ पर जाके श्रद्धांजलि होल शहर में फिर स्वादय कोपाई में पंडित सहादेव हुओ पर श्रद्धांजलि होल अंजलि कुपेन पर जाके श्रद्धांजलि होल कोतेज गांव में तो है लिपोमी में जो है असली में थावाइये के दिन है
2: जी।
0: और जैसे भी प्रश्न करला कि अभी के लिपोक में कैसे होगा तो है थोड़ा सकब बोले कि थोड़ा पूरी चीजें हो गल हाँ। जैसे जैसे दुनिया
2: बदलेला
0: परिस्थिति बदलेला तो हवे पर हमने के पहला चले के
2: हाँ। आजकल लड़का लोग सोचे लन जा नौजवान लोग सोचे लन जा पहला मई मीटिंग के दिन
0: हाँ तो बिल्कुल नहीं ये हो गल जैसे हम बोलने कि जो हमने के पॉलिटिकल पार्टी लोग रहल तो एगो सेटन फासो ओ लोग के विचार से ओ लोग सोचता चलन जा कि हाई जब कर दे सब किसी को जब
2: कौन छुट्टी
0: दिन हो गल बाटे
2: सब कोई लिब्बा
0: तो ये ओ लोग के फासो पहुंचे
1: रहल बात बोलते जा कि मान ले जाए वो बखत वो लोग सोचा था ना सर ये खातिर में नहीं जुटा होता अपन शक्ति प्रदर्शन खातिर करा था ना सर पॉलिटिक में कि हाई लेबर है तो लेबर का एक शक्ति इतना बा को जुटा हाँ, के मिला
2: यही
0: होता है हाँ नहीं हाँ भाई ये तो हर विचार है हमारे हाँ। विचार से हमार अपन लोग ओपिनियन बताएं कि जो मैम जन पहुंची पॉलिटिक रलन जा तो वो लोग जुटाव करता हर कि अरे कोई संदेश वहाँ मिला था न संदेश मिला था हर कि देखा किरण जी चाहब नहीं चाहब देश जो चलेला त पॉलिटिक्स ही चलेला।

0: जरूर
1: पॉलिटिक नहीं था,
0: महात्मा गांधी वे अइलन त बोलन आपके अगर चाहे अपन स्थिति सुधारे के तो दुगो बात पर ध्यान दा, एक त शिक्षित हुआ पढ़ा लिखा और दूसरा राजनीति में कदम रखा। जब ले तोहर प्रतिनिधि तोहर रिप्रेजेंटेशन नहीं करी तोहर आवाज नहीं उठाए तब ले तोहर स्थिति नहीं सुधरी
1: नहीं सुधरी। तो ये खातिर ढेर कोई सोचेला कि पॉलिटिक जो है मारो चीज
0: है,
1: अगर राजनीति नहीं रही जैसे बोली तो देश नहीं चली, और जब देश नहीं चली तो कुछ नहीं चली। तो ये खातिन वो लोग सोचते हैं कि लिपोमी में कि सब कोई के जुटाव करी सा और एगो संदेश देला सा, तो ये वो लोग के फांसों पहुँचे रहल। और जो आगे रहल जो हमने के जो थुबे लोग रहन जा तो नहीं वो लोग की सोच दूसर रहल, बस कि हाउ जो कठिनाई रहा हो समय अभी कठिनाई कहाँ किरण जी।
0: तो शायद यही वजह है, शायद नहीं बल्कि यही वजह है कि आज के भी नेता लोग हमने के देश के प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा नेता मंत्री सब कोई मिलकर कहे श्रद्धांजलि देवत हम जा, यही लोगे के बदौलत हमने के देश यहाँ पर पहुँचल बा। ये लोगे के बदौलत गिरमिटिया के बेटा लोग आज देश के नेतृत्व करत हम जा, देश के सरकार चलावत हवन जा।
1: गिरमिटिया के बेटा प्रधानमंत्री बा,
0: वही
1: गिरमिटिया के बेटा डॉक्टर बा, गिरमिटिया के बेटा
0: राष्ट्रपति बा,
1: राष्ट्रपति बा
0: जी।
1: राइट, और फिर भी जब हम इंडियन चा बोलला जा तो हवो नहीं बोलला जा जो स्लेवरी तो ओ लोगो में बहुत बहुत बड़ा बड़ा आदमी बा।
0: जरूर, मतलब कि मजदूर वर्क के जब बात करत है जाता एकर में खाली गिरमिटिया नहीं बा, बल्कि जितना कोई भी ई देश में काम कर ले बा, चाहे वो कोनो भी मूल के रही, चाहे वो कोनो भी परिस्थिति में रही, सब काम करवा लोग खातिर, सब मजदूर लोग खातिर ये दिन है। और चाचा जी अभी आप बतावत हवा कि आगे कैसन स्थिति में काम होत रहल, अभी तो हमने के श्रम मंत्रालय बा, लेबर मिनिस्ट्री, जहाँ पर 18 उम्र से कमती कोई के काम करत देखला तो मंत्रालय एक बार हस्तक्षेप करके सकी आपके सजा भी होवे, कहे कि यहाँ हमने के नियम के अनुसार 18 बरिस के बाद ही आप सब काम करें, लेकिन आपके समय में तो आपके बचपन बीत गया काम करते। थोड़ा उ कठिन परिस्थिति के बारे में हमने के एगो और एगो नक्शा हमने के प्रस्तुत कर रहा।
2: बहुत ठीक, वो बखत माने जाए लाज के कोनो अथी नहीं रहल,
0: पाबंदी नहीं रहल,
2: कोनो पाबंदी नहीं। वो कैसे हम ढुकली काम में 12 बजे से हम काम करके शुरू कर दे ली, कोनो रोक टोक नहीं, जाके साहब से भेंट कर या सरदार से भेंट कर, बस वो बोल दे आओ काम करे, काम शुरू कर दे, तो ऐसे शुरू हो जाता है काम। और हमने जैसे कि हम बोल ली कि मान ले जाए काम के परिस्थिति जो बटे सहज नहीं रहल, बहुत परे के मान ले जाए सह के काम करे के, काहे ओकर में सरदार के डांट बा, गोरा के हम जो कोनो रह वो लोग के डांट बाटे, जहाँ तनि सुन चुकला तो सुनबा रहता ना। अब हम जब बड़ा होली तो कान काट के शुरू कर ली, 4 लाख उप करना है 97 में, 2 लाख उप हम कान कटना है वागों में काट, कान काट के ला देता। वो कैसे होता है फजीर के देखभाल रेल वागों लेके आई, वागों अब हमने कहती मैं क्लासे कर दे, वागवान में निमेरो रहे, तब हमार नाम के है निमेरो, तल कान कटागल लदागल मुला जाए पेजाज हो जाओ, जब जब पेजे कर दिए सर तो हाई निमेरो के बागों में इतना तोन रहा।
0: रेलगाड़ी की बात कर रहा था,
2: हाँ रेलगाड़ी,
0: कान वो बखत रेलगाड़ी में जाए,
2: रेलगाड़ी हाँ रेल वो वागवान के छोड़ देवे, अब वागों भर देवे तो रेलो आके फिर लेके चल रही मुला, तब हौजा बनौस लग पास हुई तो अब उतौलाई, तो हर निमेरो के ओकर पेजाज जोन बाटे वो लिखाई, तब हमनी के जो नौतफोने रही वो जाके वो पेजाज लेके बिहान हमनी के बोली तोर इतना तो रहा दे तोन सा रहा दे तोन दिशा रहा ऐसे सबके दे दे, तब हवे के आधार पर सामजी के लापे हुई। अब एगो बात है जा यदि मान ले जाए तू 2 टन कान नहीं कटला एक दिन तो उस दिन के हा उत्तोनाज एन का तो वैकैंस एन ओपी का तो वैकैंस पर गंती हुई, और जे 2 टन से ज़्यादा करला तो दब दे ओपी जिस गनात ऐसे, और जो कमती रहे तो नहीं तो ऐसे काम कर ली सर।
0: मतलब कि आपके चाहे उस जेफो करके
2: 2 टन से दस्ती ज्यादा करके
0: नहीं कर पता नहीं मिली, नहीं मिली
2: तो अब ये कर ली सा हो जा पर कान कटाई लदाई अब हमने के लापे हो जाए। अब ये अब एगो बात हम यहाँ पर जोड़े के रही जैसे कि हमने के जो मजदूर लोग आ रहे हैं संभाले जाए है भारत से, वो लोग क्या इससे पहले मॉरिशस में

0: हम उन लोग से पहले दूसरा कोई रहल आल रहल दूसरा देश से, लेकिन कुछ नहीं करे पहले से उन लोग से कृषि उद्योग में कोनो यकीन होल। तब फ्रांसीसी सरकार उस सोचलक कि भारत से वो लोग चल गए रहन सा भारत में दक्षिण में स्थापित रहन सा मद्रास में तेलंगाना बॉम्बे में वो लोग रहन सा हौजा पर सिड में तो हौजा से वो लोग अब मजदूर अनले रहन सा एक पर्ची। अब हौजा के बाद जितना बाचिमा बा पोलवी में लिपोक लाबुदोने के गोवेने लाबुदोने के लिपोक में बनल बा तो हौ सब जो कारीगर रहन सा वो दक्षिण के कारीगर बने ले बा।
1: हाँ, ई देश में जब निर्माण कार्य होल बा तो इतिहास में जब वापस जाइबा तो हम देखिला जा कि हमने के देश के निर्माण में गुलाम बनावल गल लोग के बहुत बड़ा योगदान रहल। उन लोग के जब आनल गल तब मुख्यतः ई देश के निर्माण होल शहर में। अभी चाचा जी बोलत हवन कि जोन पत्थर से बनल इमारत बा, जोन पेवमेंट बा, जोन पुराना पुराना चिमनी देखबा लक्ष्मीया जी के बोलबा, ये सब हमने के देश में गुलाम बनावल गल लोग बने लंजा। लेकिन उन लोग के प्रशिक्षित करे खातिर दक्षिण भारत से जे के स्किल्ड वर्कर्स बोली लाजा पोंडिचेरी से लाबुदोने अनले रलन, ये लोग प्रशिक्षित करलन। तब उन लोग सब कोई मिल के ये बने लंजा। और फिर कृषि के क्षेत्र में चाचा जी जैसे बोलत हवन कि ढेर कुछ नहीं हो रहा। जब हमने के भारतीय मूल के मजदूर जब लंजा
0: कि उ लेपोक में जब एगो पहला अथी अलन जा तो लोग जब काम करे लगलन स तो है जाके जोन शकर कोटिह के अथी रहन सा मालिक लोग बहुत प्रभावित होलन सा देखलन से लोग न गाल चलावे होला मुँह चोरा न कुछ नहीं। ये लोग बहुत सुधार व्यक्ति
1: ये
0: लोग जो काम करे सा मेहनती होन सा। तब देख दूसरा कब 1 लाख 1.5 लाख भारत से मजदूर मंगावल गल। और उन लोग जोन बाटे मॉरिशस के जोन आज माने जो स्थिति बा तो उन लोग के याद करी जाए उन लोग के मेहनत के आधार पर मॉरिशस बनल बा
1: एकदम। अभी जब चाचा जी बोलत हवन कि हमने के देश में जब पहला खेप आ सकब जहाँ ये शब्द इस्तेमाल करे कहे कि जहाज में खचाखच भर के जब हमने के देश में शर्तबंद मजदूर लोग के आनल जात रहा तो इ लोग के जो सफलता मिलल इ देश में उस सफलता के बल पर ही और मजदूर लोग के आने लगल। और मॉरिशस एगो टेस्ट केस एगो लैबोरेटरी की तरह प्रयोग करल गल। और यही कारण है कि मॉरिशस में जब बरतानी कॉलोनी जो रहल बरतानी सकल इ प्रयोग करे इ सफल हो तब अपन अन्य कॉलोनीज में एक आगे बढ़े लंजा। और यही कारण है कि आप्रवासी घाट आज एगो विश्व धरोहर बनल।
0: किरण जी वही लिपोक से सुरोगल चीनी उद्योग में अधिक काम होई लगल, अधिक चीनी पैदा होई लगल। तो चीनी कैसे बेचाता हल चीनी अब जोन जहाँ जाने हमने के मान लीजिए आटा दाल चावल तो वो लोगे किन के ले जाके बेचाता लन सा है जहाँ पर स्टोके करके रखा सा तो चीनिया वो लोगे ले जाता हल। ऐसे बातों नहीं आवे वो लोग हैथी करा सा वो लोग उगेले जाके। और वो बखत एगो कान रहल निमो कान कात लाल कान रहल हवे कनवा मॉरिशस के आज उठाई लेवा मॉरिशस के उठैलक हवे कनवा।
1: मतलब जब बोलत हुआ कान के नाम रहल निमे हो थानकात मतलब अलग अलग किस्म के कान रहल।
0: कान रहल हाँ मैं हो थानकात हुआ लाल कान नरम कान रहल और ओकर में ओकर निचोड़ में चीनी अधिक पैदा होता है। तो ऐसे बहुत बहुत फायदा होल मॉरिशस के और विकास बल। वो कनवा मलाद हो मलाजी होकर ओकर में तो ओके हेटी करके एगो दूसर कान निमे हो कान से मैं बहुत कठिन रहा काटे के वो कड़ा रहा काटे के तोरा कुतो परी जोर से चलाएगी और ओकर रोइया बड़ी गड़ी
1: सब रहल।
0: हाँ रोइया गड़ी और उ कनुआ जैसे थी रिगासियों के थी में रहे तो उ जैसे कनुआ ढगल तो उ रासिन फेंक दी। अब तू काट के दोनों हाथ से घींच के तब अब ओके दुबूत करा।
2: हम एक चीज बोलते किरण जी जब चाचा जी बोलन चीनी के बारे में तो हमने के दुकस फ्लैट जोन बोली ला जा अभी के समय में अभी तब नहीं बा में जब रहल तो नहीं चहला भुलाई के बस कि हम मजदूर मजदूर जब बोली ला जा तो जैसे कान रोबत हुआ तो मजदूर हुआ आए जब चीनी हो गल तो चीनीवा की विदा करे के
0: लादे के
2: लाद बस्ता में जब दलाला आए तो हाउ जो मजदूर रहल तो वो लोग वो गाँव में बेचित वो हुआ पर लोग रह तलन सा तो हुए पर नाम रहा दुकज फ्लैट तो वो लोग लादी तो हयो एगो बहुत बड़ा चीज रहा बस कि हम हाउ लिपोक में हमने के मुख्य इनकम जो बोली ला से कौन चीज रहा चीनी
1: चीनी
2: चीनी चीनी बेचाई तब भी तोहरा पैसा मिली तब तोहर देश के प्रगति होई
1: हमनी के इकोनॉमी के कोलोन
2: बोला जा तो ये लोग के हमने कि नहीं चाहला भुलाई के ये लोगों की चाहला एगो पासे रह के हमेशा हमने के लिस्टो में
0: हाँ ये जैसे भाई हेटी बोल लन सुखन कि ये दोकस फ्लात दोकस लोग चीनी ला दे तो ये लोग बाद में एगो लागव कर ले रन सब बहुत प्रॉब्लम हो रहा तो वाक जोन बाटे तब चचा काम गुलाम हम वाक बने ले रहा अब नहीं ला देखो ऐसा चीनी नहीं जाता
2: काम करत रहे तनखा नहीं मिला पैसा नहीं मिले तो जब लेबर डे बतियात है जा तो ये सब परिवर्तन होल बा अभी लालवा नया नया लालवा आल बाटे जैसे जैसे बनी सकी स्थिति साँसे होल तैसे फिर से यहाँ पर राजनीति आवेला
1: जरूर
2: अगर राजनीति नहीं रही तो लालवा कैसे आवी राइट तब संचिकालीस होल लालवा आल तब जब लालवा आल तब जब मैं प्रॉब्लम में हुई तब एगो सिस्टम उगाने एति कर लन जब उ समय के जो गवर्नमेंट रहल तो वाक
0: हाँ स्थापित करके
2: स्थापित होल जिसमें काम भी जोन रहल हाउ लादी के फासिल नहीं रहल मजदूर नहीं मिला था अभी की स्थिति देखा ना काम कान कान तो दूर के बाद बा कौन लीजिन में भी थोड़ा लीजिन तो थोड़ा कौन रगल बा अभी तो लुतेल है सगरो लुतेल में काम करे के जनता नहीं बा तुहार घर में भी जैसे कबू कबू बोल सेवा खोजे के नहीं बा तो हाउ स्थिति हो गए रहा हाउ लेपोक जब भाई कम करवा नहीं मिले लादी खातिन तो एगो दूसर मुआये चाहत जिमें हमने के चीनी लादाई बेचाए आए तो पैसा मिली हमने के
1: जरूर
0: अगला जिस तरह बखत जब हैजा पर बने लगल तो इसे माने जाए काफ़ी महिला लोग वो लोग लगलन से जाए लीजिन में काम करे तो अब हमने के खेत में काम करे लगा कम करवा बहुत कमती होगा कोई नहीं काम करे खोजे
1: खेत में काम बहुत कड़ा रहा
0: बहुत कड़ा रहा तब लोग होने चल गए से तहने कम ही हो गल और अभी तो और कम हो गल बस हमने के जनता जो काम करे नहीं चाहता काम करे नहीं
1: चाहता समस्या चाचा जी आज हमने जाने चाहते है जा कौन कौन परिस्थिति में आप लोग मजदूरी कर ले हवा जा आप जो देख ले हवा जो कर ले हवा अब आपके पिताजी के जो करत देख ले हवा थोड़ा उ परिस्थिति में बोला आगे ढाका रहल सगरो सगरो ओकर बाद गांव स्थापित होल अब ढाका में भी आप 12 उम्र में काहे काम करे के शुरू करला परिवार में जे सब सदस्य काम नहीं करी तब घर नहीं चली घर में ढेर लड़का रहे घर महंगाई भूला जा महंगाई पैसावे नहीं रहा घर में तो ई वजह से सबके सब सदस्य के औरत लड़का सबके परे काम करे के थोड़ा इस स्थिति पर हमने के बतावा जो हमने नहीं जानी लासा
0: तो उ बखत माने जाएगो व्यवस्था रहल कि चाहे लस काम करे के जितना हाथ बा घर में काम में लगा दे जिससे इनकम हो पैसा मिली जिससे माने जाए घर के राशियों चली वैसे महंगाई रहल लगता ना सहज नहीं रहल उ बखत ऐसी राशियों निकाले के तो ई खातिन करल जाता है अब देखा तब हमरे तक कॉलेज हमारे बाप कहा नहीं भेलक बस ओके 8 रुपया पिए करके नहीं रहल कॉलेज के चाहत हुई तो भी ओके फीस पिए करे तो नहीं रहल तो नहीं भेजलक हमके डाल दिलक होने अब हम लगली काम करे तो एक से हम घर में इनकम आए लगल तो एक से हमारे बाप सुलाजो ही लगल और वो काम करे था लेको प्लौते के काम ए भर बड़ी सोकरे काम करे होता है ना तो ओके कातो भी जिस्सू मिलत रहा कातो भी जिस्सू जूने रहा तो वो पे करे वो अपन जीवन ले जाए इससे
1: और फिर मजदूर लोग का खात रहलन जा कौन पर्व मनावत रहलन जा का पहनत रहलन जा शॉपिंग के जमाना बा आज आगे शॉपिंग कैसे होवत रहा
0: आगे शॉपिंग नहीं रहल किरण जी वो मानी जाए कैसे वो लोग का जो मिलता मान ले जाओ मौसम में इसके लोग ऐलान सला तो लेके था वो लिया गल तो सिया गल को पौता लो सेमी सही हो गल फिर नहीं हो गल बनाने के सोचल हुई हो गल और अब कैसे एगो दूसर बात ले बा ले जाए और है फेत के थी और हमने के त्यौहार बटे तो त्यौहार के अवसर पर थोड़ा सुन माने जाए आदमी हेती करके मना ली कि माने दिवाली बा तो मिठाई पकाएगा तो बताता आदि पका के वो दिवाली मना ले चिराग चिराग मिट्टी के चिराग भी खरीदे के पैसा न पपाई काट के फार के आधा ओकर में बत्ती डाल के चिराग बनाता हम कर ले है ना बता ना तो बखत ये गरीबी के फगुआ वो तो खेली सा तो माने जाए कमती खिलाए लेकिन खेली सा निम्ने से खेली सा फगुआ फूल निवा से और हमके याद हुआ हर फगुआ में हमारे बाप पूजा करे रोट

0: इतनी छिटकल ढाका
1: ढाका
0: ढाका हाँ। तो उस समय जितना मुला रहल जितना मुला रहल तो सब मुला के बगल में एगो ढाका चाहत रहे के
1: हौजे रहत रहन सा
0: हां
1: वहां के काम करे
0: जितना कोई मुला में काम करे तो वो लोग ढाका में रहे
2: ओका नाम है ढाका
0: ढाका रह रहा हां
1: डाका जे के बोलला सा तो भोजपुरी में ढाका
0: हां हां डाका हां बस की किरियोली में तो डाका बोलला सा तो हवी हमने भोजपुरी में ढाका ढाका बोलनी सा तो हम तो नई जिला है ढाका में सिलमा जब हम हमारा राज्य संदेश हाँ तो जब हम जैन रहनी तो सुरक्षित गांव में रहल हौलीपोक और लाभुदिने गांव है
2: हाँ।
0: काफ़ी काफ़ी हम हमार लाश होकर रहल तो लाभुदिने गांव हुआ पर वो ढांका रहल तो वहाँ जब जहाँ घर रहनी तो वहाँ देख ले हुआ आपके कैसे आदमी लोग रहा था बहुत कठिनाई रहा
1: बहुत कठिन रहा तो जिले हवा ढाका में
2: जियल नहीं है लेकिन हम सार रहा था लाबुदोने के ढाका में तो हम गल हो जा वो लंबा लंगार हर एगो के कुप के माने हर एगो परिवार के एगो लसम
1: में पूरा परिवार
2: हाँ लसम और आगे में ला क्विजिन लोग अपन से बना लेते रन सा वो लोग रहे हवे में हम सार रहा था तो हम जाए बनाने में जाए सा तो जाए हम देखे कौन परिस्थिति में लोग जे और सबके टॉयलेट में कुर एगो रहा
1: एक ही गो ढाका में कोना में एगो शौचालय रही
2: शौचालय
1: सब कोई ओकरे इस्तेमाल कर
2: सब कोई इस्तेमाल कर हवे
1: अब जे नहीं
2: पानी के ओकर प्रबंध नहीं रहलो का अलग है ठीक टैंक में पानी रहे तो एक जगह अब जाके सब भर के आना अरे को बुटीक रहे
1: चिनवा बुटीक
2: हाँ चिनवा बुटीक
0: जन जन चचा बोला जब इतनी बजा रहे जा टॉयलेट के बारे में तो मालगे बाहर मेरा घर में इजन रहा
2: हाँ
0: हमने
1: सब ढेर को ये भी बोले हों जाके ढाका उतना साफ सुथरा नहीं रहा कहे कि एक तो टॉयलेट देखिंग को रहा
2: एकदम एकदम
1: हाँ अभी नहीं कर अथहर पुबेल कोई खाली करे नहीं आए ढाका उतना साफ सुथरा भी नहीं रहा शायद तू बाद के बात बोला था शुरू में चाचा जी
2: आप नहीं सच्चे के बोला था कीचड़ से भरा रहे जाइब तो तोरा मन नहीं करे थी करके
1: सुदबत और गोनी में पीस उड़ी से भरा रहे
2: सब रहे
1: शुरू में नहीं रहा साफ सुथरा बाद में समय के साथ
0: उलीपुक में जिक बदला की खाई के बारे में तो हमको याद चला लिट्टी
1: लिट्टी
0: जब ढाका अब हमने जैसे जेल है जा गाँव में थियोली गाँव में तो ढाका हुए कि आदमी लोग गति गति धीरे काम कर लन जा तो जमीन के लन जा तो अपन अपन घर बने लन जा रहा उपुक में तुल के घर रहल और माटी गोबर से लिपा तहर
1: जरूर
0: हाँ तो जब एगो आर लाकुजिन सिपाहे रहे तो जब लाकुजिन सिपाहे रहे तो ठंडा के लिपुक में दादी बोली आव सर सब कोई बैठा सर आई सब कोई बैठब सर चूल्हा आग रही और
1: लिट्टी पके
0: हाँ तो हमको बहुत बढ़िया चीज रहा
2: हमर हम एगो बात है जब जुड़ती हाँ। हमर जन भी माता रहल कठमा तो वो जब पराठा पका दे ना चार पांच गो लोहिया छोड़ दे ए अब सर अपन अपन लिट्टी पका ले सर
1: अपन पकावा
2: हाँ तो वो थी करके अब चूल्हे में अंगोरा में लिट्टिया सेंक के हमने चार संगे रोज लिट्टी खा दिली रोज
1: चाचा जी सुखेंद्र रामदास जी हमने के जो चर्चा बा बहुत दिलचस्प हो गल बा चर्चा के हमने आगे बढ़ावा जाए एगो अन्य प्रोग्राम में समय अब समाप्त हो गल आप दोनों जना के आपके उपस्थिति खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और हमने के सुने होला और देखे होला लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद हम वादा करत है कि बातचीत के हमने एगो अन्य कार्यक्रम में जरूर जारी रखब जा धन्यवाद नमस्ते।

0: टाइम चेक, सुबह के 10 बजे हैं। अभी के लिए संक्षिप्त समाचार याचना के साथ नमस्कार आपको।
1: नमस्कार मनीष माँ, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल ही में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार लाया जा सके। कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित हैं। इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचे का निर्धारण और वर्कफेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल किए जाएंगे। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की। बात करते हैं विमानन क्षेत्र की। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित उपायों का अध्ययन करना है। लक्ष्य है बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीतियों को तेजी से समायोजित करना। 33.4 मिलियन रुपए, ये वो कुल राशि है जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी पहली नीलामी के दौरान एकत्र की। यह आयोजन 4 दिनों तक चला और इससे प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। ये नीलामी 27 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित की गई। कुल मिलाकर 48 वाहन बेचे गए, जिनमें 7 नौकाएं, 7 मोटरसाइकिल, 2 बॉबकट मशीनें और 2 ट्रक शामिल हैं। ये प्रक्रिया FCC एक्ट के 29 मार्च 2024 से लागू होने के बाद संभव हो सकी है। अब आयोग को अपराध से जुड़े या जब्त किए गए सामान को बेचने का अधिकार प्राप्त है। पूरी प्रक्रिया जिसमें खरीदारियों को संपत्ति सौंपना भी शामिल है, एक स्वतंत्र नीलामीकर्ता की निगरानी में संपन्न हुई। इस पहली सफलता के बाद FCC अब अगली नीलामी की योजना बना रही है, जिसमें इस बार जब्त की गई अचल संपत्तियां शामिल होंगी। विदेश की खबरों में भारत के हैदराबाद में तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी नियंत्रण खोकर एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बताई जाती है। इस दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। सरनाम रोड सुहिनाम में, नब्बे साल के 90 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम दत्त धुआ, जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके बेटे रोशन धुआ के मकान सरनाम रोड सुहिनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाकी शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मिशन क्रॉस रोड बोनाकय में, बयासी साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधिका नुबिन, जो राधिक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके मकान मिशन क्रॉस रोड बोनाकय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबिन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: On the hour, every hour, Radio Mauritius.

डाल देगी, यानी जो हमल वाली होगी उस दिन के होल से और हैबत से हमल को गिरा देगी, यानी हमल खौफ के मारे साकित हो जाएंगे। वह तरन्ना ससुकारा, और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में है। वमा हुम बिसुकारा, और वो नशे में न होंगे। वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब शदीद है, मगर है ये कि अल्लाह की मार कड़ी है। अज़ाब इलाही के खौफ से लोगों के होश जाते रहेंगे। उस वक्त जलजले की शिद्दत से लोग मदहोश होंगे। वमिनन नासी मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, और कुछ लोग वो हैं कि अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं बे जाने बूझे, यानी इल्म इनके पास नहीं, बगैर किसी दलील के अल्लाह की सिफात और जात में बहस करते हैं और तोहीन और बेद भी करते हैं। इससे मालूम हुआ कि इंसान जब दीन की बात करे तो कुरान और हदीस का, शरीयत का इल्म हो तो बात करे, वरना बगैर इल्म के अगर वो बात करेगा तो गलत बात जबान से निकलने की सूरत में बर्बाद हो जाएगा। वयत्तबियु कुल्ल शैतान मरीद, और हर सरकश शैतान के पीछे हो लेते हैं, हर सरकश शैतान की बातें मानते हैं। ये आयत नदर बिन हारिस काफिर के बारे में नाजिल हुई, जो बड़ा ही झगड़ालू था और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बताता था और कुरान के मुतालिक कहता था कि ये पुराने जमाने के लोगों के किस्से हैं और मौत के बाद उठाए जाने का ये मुनकिर था। कुतिबा अलैही अन्नहु मन तवल्लाहु, जिस पर लिख दिया गया है कि जो शैतान से दोस्ती करेगा, फअन्नहु युदिल्लुहु, तो ये जरूर उसे गुमराह कर देगा। वयहदीहि इला अज़ाबिस सईर, और इसे जहन्नम के अजाब की राह बताएगा। यानी ये बयान किया जा रहा है कि ये बात लोगों को बता दी गई और लोग जानते हैं कि शैतान की जो पैरवी करेगा शैतान उसे जहन्नम में ले जाएगा। शैतान के इत्तिबा से जजर फरमाने के बाद जो मुनकिरीन बास हैं, कयामत के दिन उठने का जो इनकार करते हैं, उन पर हुज्जत कायम फरमाई जा रही है। या अय्युहन नास, ए लोगों, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें कयामत के दिन जीने में कुछ शक हो, कयामत के दिन दोबारा उठने के बारे में अगर तुम्हें शक हो, फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन, तो ये गौर करो कि हमने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, यानी तुम्हारी नस्ल की असल तुम्हारे जद्दे आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। सुम्मा मिन नुतफा, फिर पानी की बूंद से, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को और सारी नस्ल को पानी की बूंद से पैदा किया। सुम्मा मिन अलाकतिन, फिर खून की फिटक से, कि वो नुतफा गाढ़ा खून हो जाता है। सुम्मा मिन मुदगतिन मुखल्लकतिन वगैर मुखल्लका, फिर गोश की बोटी से नक्शा बनी और बेबनी, यानी फिर वो खून से गोश की बोटी बनती है और फिर इसमें कुछ नक्शा बना होता है, कुछ नहीं बना होता, और फिर आहिस्ते आहिस्ते शक्ल पूरी होती है। बुखारी मुस्लिम की हदीस में है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों का मादाए पैदाइश माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफा रहता है, फिर इतनी ही मुद्दत खून बस्ता हो जाता है, फिर इतनी ही मुद्दत गोश की बूटी की तरह रहता है, फिर अल्लाह ताला फरिश्ता भेजता है जो इसका रिस्क, इसकी उम्र, इसकी अमल
اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے،

0: है कि अल्लाह के बारे में यूं झगड़ता है कि ना तो इल्म है, वला हुदन, ना कोई दलील है, वला किताब मुनीर, और ना कोई रोशन नोश्ता कोई किताब। यानी कोई आदमी वो है जो अल्लाह के बारे में झगड़ता है बगैर इल्म के, बगैर दलील के, बगैर रोशन किताब के। शान नुज़ूल की आयत अबू जहल वगैरह एक जमात कुफार के बारे में नाजिल हुई जो अल्लाह ताला की सिफात में झगड़ा करते थे और इसकी तरफ ऐसे औसाफ की निस्बत करते थे जो अल्लाह की शान के लायक नहीं। इस आयत में बताया गया कि आदमी को कोई बात बगैर इल्म के, बगैर सनद और दलील के नहीं कहनी चाहिए, खासकर जब अल्लाह ताला की शान के बारे में बात हो, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात हो, तो इंसान को बहुत एहतियात करनी चाहिए। और जो इस तरह बगैर दलील के, बगैर इल्म के बात करता है वो अक्सर कुफर बक देता है, और जो बात इल्म वाले के खिलाफ बेइल्मी से कही जाएगी वो बातिल होगी। फिर इस पर ये अंदाज के बंदा बगैर इल्म के जहालत के साथ बात करे और फिर इस पर इसरार भी करे और तकब्बुर भी करे, और इसरार करते हुए तकब्बुर करते हुए हक से अपनी गर्दन मोड़े हुए भी हो, तो कितना बदनसीब है कि इस कदर गुरूर है कि अपनी गलती को भी सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं। सानिया इत्फीही ले युदिल अन सबीलिल्लाह, हक से अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि अल्लाह की राह से बहका दे और लोगों को अल्लाह के दीन से मुनहरिफ कर दे, दूर कर दे। लहू फिद दुनिया खिज्युन, इसके लिए दुनिया में रुस्वाई है। लहू फिद दुनिया खिज्युन व नुज़ीकुहु यौमल क़ियामति अज़ाबल हरीक, इसके लिए दुनिया में रुस्वाई है और क़यामत के दिन हम उसे आग का अज़ाब चखाएंगे। चुनाचे अबू जहल ग़ज़वा बदर के मौके पर ज़िल्लत और ख़ारी के साथ कत्ल हुआ और क़यामत में फरमाया कि उसे आग का अज़ाब चखाएंगे और उससे कहा जाएगा ज़ालिक बिमा क़द्दमत यदा का, ये उसका बदला है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा। यानी जो तूने दुनिया में किया कुफर झुटलाना, ये उसका बदला है। وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, और अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता, किसी को बगैर जुर्म के नहीं पकड़ता, सजा नहीं देता। तो काफरों को सजा दी जाएगी इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया, गुनाह किया, जुर्म किया। अगर आखरत की सजा से बचना है सच्ची पक्की तौबा करो, ईमान लाओ और पाकीज़ा जिंदगी गुजारो। सूरह हज का पहला रुकू मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला इस रुकू के नूर से हमारे कुलूब को रोशन फरमाए।
1: सामीन, इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस आपसे मुखातिब हैं। अभी आप सूरह हज की पहले रुकू की तफसीर डॉक्टर आसिफ कादरी दामत बरकत मालिया की जबानी समात की। आइए प्रोग्राम को जारी रखते हुए पेश खिदमत है ये सबक आमोज कहानी जिसका उन्वान है किस्मत का खेल।

जमाना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज्यादा अक्लमंद न था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उस

से बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया, शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैर व तफरीह के बाद वापसी का सफर शुरू किया तो रास्ते में उनकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बजाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि इस जंगल को काटकर यहां शानदार महल्लात तामीर किए जाएं और उन महल्लात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतिमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात न लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया तो उनके अंदर छिपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वो आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में ये खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, ये खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है, होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद न रखनी चाहिए, लिहाजा बादशाह को कहे कि उसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को यह मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए, अगर बहादुर निकला तो काम आएगा और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिम्मत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। तआक़ब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिली जुली कैफियत नुमाया थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले, आपने रास्ता बदल लिया। बादशाह ने खामोशी से उस पागल शख्स की तरफ देखा और दिल में सोचा कि ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो, आज से ये मेरे साथ रहेगा। दरबारी, जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स तुम सबसे ज्यादा जहीन है, चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया, ये होता है ज्यादा जहीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती

किसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाजा जन्म लेने लगा। दरबारी, जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा न कर सके कि एक अजनबी, और वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत वो जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फकीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया के चंद अफराद आगे बढ़े और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाजा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिसकी वजह से आपको सजा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सजा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहां महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सजा के लफ्ज से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबराकर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के जेर कब्जा थी, आगे बढ़ा और मुकारी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तप्पड़ किया, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूं। रियाया ने उसकी बेवकूफी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार तप्पड़ रसीद करो, फिर देखना, बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बराजमान हुआ, तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टुकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे यह समझते देर न लगी कि अगर वो ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीजू, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। रियाया, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे, अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल उन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। चुनांचा वो आपस में सरगोशियां करने लगे, यार ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रियाया तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं, देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था।
खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशवरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वो सब अंदर से तप रहे थे मगर जाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ ना मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रियाया ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। लेकिन ये तो सच है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियाया ने पागल को मुखातब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना, देखना तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो दो कुर्सियां भी खींच सकता हूं। रियाया हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगा इम्तियाज देकर अपने फौज का जर्नेल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रियाया सर पकड़कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है, हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देखकर मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सबने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ है, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जर्नेल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दे। रियाया ने यह साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनांचा रियाया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी, दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की ढूल बजा दी और अपने फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिए। अब लश्कर का सिपा सालार पागल है लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पुष्ट पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। क्योंकि वो कमांडर था पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनख्वार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया। पागल जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाति दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं लड़ाई नहीं होगी, मैं उस कमांडर को माफ करता हूं, उसने मेरी जान बचाई है, ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है, हम जंग नहीं चाहते। हाँ

जो रियाया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गर्ज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया, यहां तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगे, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक और नया जाल बनने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने न रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे, उसे खत्म करना जरूरी है। सबने एक जबान होकर हां कर दी, लेकिन उनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार और दिल का नर्म। उसने बड़ी कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक खास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है, और याद रखो, जिसे अल्लाह इज्जत देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज्जत छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो, उसकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रजा पर रजा हो जाओ, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बजाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है, किस्मत। अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा, लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सारे रियाया ने अपने हसद पर तौबा किया और कुछ वक्त बाद पागल वफात हुआ और रियाया फिर से अपने रुतबू पर फाइज हुए। तो दोस्तों, ये कहानी बजाहिर एक फनी कहानी लगती है, लेकिन इसमें एक हकीकी सच छुपा है जैसे हमें तस्लीम करना होगा, और वो है सच्चाई, किस्मत और अल्लाह का करम। हमें भी कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे या रुतबे पर फायज है और कामयाब हुआ है तो वो उनकी मेहनत का सिला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें ऐसे सिफात हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी है। कोशिश करे वो सिफात अपनाए, मेहनत करे, सच्चाई इख्तियार करे, शायद वही इज्जत तुम्हें भी मिले। लेकिन हसद ना करे, तारीख इस बात का गवाह है, मुनाफिक लोग और हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते, हमेशा मैदान सच्चे लोगों का ही होता है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।

समीन फासले इंसान को दूर जरूर करते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। दुआ है, ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हम सबको खुशहाल और आबाद रखना। आमीन सुम्मा आमीन।

दुआ नसीब वालों को मिलती है, इसलिए जब कोई आपको दुआ दे तो उसके लफ्ज़ों पर सिद्क दिल यानि सच्चे दिल से आमीन कहें, क्योंकि खुलूस नीयत को जांचने का कोई पैमाना अब तक ईजाद नहीं हुआ। और कोई जब आपसे ये कहे कि दुआ करना मेरे

0: रे थोड़ा सर्दी पड़ जा त्रास रू हंसते मधु पारुआ पूजन करा अंत पड़ाते धरा
1: अरे ये ढेले ये तो करो।

0: करूं।
1: भाई कहिए ने के भाई कोई ने गमवा माटे भले तन्नी सुंदरता काम लागे, पण गमता रहेवा माटे तो भाई मननी सुंदरता ज जरूरी छे। एनी साथे आगलू गीत लई ले, धर्मेश बारोटना अवाजमां लेवामां आवेलुं।

0: બસ ભાઈ, એની સાથે આવજો, કહેવાનો સમય થઈ ગયો છે. તમે સૌ કોઈ પ્રેમથી સાથ આપ્યો તે માટે તમારો ઘણો ઘણો ધન્યવાદ. અમે આશા રાખીએ કે આજે જે ગુજરાતી ગીતો વગાડ્યા છે તમને ગમ્યા હશે. એની સાથે અમિતાને આપો અનુમતિ. નમસ્કાર, શુભ દિવસ.
1: 819 kilohertz, 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
2: नमस्कार, इस समय दिन के 2:20 हुए हैं. हमारी आपकी मुलाकात शुरू हो रही है और आपकी पसंद कार्यक्रम के दौरान आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है. हम हैं सुरेखा आपके साथ, बस दुआएं यही करेंगे कि आप सेहतमंद होंगे, आप खुश होंगे और आप संतुष्ट होंगे. लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम आपकी पसंद कार्यक्रम. आपकी पसंद कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका और उम्मीद यही करते हैं कि जहां भी होंगे आप हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेंगे. ये है आपकी पसंद कार्यक्रम, हर रोज़ प्रस्तुत किया जाता है और आप लोगों के नाम करते हैं वही गाने जो आप मांगते हैं, जिसकी फरमाइश आप करते हैं. तो चलिए, आप 5251700 पर मैसेज भेजिएगा या फिर 4028085 पर फ़ोन कीजिएगा और बताइएगा हमको कि कौन सा गाना हम आपको सुनवाएं. चलिए फिलहाल तो आपको जो जीता वही सिकंदर का ये गाना सुनवाते हैं और आप लोगों के नाम करते हैं ये गाना, इस उम्मीद से कि आप हमेशा अपने रास्ते पर अपनी जंग में जीतने की कोशिश करेंगे, मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे.

और चलिए ज़रा बढ़ते हैं आगे और नास्तिक मूवी का गाना सुनते हैं। हम पहली फरमाइश हम आप तक पहुंचाते हैं। ये गाना हम गायत्री जी के लिए बजवा रहे हैं। नोवेल फौज से गायत्री जी ने बताया कि उन्हें ये गाना बड़ा पसंद है, तो चलिए उनकी तरफ से उनके बेटे अजय के लिए, मेबक के मामी कल्याणी मोहन जी के लिए और मोताइलों की भाभी शकुंतला के लिए, साथ में नोवेल फौज की सखी गीता बाई जी के लिए। तो चलिए पेश करते हैं गायत्री जी की पसंद का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और आपकी पसंद कार्यक्रम में अभी हम जो पेश करेंगे वो गाना होगा निकाह मूवी से लिया गया। आफेज जी ने लावण्य से इस गाने की फरमाइश की है। ये गाना है महेंद्र कपूर और सलमा आगा की आवाज़ों में, और ये गाना हम पेश कर रहे हैं लावण्य के आफेज जी की तरफ से उनके शौहर

0: आपकी पसंद कार्यक्रम में इस बार हम सुनीता जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। गाँव गुप की सुनीता जी के नाम करते हैं हम। लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज़ों का ये गीत संगम मूवी का ये गाना आप भी साथ मिलकर गाइएगा, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आप अपने दिल को भी मना लीजिएगा कि हर किसी के साथ प्यार से पेश आए, हर किसी के साथ बहुत ही प्रेम के साथ पेश आए।
1: वो गा

दीवानों की ये दीवानगी ही होती है कि सोचते हैं कभी जब दिल टूट जाता है कि ऐ काश कहीं ऐसा होता, सीने में दिल दिल होते एक टूट भी जाता तो दूसरे से हम दिल को बहला ही लेते। ये गाना हम पेश कर रहे हैं, मोहरा मूवी से लिया गया, कुमार सानू की आवाज़ का ये गाना है। ये गाना हम विश्वानी दुमन जी के नाम करते हैं, पाकुआ से। विश्वानी दुमन जी ने इस गाने की फरमाइश अपनी बहनों के लिए की है, इंदिरा और शारदा के लिए, और अपनी सहेलियों के लिए की है, नीला और प्रतिभा के लिए, फिर शोभा जी के लिए और गीता गजाधर जी के लिए। चलिए ज़रा ये गाना हम सुनते हैं विश्वानी जी के साथ मिलकर।

फरमाइश अब की बार हम पेश करते हैं, फरमाइश अब की बार हम पूरी करते हैं नीता जी की। नीता जी की तरफ से हम पेश करते हैं एक गाना, जीवन मृत्यु मूवी से लिया गया, और ये गाना हम मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में पेश करते हैं नीता जी के लिए और उनके पूरे खेदनी परिवार के लिए, सेंट जूलियन विलाज के।

इस बार हम सुदेवी जी की पसंद का गाना पेश करते हैं। ये गाना है अप्रैल फूल मूवी से लिया गया। सुदेवी जी ने वाकवा से मांगा है ये गाना दीदी ललिता के लिए, कुशल परिवार के लिए, आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता, शोभा, दीविना, मालेगा के यशना, नीरज और राम रतन, राम गुलाम और कुवारू परिवार के लिए।

0: Wish you all a very good afternoon. Check your time. इससे पहले के ठीक 3 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ। आपको नमस्कार आस्था।
1: नमस्कार। 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 की तैयारी में आज पोटली में अहम बैठकें लगाई गई। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी सुबह बिजनेस मर्चेंट्स मेक्सा एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और कृषि व व्यापार सदन के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की, जहां बजट से जुड़े मुद्दों और सुझावों पर सीधी बातचीत हुई। साथ ही दोपहर बाद बैंकिंग, गैर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव सरकार के सामने उन्होंने रखा, ताकि आने वाले बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सके। हज 2026 को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला सामने आया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीजा रद्द, ये जानकारी रात में सामने आई। हज के जिम्मेदार शकील मोहम्मद के अनुसार मॉरिशस में 5 किशोर इस फैसले से प्रभावित हैं। मंत्री शकील मोहम्मद सऊदी अरब के हज मंत्रालय, डिप्टी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी राजदूत के संपर्क में हैं, ताकि आधिकारिक स्पष्टीकरण मिले और समाधान तलाशा जा सके। अंतिम समय में लिए गए इस फैसले से प्रभावित परिवारों और आयोजकों में चिंता बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। ये फैसला सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू है। ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने की पहल, बॉन्सेक्वा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम। विश्व

0: असर पड़ रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: कालीमाई रोड लाहौजा न्यू ग्रोव में 89 ईयर्स ओल्ड की सावित्री सिन्हान की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम चितामन, लोग उन्हें सुशील के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल सुबह के 10 बजे उन्हीं के मकान न्यूकोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Radio 24 hours a day.
3: इस समय 3:03 हुए हैं। आस्था से आप सुन रहे थे आज के संक्षिप्त समाचार। अब हम आपके लिए पढ़ते हैं दो विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अप्पा वालिदेपट के निवासियों को सूचित करता है कि सांदुकान इलाके में और आसपास के इलाकों में कल रविवार 3 मई को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी पेचित रिवियर के निवासियों को सूचित करता है कि ननलोर लेन, कॉन्टेज एम्ब्रेवाद, प्रिंसेस मोगारेट, चमरू लेन, दाफोडिल लेन, बिसेसॉ लेन, जॉयसरी लेन, मकनमारा लेन, ओल्ड ट्राफोर्ड लेन और रॉल रोड के एक भाग में तथा आसपास के इलाकों में कल रविवार 3 मई को ही सुबह 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही इन सभी इलाकों में काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी बिना पहले से इस सूचना दिए ही। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो आगे बढ़ते हैं हम आपकी पसंद कार्यक्रम के साथ।
4: आपकी पसंद
3: कार्यक्रम हमने शुरू किया है इस लगभग 2:15 बजे से और हम इसीलिए चलेंगे 4 बजे तक और अभी 3:05 हुए हैं। सो आगे बढ़ाते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम में आपकी फरमाइश किए हुए गाने हम पेश करते हैं। चलिए ज़रा हम पेश करें लक्ष्मी शंकर जी की आवाज़ में एक भक्ति गीत और ये भक्ति गीत हम बजवा रहे हैं कुटेज की शांति जी की फरमाइश पर और शांति जी की फरमाइश का ये गाना हम उनकी तीन बेटियों तीन दामाद के लिए पेश कर रहे हैं। दो नाती, एक नातिन के लिए और उनके पति के नाम करते हैं।

चलिए जरा इस बार हम पेश करते हैं माया मूवी का गाना. लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों का ये गीत है हम पेश कर रहे हैं रेहाना जी के लिए. फिनिक्स की रेहाना जी ने इस गाने की फरमाइश की है.

दिल में जिसकी तस्वीर है उस तस्वीर को आप ज़रूर संजो के रखिएगा, क्योंकि दिल में जो तस्वीर बसती है उस शख्स के प्रति प्यार बड़ा बढ़ा रहता है। और चलिए अपनेपन की इस दुनिया में, अपनेपन की इस महफिल में चलिए हम पेश करते हैं अनुराधा पोड़वाल और महेंद्र और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों का गाना। और ये गाना है अमृत मूवी से लिया गया, धनी जी ने पसंद किया है ये गाना, बुआशरी से यश और हेमिश के नाम किया है उन्होंने ये गीत।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस पर मनोरंजन आपका और मनोरंजन हम कर रहे हैं आपका, हमारे श्रोताओं की पसंद के गानों के साथ। आपकी पसंद प्रोग्राम है ये, और इसमें इस बार हम दीदार मूवी का गाना आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इस गाने की फरमाइश अमीना जी ने की है, उन्होंने अपनी स्वीट लवली सिस्टर फ़ातिमा के नाम ये गाना किया है, जो हज करने जा रही हैं। कल मुबारक हो फ़ातिमा जी, और आपको आपके दो भाइयों की तरफ से, इकबाल और कासिम की तरफ से, आपकी दो भाभियों की तरफ से, चार बहनों की तरफ से, और पूरे बिहारी परिवार, याहू परिवार, जामाली और रजब परिवार की तरफ से मुबारकबाद मिली है। आपके नाम करते हैं ये गाना आपके पूरे परिवार की तरफ से फ़ातिमा जी। यही गाना हम अमीना जी की तरफ से नाजिम और तबस्सुम के नाम करते हैं, जो वाकवा के रहने वाले हैं।

दुआएं दुआओं की बात करें तो हम हर किसी को दुआ देते हैं कि हर पल उनके लिए बहुत ही संतोषजनक पल रहे, और हर पल को मिला के जो हम देखें तो आपकी पूरी जिंदगी संतोषजनक रहे। इस बार जो गाना आपको सुनवाएंगे लव मैरिज मूवी का गाना है ये, और इसकी फरमाइश रेहाना जी ने नतरदाम से की है। रेहाना जी की पसंद का ये गाना हम उनकी तरफ से उनकी सखी माला फौदार जी के नाम करते हैं, और उनकी सखी सुरेखा जी के नाम, और साथ ही साथ विशेष तौर पर उनकी सखी शकुंतला और रघुनंदन जी के नाम कर रहे हैं जो बेल्जियम की रहने वाली हैं।

और चलिए जरा बरसात मूवी का गाना सुने इस बार हम। और बरसात मूवी का ये गीत हम पेश कर रहे हैं इब्राहिम जी के लिए। पोटली से इब्राहिम जी ने इस गाने की फरमाइश की है। ये गाना आप लता मंगेशकर की आवाज में सुनिएगा।

बरसात मूवी के गाने के बाद चलिए जरा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ जब प्यार किसी से होता है मूवी में सुनते हैं। और ये वो गाना है जिसकी फरमाइश की है विद्यानंद जी ने मीबर्ग से। उन्होंने ये गाना मांगा है सुहंती जी के लिए, अमित, शीतल, आशु, कृषिका, विशाल, राजीव, स्वीटी, हरवेश के लिए, और शिवाला लेन मीबर्ग के अपने दोस्त विष्णु गजाधर जी के लिए भी विद्यानंद जी ने ये गाना मांगा है, और बहन बिंदु कालीचरण जी के लिए भी।

ये है मुकेश की आवाज। इस गाने की फरमाइश आरती जी ने त्रियोले से की है अपने नातियों के लिए, दिनान, रोनिश, कियान और रोनान के लिए।

और बढ़ते हुए जो चलेंगे तो हम त्रिशूल मूवी का ये गाना पेश करेंगे दिलीप जी के लिए। दिलीप जी ने ये गाना मांगा है अपने पूरे परिवार के लिए। उन्होंने ये गाना मांगा है संगीता के लिए, योगेश, कविता, किसनवी, मनसा, आरव, लक्ष्य और निशान के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए।

0: 800 and 19 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: और चलिए इस बार हम इज्जत मूवी का गाना पेश करते हैं. ये गाना लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, लोग माउंटेन की नारायणी जी की तरफ से, शातुबे नागस की आशनी, रेखा सुरेखा और मंधव परिवार के लिए, माला झड़ी जी के लिए जो पिछित रहती हैं उनकी तरफ से, उनके सब पूरे परिवार के लिए, ईश्वर, दीपक, रीमा और पूरे झरी परिवार के लिए.

तो भाई आगे बढ़ते हुए हम गुमराह मूवी का ये गाना पेश करते हैं प्रकाशवती जी के लिए, और यही गाना हम पेश करते हैं अंबिका जी के लिए जो बाकुआ की रहने वाली है।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों के का ये गाना था गुमराह मूवी में, और इस बार प्रेम नगर मूवी का गाना पेश करते हैं हम। ये गाना है पॉम्पलीमूस की शोभा जी की पसंद पर, और ये गाना हम उनकी तरफ से उनके पूरे परिवार के लिए बजवा रहे हैं।

बस अंतिम गाना हम पेश करते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम का, और ये गाना है फिल्म ऊंचे लोग से लिया गया। इस गाने की फरमाइश की है आशा जानू जी ने कुटेज से। उन्होंने ये गाना मांगा है अपनी मामा कुमारी के लिए, नेफ्यूज शुभम और ऋषभ के लिए, दीदी आरती, जीजू राज और पूरे जानू परिवार के लिए, चित्रा जी के लिए, भाई विजय के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए। और इसी गाने के साथ आशा जी और हमारे प्रिय सुनने वालों, हमारा प्रोग्राम आपकी पसंद यहाँ पर समाप्त होता है। 4 बजे आप सुनिएगा आज का साहित्य दर्पण कार्यक्रम डॉक्टर अलका दनपत जी से। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल सुबह 6 बजे होगी। तब तक के लिए हम सुरेखा आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ शाम, नमस्कार।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण, प्रस्तुति डॉक्टर अलका धनपत की।
2: साहित्य दर्पण, नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप? मौसम कुछ कुछ खुशनुमा हो गया है, कभी बारिश तो कभी धूप, कभी गर्मी तो कभी फिर से ठंड दस्तक देने लगी है। बस मई का महीना शुरू हो ही गया तो ठंड मानो दरवाजे पर खट खट खट कर रही है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। और सचमुच गर्मी से निजात मिलेगी, थोड़ा आनंद आएगा। और कल हमने पूर्णिमा मनाई। कौन सी पूर्णिमा? बुद्ध पूर्णिमा। एक और कार्तिक मास की पूर्णिमा। वैसे तो हर माह में पूर्णिमा और अमावस्या आती ही हैं, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। ठीक ऐसे ही वैशाख मास की पूर्णिमा भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और इस बार वैशाख मास की पूर्णिमा 1 मई को पड़ी और इसे हम बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो श्रोताओं, इस पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने रात को चांद को देखने का प्रयास किया होगा, या सुबह उठकर चांद की ठंडी शीतल ज्योत्सना का आनंद उठाया होगा। कभी करके तो देखिए, 2-3 मिनट लगातार एकटक चांद को देखिए और उसके बाद देखिए आँखों में कितनी ठंडक महसूस होती है। इस चांदनी के कारण, इस ज्योत्सना के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो बहुत सुंदर सुगंध वातावरण में होती है। श्रोताओं, बुद्ध का जो जन्म है, कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए ही हुआ था। गौतम बुद्ध या बचपन

उनके सिद्धार्थ, पिता शुद्धोदन, माँ मायावती। मायावती ने सपने में एक बार देखा कि ये बालक शायद संसार में नहीं रहेगा, और मायावती ने जब बालक जन्म होने लेने वाला था तो ऐरावत सफ़ेद हाथी को भी सपने में देखा था। तब ज्योतिषियों को बुलाया गया कि ऐसा क्यों उसको सपने में आता है। ज्योतिषियों ने कहा, या तो आपका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या आपका पुत्र सन्यासी हो जाएगा। राजा शुद्धोदन की तो चिंता ही बढ़ गई। एकमात्र पुत्र जो उनके बाद राज्य को संभालेगा, यदि वह भी सन्यासी हो गया तो कपिल वस्तु का क्या होगा। उन्होंने पूरी तरह से आज्ञा दी कि सिद्धार्थ के आसपास किसी तरह के दुख का कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। उसे दुख नाम की चीज़ से परिचित ही नहीं कराया जाएगा। लेकिन जीवन की यात्रा को कौन पलट सकता है। सिद्धार्थ जब युवा हुए तो एक दिन अपनी घोड़ा गाड़ी सारथी के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो खांस रहा था और बिल्कुल कृशकाय था। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कैसा व्यक्ति है, इसको खाना नहीं मिलता, क्या बात है। सारथी ने कहा, महाराज ये जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा में रोग और शोक तो लगे ही रहते हैं। शरीर सदैव एक सा नहीं रहता है, जब कमज़ोर होने लगता है तो उसमें रोग भी आते हैं। यह व्यक्ति रोगी है और इसी कारण वह खांस रहा है और कमज़ोर है। सिद्धार्थ के लिए यह रूप अनोखा ही था, उसने कभी किसी रोगी को जीवन में देखा ही नहीं था। एक दिन और वे यात्रा पर थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को और देखा जो बहुत ही बूढ़ा था, लकुटी लेकर चल रहा था और उसकी हड्डियां दिख रही थी। सिद्धार्थ ने फिर प्रश्न किया कि यह कौन व्यक्ति है, किस तरह से इसकी हड्डियां दिख रही हैं। सारथी ने फिर कहा, महाराज यह भी जीवन की महत्वपूर्ण यात्रा है। राजकुमार, इस यात्रा में हम और आप सब एक दिन बूढ़े होंगे और यह शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है, असहाय होने लगता है, तब लाठी इन सब का सहारा लेना पड़ता है। सिद्धार्थ फिर से मौन हो गए, लेकिन यह प्रश्न उनको बार बार तंग कर रहा था कि क्या जीवन की यात्रा इसी का नाम है। एक बार फिर देखिए, सिद्धार्थ यात्रा पर थे, लोग एक शव को ले जा रहे थे और राम नाम सत्य गा रहे थे। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी मृतक शरीर को देखा था। उन्होंने फिर पूछा कि यह क्या है। सारथी ने कहा, यह जीवन का परम सत्य है, जो इस संसार में आया है वह एक दिन जरूर जाएगा। राजकुमार, हम सबको इस दिन का सामना करना है, हमारे सगे संबंधी, हम स्वयं, ना जाने कब कौन मृत्यु का ग्रास बनेगा कोई नहीं जानता। श्रोताओं, इन तीन प्रश्नों ने सिद्धार्थ को मत डाला। वे वापस तो आए लेकिन बेचैन, इतने बेचैनी कि उनको बार बार लगता था कि यदि जीवन में रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, तो इस जीवन का लाभ ही क्या है, क्या ज़रूरत है उसके लिए इतना परिश्रम करने की कि अंत में जिनको आप इतना प्यार करते हैं, जिनके साथ घर बसा रहे हैं, वे सब आपको छोड़ के चले जाएंगे और एक दिन ये रोग और बुढ़ापा हम सबको ग्रसित कर लेगा। इन प्रश्नों के कारण श्रोताओं, सिद्धार्थ बेचैन हो उठे और एक दिन वे घर बार सब त्याग कर बोध ज्ञान की खोज में निकल पड़े कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है, यदि यही कुछ जीवन है तो जीवन जीने का लाभ ही क्या। बस उनकी एक नवीन यात्रा यहाँ से शुरू हो गई। तो चलिए, आप भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे 4028085 पर। यज मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो हम एक गीत आपके लिए प्रस्तुत करते हैं।

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण।
1: श्रोताओं, जीवन के प्रश्नों ने उनको इतना परेशान कर दिया कि उनका विवाह यशोधरा से बहुत समय नहीं हुआ था कि पूरा हुआ था। एक उनका नवजात शिशु भी था, तो मानकर चलिए एक या दो साल। लेकिन यशोधरा का प्रेम, उसका सौंदर्य, उसकी आवश्यकता, उसका आकर्षण, यह भी उन प्रश्नों के सामने फीके पड़ गए। और नवजात शिशु का प्रेम, स्नेह, आकर्षण, इसकी ओर तो उनका ध्यान ही हट गया। उन्हें बार बार लगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या फायदा जीने का? क्या एक दिन मेरी यशोधरा भी ऐसे ही बूढ़ी हो जाएगी? एक दिन मेरे माता पिता भी काल को कवलित हो जाएंगे? तो श्रोताओं, सिद्धार्थ परेशान हो गए और घर छोड़कर निकल गए। यहाँ तक कि उन्होंने, जब वे सारथी के साथ नगर के अंत तक पहुँचे, तो उन्होंने सारथी से कहा कि मेरे बाल काटो, मुकुट लो और मुझे सन्यासियों के वस्त्र दो, और अब तुम यहाँ से लौट जाओ, और किसी को भी कहना कि मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं। श्रोताओं, सिद्धार्थ घर छोड़कर चले गए और उन्होंने वर्षों तपस्या की अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध, जिन्हें बाद में सबने भगवान के नाम से पुकारा, और पुराणों में तो कहीं कहीं पर उन्हें नवम अवतार के रूप में भी माना गया, और जो बुद्ध जयंती है हम उन्हीं की याद में मनाते हैं कि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको बोधिसत्व या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन महापरिनिर्वाण अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए थे। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं थी। जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण और जो ज्ञान की खोज की यात्रा थी, बड़ी संघर्ष से भरी हुई थी। गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्ति के लिए निकले, तो उनको जिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने थे, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे वे तपस्वी बनकर तपस्या करने लगे। उनके 4-5 शिष्य भी उनकी सेवा में आसपास रहते थे, लेकिन बुद्ध न तो कुछ खाते थे, न पीते थे, बस केवल साधना में बैठे थे। इस साधना को करते करते गौतम बुद्ध बिल्कुल कमज़ोर हो गए, क्षीण काय, या जिसे हम कहें अस्थि पंजर के रूप में हो गए। तब इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कुछ गांव की महिलाएं पूजा करती थी अश्वत्थ वृक्ष की आकर, और वे वहां पे खीर इत्यादि चढ़ाती थी। तो गांव की एक महिला जिसका नाम सुजाता था, उसने पूजा करके खीर लाके सन्यासी के आगे रख दी। गौतम बुद्ध ने उस खीर को स्वीकार किया और वह खीर उन्होंने खाई। खीर खाने के बाद उनके शरीर में एक ऊर्जा पैदा हुई, क्योंकि बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था। लेकिन श्रोताओं, उनके वे चारों पांचों शिष्यों ने कहा कि ये स्वामी भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि इसने एक महिला के हाथ की खीर को खा लिया है। लेकिन गौतम बुद्ध बहुत आगे बढ़ चुके थे, यहीं से उनके ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है। वे स्पष्ट लिखते हैं कि जीवन के तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उसमें से सुर ही ना निकले, अर्थात इतना भी संयम मत करो कि शरीर, जिसके माध्यम से तुमको ज्ञान की खोज करनी है, जिसके माध्यम से तुमको आगे बढ़ना है, वही योग्य ना रहे, और इतना भी खाने पीने में ना उलझ जाओ कि साधना और अध्यात्म क्या चीज़ है उसे तुम समझ ही ना पाओ। तो जीवन के मध्यम मार्ग की ओर उन्होंने संकेत किया। यही बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग और संदेश था। तो आइए इस गीत को सुनते हैं। यज्ञ

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण।
1: तो श्रोताओं, तकनीकी सहायक के रूप में यज मेरे साथ है। 4028085 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। श्रोताओं, बुद्ध पूर्णिमा हमें बुद्ध के व्यक्तित्व को याद दिलाती है। वैदिक धर्म का भारत में इतना प्रचार प्रसार था, जो आज भी है, उसको मिटाना हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी जड़ों तक है। वह स्मृति से, गुरु परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा है। लेकिन वैदिक धर्म की के बाद उपनिषद, वेदांत, ये सब आए। बुद्ध धर्म ने भी या बौद्ध ने भी जो अपनी शिक्षाएँ दी, वो उन्होंने पाली और प्राकृत भाषा में दी, क्योंकि और आसान किया। वास्तव में धर्म की व्याख्या तो वही है, लेकिन भगवान बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने उसे और आसान किया। उनके बहुत ही सुंदर वाक्य हैं जो जीवन को दिशा देते हैं। जैसे वे कहते हैं, अप दीपो भव, तुम अपना दीपक स्वयं बनो, अर्थात अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उस दीपक की बाहर खोज नहीं करनी है। वे कहते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि अर्थात अपनी चैतन्य आत्मा की साक्षी में रहते हुए, धम्मम धर्म अर्थात अपने योग्य कर्तव्यों का पालन करते हुए, और संघम शरणम अर्थात समुदाय, समाज, देश, विश्व और समस्त ब्रह्मांड के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझना, सबके हितों की चिंता करते हुए सबके प्रति समभाव रखना होगा। वे कहते थे कि करुणा का भाव जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करुणा के भाव से ही आप परिवर्तन ला सकते हैं, और बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलते हुए आप सुखी और शांत चित्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जो बुद्ध पूर्णिमा है, उसके साथ बुद्ध के इस तरह के विचार भी जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की जब हम मूर्तियाँ देखते हैं, वह भारत में भी हैं, लद्दाख, मणिकर्ण आदि में, और ये मूर्तियाँ विदेशों में तो बहुत हैं, जो भारत के आसपास के देश हैं, थाईलैंड है, चीन है, कंबोजिया है, जापान है, इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत हुआ। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के अपने पुत्र राहुल, उसका निर्माण भी यशोधरा ने इस दृष्टि से किया कि जब भगवान बुद्ध घर आए भिक्षा का पात्र लेकर, तो उनकी पत्नी ने उनके पुत्र को एक भिक्षुक के रूप में उनको सौंपा। आप देखिए, जिस साधना को गौतम बुद्ध जंगल में करते रहे, यशोधरा ने राजमहल में रहते हुए अपने पुत्र राहुल को एक भिक्षुक की तरह योग्य बना दिया, और स्वयं भी बाद में वह भिक्षुणी बन के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गई और सेवा के मार्ग पर चली गई थी। ठीक इसी तरह से राजा अशोक के दोनों पुत्र, पुत्री महेंद्र, संगमित्रा, इन्होंने भी अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। और अशोक के जीवन की तो अनेक घटनाएँ हैं कि वे हिंसा के मार्ग छोड़कर अहिंसा के मार्ग पर, भगवान बुद्ध के मार्ग पर चले, और जीवन भर उन्होंने वृक्ष लगवाए, धर्मशालाएं बनवाई, पानी पीने के स्थान बनवाए, मतलब जितना वो प्रजा की सेवा कर सकते थे उन्होंने की, और जगह जगह पर उन्होंने पत्थरों पर बौद्ध धर्म के करुणामय संदेशों को खुदवा कर लगवाया, ताकि लोग उनको पढ़ें और इसका प्रचार प्रसार हो। पर क्योंकि भारत में उपनिषद, वेदांत, सांख्य, न्यायिक दर्शन, मीमांसा, वैदिक धर्म, ये इतना गहरा था कि वह बुद्ध धर्म की बहुत सी शिक्षाओं से बराबर मेल खाता था, तो लोगों को बुद्ध बनने की उतनी आवश्यकता नहीं हुई। आज भी अगर आप बिहार में जाएं, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर बौद्ध स्तूप है, वह वृक्ष है जिसके नीचे उन्होंने बोधिसत्व या ज्ञान प्राप्त किया था। जापान ने वहाँ पर एक बहुत सुंदर भगवान बुद्ध का स्टैचू बनाया हुआ है, और उस वृक्ष के नीचे या उस मंदिर में जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, लोग आज भी बैठकर शांति की अनुभूति करते हैं। श्रोताओं, बुद्ध की अनेक हस्त मुद्राएँ भी हैं। जैसे पहला है भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श मुद्रा ज्ञान प्राप्ति की प्रतीक है। फिर उनकी कुछ मुद्राएं हैं ध्यान मुद्रा की, जो शांति का प्रतीक है। अभय मुद्रा भी है उनकी, जो सुरक्षा और विश्वास की प्रतीक है। वितर्क मुद्रा है, ज्ञान व बुद्धि की प्रतीक है। वरद मुद्रा है, जीवों के प्रति प्रेम दान तथा दया की मुद्रा है। श्रोताओं, इसीलिए भगवान ने द शब्द दिया था। उन्होंने कहा, ये द शब्द मैं देवता मनुष्य राक्षसों को देता हूँ, लेकिन इसकी व्याख्या तुम सबके लिए अलग अलग होगी। देवता के लिए द है दमन, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। अप्सराओं के नृत्य, खाना पीना, तो उनके लिए है दमन, अपनी इंद्रियों को संयमित करना। और राक्षस बहुत अत्याचार करते हैं, इसलिए वहाँ पर द का मतलब है दया करना। और मनुष्य, वे मेहनत करते हैं, कमाते हैं, उसमें से कुछ उनको ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। तो द शब्द के तीन जगह पर अलग अलग जातियों को अलग अलग अर्थ दिए गए। गौतम बुद्ध भिक्षा पात्र लेकर वापस लौटे। पूरा राज्य बहुत ही आश्चर्यचकित था। लेकिन यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ, मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा नाम की पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने यशोधरा के स्वाभिमान को दिखाया है, जिसकी चर्चा हम इस गीत के बाद करेंगे।

0: जो शब्दों से अपना परिचय कराए, लेखनी से जो अपनी हमें मिलवाए, मूक रहकर अपना परिचय स्वयं दे जाए। साहित्य दर्पण।
1: चलिए हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, तो हम एक श्रोता को लेते हैं। हेलो।
2: हेलो डॉक्टर जी, नमस्कार।
1: नमस्ते जी, कैसे हैं?
2: जी मैं धनी हूँ
1: जी, सुनाइए। जी
2: आप अच्छी है?
1: जी जी बिल्कुल
2: जी। जी मैं अपनी ओर से कुछ कहूँगा। देखिए, ईश्वर की रची हुई इस दुनिया में इंसान को रचा है,
1: हाँ।
2: तो अनेक प्रकार के प्राणियों को भी,
1: बिल्कुल
2: वैसे ही प्रकृति भी है
1: जी,
2: पेड़ लते सभी कुछ। और देखिए, हम इंसान रचा है, भगवान ने इंसान को रचा है
1: जी,
2: तो मृत्यु भी है, जीवन है तो
1: हाँ, उसका एक अंग है वो भी, बिल्कुल
2: जी। जैसे कि एक पेड़ पर एक पत्ते हमेशा के लिए नहीं रहेगा,
1: हाँ।
2: वैसे ही तो हम इंसान भी है, हमें आना जाना, ये भगवान ने रचा है, वो पागल नहीं है,
1: हाँ
2: तो हमें जाना है। तो और एक इस दुनिया में हमें परीक्षा, ईश्वर हमसे परीक्षा भी लेते हैं, क्या कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या करना है
1: जी, जी।
2: आपने क्या किया तो क्या आपको पाना है,
1: हाँ।
2: तो यही हमें, आपने जो शुरू में कुछ जब आपने शुरू किया तो कुछ ऐसे ही बोला था कि किसी ने क्या किया,
1: हाँ। मतलब गौतम बुद्ध
2: को कह रहे थे कि इस दुनिया में आना तो क्या,
1: हाँ,
2: मतलब
1: उनको
2: है?
1: कभी दुख दिखाया ही नहीं ना
2: जी,
1: ये रास्ता ये जगह ये बातें उनको डर के मारे पिता ने ये सब बताया ही नहीं, लेकिन तो, ये जीवन का सत्य हाँ, सामने तो आएंगी। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने यही कहा कि हम अपनी इच्छाओं के कारण दुख प्राप्त करते हैं, यह जीवन की यात्रा है, बुढ़ापा मरण ये तो आएगा, लेकिन
2: आएगा।
1: दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं
2: जी। तो हम अपने विचार से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये भगवान ने रचा है ऐसी।
1: नहीं, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है धनी जी,
2: जी, जी
1: जैसे
2: हाँ,
1: पशु
2: ये
1: देखो
2: ये
1: पशु आज हजारों साल पहले भी
2: नहीं ले सकते हैं कि हम अपनी ओर से हम क्या करेंगे,
1: नहीं हम कर्म की हमें स्वतंत्रता है,
2: जो आपने बोला वही सही है।
1: चलिए ठीक है, आपने अपने विचार दिए, बहुत धन्यवाद, अभी हम और डिस्कस करेंगे, चीजें और भी खुलेंगी, ठीक,
2: धन्यवाद,
1: बहुत धन्यवाद धनी जी, बहुत धन्यवाद। चलिए एक और श्रोता को भी ले लेते हैं। हेलो,
3: हाँ बेटी,
1: हाँ नमस्ते नानी जी।
3: अच्छा और बेटी तुम्हारा हाल चाल?
1: बढ़िया, आप सुनाइए।
3: बात करो था इतनी सन जोन जानी ला तरी बहुत
1: जी,
3: तो हमसे बतिया दे हुआ था, हाँ और हमेशा तो बतिया ही ला जा, कभी मिले ला कभी नहीं।
1: कोई बात नहीं।
3: आज हमारा नातिन हमके हमारा अथी ले लन
1: जी,
3: बहुत खुशी है।
1: सुनाइए कुछ।
3: तो एगो एगो कबीर दास रलन
1: जरूर,
3: और एगो कलिया दास
1: जी,
3: एगो सूरदास। तो सूरदास अपन भजन करते रहन
1: जी जी,
3: तो कौन भजन करियन, बोलन भगवान से कब दर्शन हुई, सुना था ना
1: जी? जी बिल्कुल
3: सुना था ना बेटी?
1: हाँ हाँ सुनो सुनो,
3: बोलन भगवान से कब दर्शन हुई, तो बहुत ध्यान करा था
1: जी
3: भगवान के दर्शन करे के
1: जी जी,
3: तो बोला था अखिया हरे दर्शन के प्यासी,
1: बहुत बढ़िया,
3: अखिया हरे दर्शन के

0: प्यासी बिना दिन राता उदासी ओ अखिया हरि दर्शन के प्यासी अखिया हरि दर्शन के प्यासी जाके करवतवासी जाके करवतवासी अखिया हरि दर्शन के प्यासी
1: बहुत सुंदर।
0: अखिया हरि दर्शन के प्यासी बना बना फिरे मिर्गा दस मिर्गा जैसे बना बना फिरे बनावा में मिर्गा रहे ला उदासी ओ मन ओ मन कैसे बताए ओ हरि दर्शन के प्यासी अखिया हरि दर्शन के प्यासी
1: बहुत धन्यवाद नानी जी, बहुत
0: उनकरा तक
1: धन्यवाद।
0: कुछ नहीं रोके, बाकी
1: हाँ
0: बहुत भारी ज्ञानी रहलन सूरदास।
1: अरे बहुत धन्यवाद,
0: सूरदास
1: बहुत
0: इतना ज्ञानी
1: धन्यवाद।
0: रहलन के आँख मुन्ने मुन्ने
1: हाँ
0: उनकरा सब चीज
1: लेकिन
0: मिले,
1: मन में कृष्णा थे
0: सब कुछ
1: उनके।
0: मिले। तो
1: जी,
0: यही एगो छोटा सा नदी उनकर
1: बहुत
0: बारे में
1: धन्यवाद
0: बतिया
1: नानी जी,
0: देनी,
1: बहुत धन्यवाद।
0: सूरदास के
1: चलिए
0: बारे में।
1: एक और श्रोता को भी पकड़ लेते हैं। हेलो,
0: हेलो दीदी, मैं
1: नमस्ते
0: राधा
1: जी।
0: मोचीदा से।
1: हाँ राधा जी, सुनाइए।
0: हाँ पकड़ लीजिए
1: क्यों
0: मुझे।
1: नहीं पकड़ेंगे, जरूर।
0: हाँ आप गौतम बुद्ध जी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो मुझे एक
1: जी
0: बात स्मरण हो गया। जब हम छोटे थे 6ठी कक्षा में,
1: हाँ
0: तो उसमें एक पाठ आता था, एक
1: हाँ
0: हिंदी का पाठ आता, वो पुस्तक पता नहीं अभी मिलती है या नहीं। तो उसमें एक कहानी थी, महाराज सुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा
1: हाँ
0: थे,
1: उन्हीं के बेटे थे
0: उनके
1: ये।
0: पुत्र का नाम था
1: जी जी
0: गौतम,
1: जी
0: गौतम सिद्धार्थ
1: जी
0: तथागत।
1: जी
0: और फिर
1: बिल्कुल।
0: आगे चलकर हमने पढ़ा पत्नी यशोधरा, पुत्र
1: हाँ
0: राहुल,
1: बिल्कुल ठीक।
0: और वो जो थे ना गौतम बुद्ध जी,
1: हाँ
0: बाकी सब संतों की तरह, महात्माओं की तरह, ये लोग भी मानवता ही का पाठ हमें पढ़ाते
1: बिल्कुल
0: थे।
1: बिल्कुल, वही करुणा
0: हाँ मानवता ही
1: दया।
0: का पाठ।
1: जी,
0: हाँ इनमें बड़ी विनम्रता का भाव इनमें इनमें बहुत
1: हाँ
0: थी।
1: उनके
0: अब
1: जितने
0: अभी
1: भी
0: जब हम
1: चित्र
0: उन
1: देखिए, शांत
0: हाँ
1: मुद्रा में एकदम।
0: हाँ और जो उनके अनुयायी हैं वो भी उन्हीं की तरह हैं,
1: जी, बिल्कुल।
0: शांत शांत स्वभाव के
1: हाँ
0: हों,
1: हाँ
0: तो ये
1: बिल्कुल।
0: बहुत। और अगर आप इजाजत दें तो, जैसे जब ये शादी का माहौल चल रहा है, तो मैं एक दो लाइन शिव जी का सुना
1: अरे
0: देती हूँ, जो
1: सुनाइए,
0: महादेव
1: जरूर
0: विवाह में गाते
1: सुनाइए,
0: हैं।
1: जरूर सुनाइए।

0: जिनकर देखिया जिनकर देखिया शिवा झिलमिला सड़िया हो, झिलमिला सड़िया हो, ओही होइयन दादी हमार जी। जिनकर देखिया शिवा दोनों हाथे कन्या दाना, दोनों हाथे कन्या दाना, ओही होइयन बाबा हमार जी।
1: बहुत
0: जिनकर
1: सुंदर राधा जी।
0: देखिया शिवा दोनों नैना लोरवा हो, दोनों नैना लोरवा हो, ओही होइयन अम्मा हमार जी।
1: बहुत
0: ऐसे तो
1: अच्छा,
0: बहुत लंबा है
1: बहुत बहुत
0: लेकिन
1: धन्यवाद। एक
0: हाँ इसमें
1: लोकगीत
0: गाते
1: आपने
0: भी हैं।
1: सुनाया बहुत ही सुंदर, जिसमें
0: हाँ
1: शिव,
0: शिव और पार्वती
1: हाँ
0: का हम
1: शिव और
0: गाते हैं ना,
1: पार्वती
0: कौन
1: के
0: देवी
1: रूप में
0: देवता
1: ही
0: के। हाँ
1: जी सबको
0: हाँ
1: देखना। बहुत
0: जी
1: धन्यवाद,
0: हाँ
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद और शुभ संध्या, शुभ
1: आपको
0: रात्रि
1: भी,
0: आपको।
1: आपको भी।
0: हाँ दीदी हाँ
1: चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
0: वेलकम बहन,
1: नमस्ते
0: नमस्कार।
1: जी। नमस्ते जी, सुनाइए बीना जी।
0: जी मैं भी आप जो गौतम बुद्ध के विषय में बात कर रहे हैं तो मैं भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल, मैंने कहा बुद्ध पूर्णिमा।
0: उनका जो जीवन दर्शन है वह मुझे बहुत पसंद है। उनको जब
1: हाँ
0: हम बचपन में पढ़ते थे ना,
1: जी जी
0: एक पुस्तक आती थी हिंदी विभाग 1-2 ऐसे
1: हाँ इसी की बात
0: आते
1: राधा
0: थे
1: जी अभी
0: छः
1: कर
0: तक,
1: रही
0: तो
1: थी।

0: की कहानियां बच्चों को सिखाने के लिए उसमें होता था, जिसमें कि एक बतख होता था, मतलब दो भाई उनका,
1: हंस का भाई, हंस उसका नाम है देवव्रत, उनका कजिन है देवव्रत।
0: जी जी देवव्रत। तो ये सब कथाएं हम, मैं बचपन से उनके उनका इनके विषय में जानती हूं। उनकी उनका सौम्य स्वभाव मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि पे उनका मतलब बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर जो
1: लुम्बिनी
0: स्थान है,
1: लुम्बिनी
0: वस्तु नामक, हाँ, तो वही वो वहाँ के राजा थे, राजा शुद्धोधन।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उनका जन्म हुआ लुम्बिनी नामक जन्म में स्थान में,
1: बिल्कुल ठीक।
0: बोध गया में उनको ज्ञान मिला था, सारनाथ में वे बौद्ध धर्म की स्थापना की
1: जी,
0: और कुशीनगर में उन्होंने उनका निर्वाण
1: समाधि ली थी। बिल्कुल
0: जी, ये सब जो गांव है सब बिहार ही में लगता
1: हाँ,
0: है।
1: तो बिल्कुल,
0: इसीलिए तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक के जो बेटे और बेटी थी उन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया,
1: महेंद्र और संगमित्रा।
0: जी, और उनको कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
0: जबकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे तो ये तो शांति के दूत थे।
1: बिल्कुल सही।
0: और ऐसा मेरा भी सौभाग्य रहा है बहन, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि मैं सारनाथ हो आई हूँ।
1: हाँ, मैं भी बिहार गया होकर आई हूँ।
0: मैं बोध गया गई थी ना बिहार, जब मेरे
1: बहुत सुंदर मंदिर है।
0: हाँ, तो मैं सारनाथ गई थी, वहाँ पे उनके
1: अच्छा।
0: मंदिर है और जो बोधि वृक्ष है उनका सबका,
1: हाँ, वो मैंने भी देखा। जी जी,
0: तो ये बहुत एक अच्छे मतलब बहुत बौद्ध धर्म के, लेकिन क्या है कि बीच में जब राजा राम मोहन राय जी ने मूर्ति पूजा आदि का खंडन किया,
1: हाँ,
0: तो उन्होंने
1: हाँ,
0: सती प्रति का भी विरोध किया था, लेकिन
1: हाँ,
0: बाद में शंकराचार्य जी जब भारत में आए तो उन्होंने मठों की, चार मठों की स्थापना की, तो उन्होंने ही बौद्ध धर्म को भारत से मतलब निकाल दिया,
1: एक तरह से खदेड़ा कह सकते हैं,
0: हाँ, भगा दिया ना, क्योंकि उन्होंने तो चार मठों की शंकराचार्य।
1: और हमारे पास असल में वेद, वेदांत, उपनिषद, इतना गहरा सब कुछ है कि
0: हाँ,
1: वो इस बौद्ध धर्म में ही ये उसमें समाहित मतलब, हो जाता है।
0: हाँ, और उनकी जो मैथिली शरणगुप्त जी की जो यशोधरा है ना,
1: हाँ,
0: वो तो
1: बिल्कुल
0: बाप,
1: बिल्कुल,
0: वो तो मन को छू लेता है, अंदर तक खिला देता है।
1: बहुत सुंदर।
0: मैथिली शरणगुप्त की भी पढ़ाई के समय, अध्ययन काल के समय में
1: उसकी एक पंक्ति है ना, सखी वे मुझसे कहकर जाते,
0: हाँ, तो मैं क्या आपके पद का बाधा बनती, तो ये मन को चीर देता है कि उन्होंने किस तरह से, अब फिर अकेले उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण,
1: और पाला नहीं, उसे भिक्षुक बना दिया।
0: जी,
1: आप देखिए, और
0: जी,
1: वो पिता के आध्यात्मिक मार्ग का बहुत बड़ा सहायक बना।
0: हाँ, वे करुणा दया के अवतार थे, शांति के दूत थे, उन्होंने दया करुणा भरी हुई थी, बहुत जबरदस्त।
1: बहुत सुंदर बीना जी, आपने खूब सुंदर जानकारियां हमें दी
0: जी,
1: इसके लिए बहुत आभारी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी।
1: वैशाख
0: पूर्णिमा का दिन तो उनका जन्मदिवस ही है, तो इसलिए आपने बहुत अच्छा आज का सही रखा है, सभी लोगों को, उनके बहुतों को, क्योंकि उनके,
1: हाँ, उनके बारे में मालूम नहीं, तो जानना जरूर चाहिए, घरों में, दुकानों पर उनके चित्र लगे होते हैं, लेकिन उनके बारे में व्यक्ति नहीं जानता,
0: हाँ, नहीं जानते हैं ना, बहुत लोगों ने उनके विषय में पढ़ा भी नहीं,
1: हाँ,
0: होगा, तो इस तरह से ये, क्योंकि हमारे धर्म संस्कृति ही के अंग है भी।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: अलग नहीं है ना,
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: जैसे अन्य संत महात्मा है तैसे वे भी है, और उन्होंने, उन्हें तो जैसे कि विष्णु का अभी अवतार ही माना जाता है,
1: कुछ पुराणों में उनको माना जाता है
0: के अनुसार, तो जानना, जितने 10 अवतार के बारे में हम जानते हैं, तो ये भी तो जानना आवश्यक है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: शुभ संध्या।
1: चलिए हम एक और श्रोता को सुनते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: जी, बुद्ध, भगवान बुद्ध पर।
1: पहले अपना नाम।
2: मेरा नाम है बसंती।
1: बसंती, बिल्कुल
2: जी
1: जी।
2: तो बुद्ध, बुद्ध उसका सारा शरीर दुबला पीला और कमजोर था। सिद्धांत ने सारथी से पूछा, इसे क्या हुआ, यह क्यों चिल्लाता है? सारथी, राजकुमार, यह एक रोगी है, बीमारी सभी मनुष्यों को आ दिलाती है, कोई कोई भी इसके पंच से बच नहीं पाता। तो राजकुमार सैर करने नहीं गए, रोग तथा दुख के बारे में सोचते सोचते महल को वापस आ गया। तो मैं एक दो लाइन कहूँगी
1: जी।
2: तो जी, और ये गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाराजा शुद्ध दुहन कपिल वस्तु में राज करते थे। उनके यहाँ ईसा के 500 वर्ष पूर्व वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ। उनके बचपन के नाम था सिद्धांत और गौतम थे। सिद्धांत बहुत मेधावी थे। छोटी ही अवस्था में वे सब प्रकार की विद्याओं में निपुण हो गए। जब युवा हुए तो स्वयंवर में राजकुमारी यशोधरा ने उनके गले में जयमाला पहनाई।
1: दोनों बहुत योग्य थे, बहुत योग्य।
2: राजकुमार सिद्धार्थ महलों में बड़े सुख से रहते थे। एक दिन राजकुमार रथ में बैठकर नगर देखने गए। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा दिखाई दिया। उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है, इसकी ऐसी दशा क्यों है? तो सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार यह एक बूढ़ा आदमी है, बुढ़ापे के कारण इसका रूप नष्ट हो गया, इसका बल कम हो गया, इसके चेहरे पर झुर्रियों पड़ गई हैं। और सच्चा ज्ञान पाने के लिए बुद्ध ने सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, वे बुद्ध हो गए। उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि सुख शांति प्राप्त करने के लिए सच बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। उनके उपदेश से बहुत लोग भिक्षु बन गए और लोगों की सेवा में लग गए।
1: बहुत धन्यवाद बहन जी, हम कहानी लंबी नहीं ले पाएंगे, प्लीज।
2: जी जी जी,
1: बहुत
2: जी,
1: लोग जुड़े हुए हैं हमारे
2: जी,
1: साथ
2: जी जी,
1: क्षमा करिएगा, लेकिन बहुत धन्यवाद, आप हर बार एक खोज कार्य के साथ आती
2: जी,
1: हैं,
2: मैंने
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी के लिए और लोग लाइन में हैं, प्लीज।
2: जी जी जी,
1: बहुत धन्यवाद बसंती
2: जी,
1: हर बार की तरह आप हमारे लिए खोज कार्य करती है, इसके मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए एक और श्रोता को लेते हैं। हेलो,
3: शुभ नमस्कार।
1: नमस्कार नवीन भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: मैं अति बढ़िया, अति खुश हूँ, अति प्रसन्न हूँ।
1: क्या बात है, और क्या चाहिए? व्यक्ति खुश हो, खुद भी खुश हो, दूसरे को भी खुशियाँ दे, और क्या चाहिए?
3: और यज को भी सादर से प्रेम नमस्ते।
1: यज आपको नमस्ते, हाथ जोड़ कर दे रहे हैं।
3: हाँ जी, और उनसे वो सुनते सुन रहा होगा कि मैंने आज एक यज में भाग लिया, बहुत दूर।
1: आप एक यज्ञ में गए और आप यज्ञ को प्रणाम कर रहे हैं।
3: धन्यवाद। पत्नी को सब वो इतना अच्छा नहीं है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है।
1: अच्छा अच्छा,
3: तो मैं उत्तर की तरफ गया था।
1: हाँ, तो दूर गए आप, बिल्कुल
3: बहुत दूर। तो यश को भी बहुत बहुत
1: यज्ञ, उसका नाम ही यज्ञ है।
3: हाँ यज्ञ, यज्ञ में गया था। बहन जी, हम हमारा जीवन का लक्ष्य हम ऐसे सोचते हैं कि हम जन्म लेते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, शादी होनी चाहिए और धन कमाना चाहिए, बुरा हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे और नाती पुते इत्यादि, और हम दादा नाना इत्यादि बन जाएंगे,
1: वो बन भी जाते हैं।
3: तो जी, मैं कहूँगा कि बुद्ध जी ने हमें बहुत प्रेरणा, उनका जीवन प्रेरणादायक है,
1: कि केवल यही नहीं कुछ और भी है।
3: हाँ, उनने हमें बहुत कुछ सिखाया। बुद्ध ने वही तलाश किया जीवन में जो सच है,
1: बिल्कुल
3: जो सच है, वास्तविक जीवन। उन्होंने स्वयं को न खोया।
1: हाँ,
3: जब तक बोध न मिला तब तक उठा नहीं।
1: हाँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने मृत्यु या रोग या बुढ़ापे को कहा कि नहीं आएगा, उन्होंने कहा ये आएंगे
3: आएंगे,
1: लेकिन आपको अपने ज्ञान के साथ बढ़ना है।
3: हाँ,
1: अपने क्रोध को काबू में रखना है,
3: सच्चे लक्ष्य की तरफ उन्होंने
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
3: उन्होंने अंदर की यात्रा की। देखिए बहन जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, अभी तो ये क्या है, कंप्यूटर इत्यादि है, लोग दुनिया की तला दुनिया की सैर कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने पुस्तक के माध्यम से दुनिया का सैर।
1: ये तो सच बात है,
3: सच मैं जानता हूँ कहाँ पर क्या है, पुस्तकों के माध्यम से, इसीलिए मैं पुस्तक को
1: स्वाध्याय स्वाध्याय
3: आज तक नहीं छोड़ता हूँ। और जो जो जो है पुरानी पुस्तकें में, ये आजकल इस कभी मुझे ये स्मार्ट में नहीं, मैं नहीं रह पाता हूँ।
1: ये बहुत ही अच्छी बात है, ये नशा होना ही चाहिए, ये सुखद नशा है, जैसे राम नाम का नशा होता है ना, ऐसे स्वाध्याय का नशा होता है, और व्यक्ति हर रोज नया कुछ सीखता है उससे।
3: हाँ बहन जी, मैं हर रोज नया सीखता हूँ,
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: मैं बहुत यानी कि पुस्तकें को छोड़ता नहीं हूँ मैं।
1: बहुत अच्छा, एक अच्छा स्वभाव है, इसके लिए हम आपको बधाई देंगे और
3: धन्यवाद
1: आपको संध्या कहेंगे।
3: बहन जी, मैं ज्यादा ही कहूंगा क्योंकि समय और लोगों को कहना मैंने सुना,
1: समय भाग रहा है और लोगों को लेना ही मुश्किल है अभी।
3: तो शुभ संध्या, नमस्कार
1: आपको भी। तो श्रोताओं, बस अंत में, क्योंकि लगभग

समय हो ही चुका है और हम अन्य श्रोताओं को नहीं ले पाएंगे। भगवान बुद्ध मतलब जब उनको बोधिसत्व मिल गया, जो कुछ विशेष बातें उन्होंने कही, वे कहते थे आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारी आज तक की सोच का परिणाम है। जो हम पिछले वर्षों में सोचते रहे हैं वही आज हम हैं। इसलिए अपनी सोच ऐसी बनाओ कि क्रोध ना आए, क्योंकि हमें अपने क्रोध के लिए दंड नहीं मिलता अपितु क्रोध ही हमको दंड देता है। क्रोध एक ऐसा जलता हुआ कोयला है जो दूसरों पर फेंकेंगे तो पहले हमारा हाथ जलाएगा। यही कारण है कि हम कितने भी युद्धों में विजय प्राप्त कर लें, जब तक हम स्वयं को वश में नहीं कर सकते तब तक हम सच्चे विजयी नहीं हैं। इसीलिए वे कहते थे बोलते समय अपनी वाणी का ध्यान रखें। जब कुछ बोलें तो ध्यान रखें कि आपकी वाणी से शांति की हवा फैले, ना कि देशों में, परिवार में, आसपास अशांति हो। वे हमेशा कहते थे कितनी बार हम अध्यात्म की बातें पढ़ लें, चर्चा कर लें, मंत्र जाप कर लें, लेकिन जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे सब व्यर्थ है। और वे कहते थे अतीत का स्मरण, भविष्य की चिंता, इसको छोड़कर वर्तमान पर काम करना चाहिए। जो आज का समय हाथ में है, ये नहीं कि बस बैठे बैठे सोचते रहें शेख चिल्ली की तरह। और एक चीज़ उन्होंने बार बार कही कि कोई ये ना सोचे कि संसार में दुख नहीं है। संसार दुखों का घर है और दुख का कारण हमारी वासनाएं और इच्छाएं हैं। वे कहते थे ये बढ़ती वासनाएं और इच्छाएं ही हमें दुख देती हैं। इसलिए वे कहते थे शुद्ध ज्ञान, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वार्तालाप, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध प्रयत्न, शुद्ध स्मृति और शुद्ध समाधि, ये अष्ट मार्ग उन्होंने हमें दिया था। और वे कहते थे यही सब चीज़ें व्यवहार में हम उतारें तो वास्तव में यह जो बुद्ध पूर्णिमा हमने अपनाई, कितना हम अपने जीवन में शुद्धता के मार्ग पर बढ़ पाएं, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बुद्ध न केवल बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बल्कि उन्होंने इस देश की बुराइयों को भी समाप्त करने का प्रयास किया था। इसीलिए उनके ज़माने में बहुत लोग उनके विरोधी भी हो गए थे। वे कहते थे कि जीवन जो है उसको हमें जीना है, लेकिन हमें मनसा वाचा कर्मणा जो है अहिंसा का पालन करना चाहिए। और वे कहते थे प्रेम और शांति एक ऐसा तत्व है जो आपके आसपास के लोगों के मन को बदल सकता है, जीवन को बदल सकता है और व्यक्ति को स्वयं ही उसके देशकाल, परिस्थिति आदि में ईमानदारी से रहना चाहिए। श्रोताओं, बुद्ध ने यद्यपि शांति की बात की और बार बार उन्होंने कहा कायिक, वाचिक और मानसिक, काया से, मन से और वचन से हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, किसी को नुकसान हम ना पहुंचाएं। यहाँ तक कि जब बुद्ध समाधि लेने वाले थे तो आनंद की आंखों से आंसू गिर रहे थे तो बुद्ध ने आनंद से कहा क्या यही मेरी शिक्षा है, यह शरीर तो छूटना है आनंद, अपने दीपक आप स्वयं बनो। और जब व्यक्ति स्वयं अपना दीपक बनता है तब उसे इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं होती। तो श्रोताओं, बुद्ध ने कुछ ऐसे ही विचार दिए जो हमारी संस्कृति से मिलते जुलते थे, इसलिए भारत में उतना बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं हो सका। विदेशों में हुआ क्योंकि भारत के पास तो अपने धर्म की धरोहर इतनी गहरी है कि उसमें ये सब कुछ आ ही जाता है। तो श्रोताओं, इसी के साथ आप सभी को बुद्ध जयंती अभिनंदन, और मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम जब तक चांद पूरा दिख रहा है दो चार दिन तक, उसे रात को ज़रूर एक बार अपनी आँखों से देखें चश्मा उतार कर और उस ठंडक को अनुभूत करें। वह तेजस्विता हमको मिलती है उसकी ज्योत्सना से। बस इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। अलका धनपत और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: खेल खिलाड़ी। खेल खिलाड़ी। खिलाड़ी।

शाम के 5:05 हुए हैं। सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है खेल खिलाड़ी प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम अपने मित्र रोशन जी का प्यार उनके सभी फैंस तक पहुंचाना चाहेंगे। रोशन जी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज व्यस्त हैं, लेकिन उनके बदले में उनकी जगह पर हम आए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि उनका प्यार उनके सभी फैंस तक पहुंचे। अगले सप्ताह अगले हफ्ते वे खुद हाजिर हो जाएंगे आप सबों की आप सबों के लिए ये प्रोग्राम पेश करने के लिए। हम यकीन है कि वे जहां पर भी होंगे इस समय हमें सुन रहे होंगे और साथ ही साथ उनका प्यार उन आप सबों तक पहुंचाने के लिए वे आतुर होंगे। सो आज का खेल खिलाड़ी प्रोग्राम हम पेश करेंगे और जो पहला प्रश्न हम चाहेंगे कि जितने भी लोग हमेशा उनके प्रोग्राम में भाग लिया करते हैं और अन्य लोग भी हमारे इस प्रोग्राम में वैसे ही प्यार के साथ वही उत्साह के साथ भाग लें। सो जो पहला प्रश्न हम पूछने वाले हैं कि आप बताएं कि अभी के लिए अभी वर्तमान समय में इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर कौन है, इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉप स्कोरर कौन है। जवाब देने के लिए आप हमें मैसेज करें ऑन 52 51 7005 52 51 70 05।

अगर आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 402-85-85-5 402-85-85 पर।

0: सो जो पहला सवाल हमने आपके सामने रखा वो ये है कि इस समय इंग्लिश प्रीमियर लीग में वर्तमान स्थिति में प्रेजेंटली टॉप स्कोरर कौन है, और बहुत ही जल्द सैंपिया के रजा साहब ने सही जवाब दे दिया, अर्लिंग हालैंड जिन्होंने अभी तक 24 गोल्स बनाए हैं। मैन सिटी ने कुल मिलाकर 66 गोल्स स्कोर किए हैं, जिनमें से 24 अर्लिंग हालैंड के रहे हैं। दूसरे स्तर पर इगो चागो ब्रैंडफोर्ड का, जिसने 21 गोल दागे हैं, 21 गोल्स। और तीसरे स्थान पर ऑतवान सेमेनियो, जिसने 15 गोल बनाए। सुरेजा जी बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए और सही जवाब देने के लिए। थोड़ी देर में आज का हमारा दूसरा प्रश्न।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

आपके मैसेजेस, आपके जवाब हमारे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर किसी भी समय आ सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम। फिलहाल प्रोग्राम चल रहे हैं खेल खिलाड़ी का, माइक पर्सन। और अब जो सवाल हम आपके सामने रखने वाले हैं वो एक बार फिर स्पोर्ट्स पर आधारित होगा और गोलों पर आधारित होगा। अभी अभी हमने आपसे सवाल किया कि हु इज अ टॉप स्कोरर। बहुत से लोग जानते होंगे कि इस समय द टॉप स्कोरिंग टीम इन इंग्लैंड इज मैन सिटी, जिसने कुल मिलाकर 66 गोल्स बनाए हैं अभी तक 33 मैचों के दौरान। उसने आर्सेनल से एक मैच कम भी खेला है। 66 जिनमें से 24 अर्लिंग हेलान द्वारा। लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं कि आप यूरोप के उस टीम का नाम बताएं, यूरोप के उस टीम का नाम बताएं जिसने तहलका मचा दिया है इस सीजन। द टॉप स्कोरिंग यूरोपियन टीम सीजन 2025-2026। द टॉप स्कोरिंग यूरोपियन टीम सीजन 2025-2026। आपका जवाब आइदर व्हाट्सएप के जरिए ऑन 52517005 या तो कॉल करके भी आप भाग ले सकते हैं ऑन 402-80-85।

रेडियो मशहूर के लहरों पर खेल खिलाड़ी प्रोग्राम संजय के साथ जो दूसरा सवाल हमने आपके सामने रखा कि कॉन्टिनेंटल यूरोप के स्तर पर कौन सी वो टीम है जिसने इस सीजन 2025-2026 में सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए हैं, और बहुत जल्द सही जवाब आ गया। प्रयाग जी जो थौबुची के रहने वाले हैं उन्होंने नाम बताया बायर्न म्यूनिख का, उसके बाद रेजा भाई ने भी सही जवाब दिया। इनफैक्ट क्यूमुलेटिवली 49 मैचेस के अंतर्गत 49 मैचेस के बीच बायर्न म्यूनिख ने 167 गोल्स बनाए हैं, टूत कॉम्पिटिशन कॉन्फोंडू जैसे कहते हैं। Their attacking dominance has been driven by, जैसे कहते हैं, le trio

Infernal. So Bayern Munich का Trio Infernal जिसमें तीन जबरदस्त स्कोरर्स हैं, आप उस स्कोरिंग ट्रियो के नाम हमें बताएं। Bayern Munich के उस Trio Infernal में जो तीन हाईएस्ट स्कोरिंग बादशाह हैं जैसे कहते हैं, उनके नाम आप हमें बताएं ऑन 5251-7005 5251-7005। जल्द से जल्द अपना जवाब हमें भेजें।

खेल खिलाड़ी प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर संजय के साथ. कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि बायर्न म्यूनिख इज द टीम इन कॉन्टिनेंटल यूरोप जिसने सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए हैं इन दिस सीजन 2025-2026 कॉम्पिटिशन को फोंडू 167 गोल्स स्कोर्ड ऑलरेडी एंड स्टिल काउंटिंग मोर. आपको तो जानकारी होगी कि पिछले मंगलवार को द फर्स्ट सेमीफाइनल के अंतर्गत फॉर द चैंपियंस लीग बायर्न म्यूनिख ने जाकर पार्क दे प्रेस में पीएसजी के खिलाफ 4 गोल्स बनाए. हाँ, 5 गोल्स भी खाए लेकिन 4 गोल जाकर बनाना यूरोपियन चैंपियन के गुफे में ये आसान काम नहीं है. एंड दे डिड इट. अब दैट वाज एज वी कॉल्ड फिनाल अवाला लेटर. हमारा ये अनुमान है कि जो टीम इस सेमीफाइनल से विक्टर निकलेगा वही जीतेगा इस सीजन का चैंपियंस लीग. ये हमारा मानना है. सो हमने आपसे पूछा कि उस बायर्न म्यूनिख की टीम का जो ट्रियो है फाइनल है उस अटैकिंग ट्रियो के नाम के खिलाड़ी कौन कौन हैं और सही जवाब बहुत ही जल्द आ गया रेजा साहब की ओर से. हैरी केन, मिकाइल ओलीज और लुई जियाज. जी हाँ, लुई जियाज जो एक ज़माने में लिवरपूल के लिए खेलता था और जो पिछले सीजन के अंत में मैनेजमेंट ने बेच दिया 475 मिलियन पाउंड्स. अब इसको कहते हैं घाटे का सौदा.

You're listening to खेल खिलाड़ी संजय के साथ 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और चलिए हम आपको आज के फिक्स्चर्स बता देते हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग. ब्रेंटफोर्ड खेलेगा अगेंस्ट वेस्ट हैम. न्यूकासल टक्कर लेगा अगेंस्ट ब्राइटन. वुल्व्स का सामना होगा संडरलैंड के खिलाफ और आर्सेनल आज भी खेलेगा अगेंस्ट फुलहम. यानी कि जब से मैन सिटी ने पहला स्थान हड़प लिया था अगेंस्ट आर्सेनल, तब से मैन सिटी ने नहीं खेला है इन इंग्लिश प्रीमियर लीग. सो इन दो खेलों के बाद जब आर्सेनल, अगर आज आर्सेनल की जीत होती है तो आर्सेनल मैन सिटी से 6 अंक आगे निकल जाएगा, लेकिन उसने 2 मैचेस भी ज़्यादा खेले हुए होंगे. सो आज की रात आर्सेनल खेलेगा अगेंस्ट फुलहम. लेकिन इस वीकेंड में जो आकर्षण, मुख्य आकर्षण है वो है कल का मैच. कल 6:30 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड ओल्ड ट्रैफर्ड के अपने गुफे में स्वागत करेगा लिवरपूल का. अगर एक नजर दोहराते हैं पिछले 5 मैचेस में नतीजे क्या निकले हैं. 17 मार्च 2024 को मैन यूनाइटेड ने लिवरपूल को 4-3 के स्कोर पर हराया था. उसके बाद 7 अप्रैल 2024 को मैच ड्रॉ गया था 2-2. फिर पहले सितंबर 2024 को लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हराया था. उसके बाद मैच ड्रॉ गया था 2-2 लिवरपूल और यूनाइटेड के बीच. और पिछले साल के अक्टूबर महीने में यूनाइटेड ने जाकर लिवरपूल को उसके मैदान यानी कि एनफील्ड में 2-1 के स्कोर पर हराया था. सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल रात ओल्ड ट्रैफर्ड में क्या हो सकता है. लेकिन फिर भी अगर आप अपने फोनों से हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नंबर वही है 52 51 70 05.

हर एक फुटबॉल प्रेमी का बस इतना सा ख्वाब होता है कि उनकी टीम चैंपियन बने, और इस सीजन तो निश्चित है कि आइदर आर्सेनल और मैन सिटी चैंपियन टीम बनेगी, और दो टीमें या तो तीन टीमें लड़ रही हैं पुलिस एक्सेसी जैसे कहते हैं कि हु इज गोइंग टू अकम्पनी मैन सिटी एंड आर्सेनल इन द चैंपियंस लीग. Will it be Liverpool? Will it be Manchester United? Or will it be Aston Villa? बस इतना सा ख्वाब है. जो चैंपियंस लीग में नहीं जाएगा वो यूरोपा लीग में अवश्य खेलेगा, लेकिन यूरोपा लीग में खेलने के लिए वहां पर भी काफी रोचक संकट चल रहा है बिटवीन ब्राइटन, बोर्नमुथ एंड चेल्सी. बोर्नमुथ भी कुछ हद तक, लेकिन जो निश्चित है कि अगले सीजन वुल्व्स और बर्नले रिलीगेट हो गए हैं और खेलने वाले हैं नेक्स्ट सीजन इन प्रीमियर लीग, इन फर्स्ट डिवीजन. लेकिन एक टीम जो वाकई इम्प्रेसिव हो रहे हैं, और काफी सीजन से हमने उस टीम को प्रीमियर लीग में नहीं देखा है, वो है लिंकन सिटी. लिंकन सिटी जो 100 अंक जीत चुका है and next season will be playing in Premier League. So, à voir. Absolutely next to see it. So, यहाँ पर खेल खिलाड़ी प्रोग्राम समाप्त होता है. अगले शनिवार को आप हमारे मित्र रोशन से मिलेंगे. फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जबकि हमारी आपकी मुलाकात होगी रेडियो मस्ती पर इन झंकार बीच स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार, शुभ सप्ताहांत.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा रद्द किए। मॉरिशस में 5 किशोर प्रभावित, मंत्री शकील मोहम्मद संपर्क में। पब्लिक प्राइवेट सहयोग और निवेश पर जोर, जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामगी ने पोल्ट्री में निजी क्षेत्र से बजट पर चर्चा की। शिवाजी जयंती पर इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस, महाराष्ट्र दिवस भी मनाया गया, प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि। विदेश में माली में हालात बिगड़े, जिहादी हमलों के बीच कई शहरों में हिंसा, रक्षा मंत्री की मौत से संकट गहराया। अरब समाचार विस्तार से। सऊदी अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा रद्द किए जाएंगे। मॉरिशस में हज के जिम्मेदार मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार ये फैसला रात के समय लिया गया। वे सऊदी अरब के हज मंत्रालय, वहां के डिप्टी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी अरब के राजदूत के साथ संपर्क में है ताकि आधिकारिक जानकारी मिल सके और सभी संभावित समाधान देखे जा सकें। यह अचानक हुआ बदलाव प्रभावित परिवारों और आयोजकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में तय थी। ये नियम केवल मॉरिशस पर ही नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू होता है। चलिए इस विषय पर अरशाद उजिया और मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं।
2: Au fait, toute la participation a commencé depuis l'année dernière. Nos applications sont acceptées au niveau du ICC, que nous la famille, donc pour le Hajj 2026. Un cours qui nous fait prendre au niveau groupe, psychologiquement, mentalement, bien préparé. Ce matin, nous avons une news qui l'autorité saoudienne met en place un enfant plus que 15 ans. Si on a fait mon garçon, il a laissé un grand matin, une heure de cela. Donc, on a un téléphone, on a que ça 5. Enfant qui n'est pas supposé aller là, je peux aller finalement, donc je visa peut reissue par l'autorité saoudienne. Donc là, c'est un sentiment de contentement aussi qui m'a gagné. Mais là, on va attendre une confirmation officielle.
3: Pas fini dans l'advance notice. Et c'est le coup de tout le monde, une sentiment attristé. Et là, tu peux même contempler pour cancel ce voyage de Hajj. Alors, moi, fini. Dès le matin, prend contact avec le ministre du Hajj de l'Arabie Saoudite, le docteur Taufik Al-Rabia, pour faire une cause avec le docteur Machad, qui est le deputy minister du Hajj, l'autre deputy minister du Hajj, docteur Hassan, pour faire une cause avec son excellence, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, posté à l'île Maurice. Et ensemble, c'est avec Saman Dimounla,

0: आत्मक उपलब्धियों की बात कही।
1: The way forward qui nous trouvait, qui nous proposait, c'est-à-dire le gouvernement nous facilite l'investissement à travers un partenariat public-privé dans quatre majeures connectivités. C'est ça un catalyseur pour l'économie. Un, c'est l'aéroport. Deuxième, c'est le port. Troisième, c'est digital connectivity, numérique. Et quatrième, c'est financial connectivity.
0: बजट पूर्व सलाह मशवरे अगले हफ्ते जारी रखे जाएंगे।
2: वृहद योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर आज इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मराठी स्पीकिंग यूनियन और मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के सहयोग से रंगों से भरे त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाराष्ट्र दिवस को भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान है। मराठी समुदाय के जरिए महाराष्ट्र राज्य से मॉरिशस लाई गई विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को उजागर किया जा रहा है और इन्हें भविष्य की पीढ़ियों में प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। तमाहन समुद्र तट पर इस शनिवार अधिकारियों की वापसी देखी गई, जहां पर्यावरण मंत्री भी मौजूद थे। समुद्र तट का एक हिस्सा इरोजन से प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह पास की कई नदियां और नाले हैं जो नदी के मुहाने के पास मिलते हैं। कुछ महीने पहले इन जल प्रवाहों को बिना अनुमति बदल दिया गया था, जिससे पानी का रुख अपने प्राकृतिक रास्ते से हट गया। अब काम जारी है ताकि पानी के तेज प्रवाह को कम किया जा सके, जो समुद्र तट पर टकरा रहा है। अब राजनीति की बात करते हैं। आज दोपहर रोजल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉल ब्यांजे ने घोषणा की कि जल्द ही वाक्वा फिनिक्स नगर पालिका में एक संस्थापक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने इस बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट किया और साथ ही कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।
0: अपने नए राजनीतिक दल के 9 में से 7 सदस्यों के साथ पॉल ब्यांजे ने अंब्रोज गली रोजिल में प्रेस से मुलाकात की। देश के 20 चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरों की बैठक के बाद पॉल ब्यांजे ने अगले सोमवार को अपने नए दल फ्रों मिलिटां प्रोग्रेसिस्ट के पहले जुटाव का ऐलान किया।
3: Nous vous donne nous à sa congrès fondateur là nous vous donne nous 3 mois pour qu'il nous a un vrai l'assemblée de délégués. Congrès fondateur donc 2h30 samedi prochain à la salle des fêtes de la municipalité de Vaqua Phoenix. Quant à nous, nous parlons le nom Front Militant Progressiste. Mais le logo nous donne un petit peu de temps. Parce qu'il nous parlait, c'est une archique ambiguïté, une possibilité de confusion, nous pas intéressés. Donc nous pouvons finaliser là, nous prenons rencontre avec le commissaire électoral.
0: Presque savalon ke jawab mein unhone samsamayik vishayon par bhi baat ki, khaskar bhavi budget ke salah mashware ke sambandh mein. उन्होंने अपनी ये राय दोहराई कि देश को एक स्थायी वित्त मंत्री की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वे शागुस मुद्दे पर बात करेंगे।
2: और जैसे कि हम बता रहे थे, वृहद योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर आज इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर मुख्य मेहमान है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
4: Le BISA prend toutes bonnes dispositions nécessaires. Le BISA fait de l'économie plus résiliente encore. À cause de ça, le BISA fait preuve de solidarité. C'est dans ce contexte, sans mazé nous, qui m'ont pas le fait bidier là. Pourquoi vous pouvez trop content faire bidier là, moi? Moi, je ne suis pas passé le djoun. Et là, je peux dire. Mais moi, je ne suis pas passé quand l'époque difficile. Moi, je suis le djoun là, 6 euros là. Moi, je ne suis pas 6 euros là, c'est bien. Parce que c'est bizarre qu'on ait que même pour il ne fallait pas tout l'économie là aussi. Nous besoin qu'on fait balance. La cause ça qui nous besoin d'être bien, qui même pour faire pour qu'avoir fait nous gouvernement bien résilient. Si on gagne sa pétrole de Congo là, et nous gagnons de l'Inde, il y a un avantage pour nous. Me convaincu moi. Si nous mettons la tête ensemble, nous travaillons dans l'unité, nous fait nous comprend, nous gagnons une différence. Mais là, nous avons un danger du vent. Danger là, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour X, il n'est pas pour Y, il est pour tout Mauricien. qui peut vivre là.

0: Nous pensons qu'on adapter et faire des morts trouve une solution contre les difficiles.
1: रिसमारुक के दौरान वरिष्ठ मराठी मंडली फेडरेशन के प्रधान बलराज नारू ने फेडरेशन के विस्तार कार्य के लिए सरकार द्वारा 50% जमीन दान करने के लिए उसके प्रति आभार जताया। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, उनको सुनते हैं।
2: Le gouvernement à la requête de la fédération nous paye un lopin de terre de 50 PS à côté le Maharashtra Bhawan. For parking facilities, beaucoup d'Anyavar Prime Minister ou gouvernement qui croit dans l'unité de la diversité, nous à côté, du monde un peu oublié parfois, en 2002, quand nous y recevons nous l'été au Vintin, dans sa fameux Triangle Square là, nous tous seuls, bon, vous étiez sa Premier ministre, parce que c'est ça, nous toucher socio-culturel qui se démord nos bâtiments.
1: Autism जागरूकता दिवस के अवसर पर जो इस सप्ताह ब्राउनसेक वार्ड मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में मनाया गया, एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है ताकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जल्दी पहचान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने यह भी घोषणा की कि फ्लैक में जल्द ही एक विशेष डे सेंटर स्थापित किया जाएगा।
3: ब्रॉन्सिको की डे केयर सेंटर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष देखभाल की जा रही है। फिलहाल करीब 170 बच्चों को यहां सहारा दिया जाता है, जहां हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन है ताकि उसके विकास और रोजमर्रा के जीवन में सुधार हो सके। यहाँ डॉक्टर, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्स, एजुकेटर आदि की सेवाएं इस केंद्र में बच्चों के लिए मौजूद है। माता पिताओं को अपने हाल पर नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी मनोवैज्ञानिक सहायता और नियमित मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि वे रोजमर्रा की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सके। हम परिवारों की भी मदद करते हैं, अभिभावकों के लिए कई सपोर्ट ग्रुप्स हैं ताकि वे अपनी समस्याओं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने फ्लक में ऑटिज्म के लिए एक नए डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की। सरकार के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करें। हम मानते हैं कि अभी ऑटिज्म के बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं है, अध्यापकों की भी कमी है, इसका समाधान ढूंढा जाएगा। अनुमान के अनुसार मॉरिशस में करीब 13,000 लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित हैं।
1: और ऑटिज्म मॉरिशस के स्कूल में 43 बच्चों के लिए खास पहल, उन्हें 3D डोमिनोज का पहला सेट दिया गया जो सीखने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल के जरिए इन बच्चों को अपनी क्षमता बेहतर ढंग से विकसित करने का अवसर मिलेगा। संदेश साफ है, हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए सही साधन मिलना चाहिए। और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जवान लड़कियों को ही हो सकती है। ये एक वास्तविक चिंता का विषय है क्योंकि ये बांझपन का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। हमारी टीम जीटीओ अस्पताल गई थी जहां रोज़ लगभग 50 से ज़्यादा मरीज अपना इलाज करवाते हैं, मुख्य रूप से दवाइयों के माध्यम से, और ज़्यादा गंभीर मामलों में जटिल सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। समान अवसर प्राप्त करना और भेदभाव के खिलाफ लड़ना, यही विषय था उस कार्यशाला की जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन द्वारा रिजवी में आयोजित की गई। इसमें 20 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया और विद्यार्थियों ने कविता, स्लैम और गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। इसका उद्देश्य युवाओं में समान अवसर और बिना भेदभाव के समाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। और MGI के सुब्रमण्यम भारती लेक्चर सेंटर में आज 2 मई को हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा मंच संचालक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी कौशल पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये इस श्रृंखला का दूसरा बैच था जिसमें हिंदी के विद्यार्थी, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े अनुभवी संचालक और उभरते हुए उत्साही MC ने भाग लिया। दोनों सत्रों को मिलाकर कुल 250 प्रतिभागियों ने इस पहल से लाभ उठाया। ज्यादा जानकारी आशुतोष रघु के साथ।

0: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को
1: मंच संचालक या कहें मास्टर ऑफ सेरेमनी, वह एक व्यक्ति जो पूरे कार्यक्रम का चेहरा और आवाज होता है, और भूमिका दर्शकों का स्वागत करने से माहौल बांधे रखने तक पूरी जिम्मेदारी उठाता है तथा अपने शब्दों, हाव भाव और कभी कभी हल्के फुल्के हास्य के जरिए दर्शकों को सक्रिय और रुचि बनाए रखता है। इसी विषय पर आधा दिन चली एक कार्यशाला में प्रतिभागियों को भावभंगिनी, मंच पर नियंत्रण, प्रोटोकॉल की समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।
2: पहले से तैयारी करना एक अत्यंत आवश्यक चीज़ होती है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि तैयारी करने का समय नहीं मिलता, तो क्या हम अच्छे एमसी नहीं हैं? ऐसा नहीं होता। चाहे वह शैक्षिक कार्यक्रम हो या मनोरंजक, कुछ भी, जब आप वहाँ पर जाते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
1: देश के सामाजिक संगठनों के अनुभवी एंकरों ने भी नई टेक्निकों पर नियंत्रण लाने की बात की।
3: हाफ द सेशन चला, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी के जिस स्किल में वो बहुत लाभदायक हैं, जैसे हमें पता नहीं था कैसे पब्लिक को हम एंगेज रखें, और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होता है और वो जो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, किस तरह से हमें उसको लेकर चलना चाहिए।
4: मैं समाज सेवा में बहुत रुचि रखता हूँ, कभी कभार मुझे मंदिरों में बुलाया जाता है प्रवचन करने के लिए, और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे टिप्स मिले हैं जो शायद यूट्यूब, गूगल या चैट जीपीटी पर भी उपलब्ध नहीं है। इससे अभ्यास के पश्चात मैं बहुत अच्छी तरह से संचालन कर पाऊँगा, विशेषकर जब मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया जाएगा।
1: कार्यशाला के माध्यम से मंच संचालन का डर व इस वाक कौशल पर पकड़ बनाए रखते हुए प्रभावशाली संप्रेक्षण की आवश्यकता पर भी बल डाला गया।
5: इसका मूल उद्देश्य यह है, लोगों को उचित तकनीक सिखाना कि अगर आपको कोई हिंदी का कार्यक्रम, चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक, चाहे कहीं भी आप खड़े हो जाएं मंच पर और आपको हिंदी में बोलना है, तो उचित भाव भंगिमा के साथ उचित शब्दों का चयन करते हुए आप उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। हम बता रहे हैं कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से खड़े होना है, आपको किस तरह से अपनी भावनाएँ व्यक्त करना है, क्योंकि मेरा मानना है बिना ट्रेनिंग, बिना उचित शिक्षा के आप कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन नहीं कर सकेंगे।
1: कुल मिलाकर ये कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव साबित हुई, जिसने उन्हें एक सफल और आत्मविश्वासी मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए नई दिशा दी।
6: विदेश में माली में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अप्रैल के अंत से सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। जिहादी समूहों और विद्रोहियों के समन्वित हमलों ने राजधानी बमाको समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया है। रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है और उत्तर के कुछ इलाके सशस्त्र समूहों के कब्जे में चले गए हैं। हालात के चलते लोगों का पलायन बढ़ रहा है और बमाको के आसपास जरूरी सामान की कमी भी देखी जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शांति वार्ता के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से जो प्रस्ताव दिया था, उसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत और अपने परमाणु मुद्दे पर चर्चा के बदले अमेरिका के प्रतिबंधों में राहत की मांग शामिल थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव डूबने से हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को बचाव दल ने एक मां और उसके 4 साल के बेटे के शव बरामद किए, जो एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाए हुए थे। क्रूज बोट के पलट ने इसे कुछ ही पल पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक ठंडे मौसम और तेज हवाओं का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। बोट पर मौजूद लोगों को आसपास मंडरा रहे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर भी अभी हमारे मौसम पर पड़ रहे हैं। पूर्वानुमान आज रात देश के पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों में कोहरे भी छाए रहेंगे, खासकर ऊंचे इलाकों पर। और कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। वैसे रात्रि के समय लहरें कम ऊंची रहेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।

0: इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फिजान और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: सेक्शन 18B द्वारका भारत में, सेक्शन 18B द्वारका भारत में 74 साल के 74 years old के श्री बाल्मीकि किशन जो दत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम पाँच बजे भारतीय समय अनुसार कल शाम के 5 बजे सेक्शन 18B द्वारका भारत के वेंकटेश्वर अस्पताल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली भारत की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 5 PM। गीतांजलि रोड थ्रा बुटिक ट्रियोले में, गीतांजलि रोड थ्रा बुटिक ट्रियोले में 74 साल के 74 years old के श्री जगदीश बिगू जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर गीतांजलि रोड थ्रा बुटिक ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। कालीमाई रोड ला रोजान्यू ग्रोव में 89 साल की 89 years old की श्रीमती सावित्री सिन्हान पैदाइशी नाम चितामन और जो सुशील नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके घर कालीमाई रोड ला रोजान्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। देवानी रोड सा मौतम बिजू काप में 83 years old के श्री राजेंद्र प्रसाद गुहा जो गाँव सो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री शेखर गुहा के घर देवानी रोड सा मौतम बिजू काप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बैलोम की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM। बॉशेरी रोड मुकामी 69 years old के श्री रामदीन बच्चू जो क्रेसन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के 2:15 बजे। मोमास्काल रोड पेटी राफ्रेमी 67 years old के श्री सूर्यदेव बोहला जो बाबुआ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी बेटी श्रीमती नेहा लोचन के घर मोमास्काल रोड पेटीराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए काप मालोरे की श्मशान भूमि ले जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10:30 AM। रॉयल रोड ग्रैंड पॉइंट ऑफ पीमामी 59 years old के श्री राजेंद्र कुमार चातौर सिंह जो सूरज नाम से ज़्यादा

0: जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई नु की अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर रोड खान पंतोपी माँ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंतोपी माँ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन चुम्बू 11 AM पावे रोड रविया झुआ पॉमे पावे रोड रविया झुआ पॉमे 82 साल की 82 years और की श्रीमती फुलमत बांटू पैदाइशी नाम रोसुन जो सेवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विनय बांटू के घर पावे रोड रविया झुआ पॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उतरीफ रविया झुआ पॉ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड में उनासी साल के 79 years और के श्री सोमा सुंदरम कॉपेन जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, वैसे उनकी अर्थी भी इंग्लैंड में उठाई जाएगी। उन ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड में 79 साल के 79 years और के श्री सोमा सुंदरम कॉपेन जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी शुक्रवार 8 मई को उनके घर नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड से उठाकर सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रानदाल स्पॉक सरी की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे 8 मई at 9:30 AM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: MBC रेडियो वजह मुस्कुराने की।
4: MBC Radio, 24 hours a day.

सीईबी की तरफ से एक विज्ञप्ति, बॉम्बू रेजिडेंस ला फेम, मैजिक डील, लुई स्टाद जेमे, कोमामो बॉम्बू, पोलिएको लिमिटेड और शुमिया ट्रांसफर स्टेशन और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 3 मई 2026 सुबह के 8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की आपूर्ति को फिर से जारी की जाएगी। एक दूसरा कम्युनिकेशन लीजिए। सीईबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि अपवाली दिफैत और आसपास के इलाकों में जैसे कि सांदुकान और मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। रविवार 3 मई 2026 सुबह के 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक और कम्युनिकेशन लीजिए। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है जो पोर्ट लुइस के आसपास रहते हैं, रुई मेयर बॉथ लिमी दौतवा वुलसी पुने ए एंड और बोल्टों और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि सुबह 8:30 बजे और 1 बजे के बीच रविवार 3 मई को मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिजली की सप्लाई को बिना पूर्व सूचित किए फिर से जारी की जाएगी। और बॉशरी रोड, रोजलिन कॉटेज, रिविया बाप्टिस, पेची वेजे और लुपुस और आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सुबह के 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3:30 बजे के बीच रविवार 3 मई 2026 को मरम्मत कार्यों की वजह से सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को फिर से जारी की जाएगी। इस असुविधा के लिए सीईबी क्षमा प्रार्थी हैं।

0: 您所收听的是毛里求斯广播电台819频道，你收听的是毛里求斯广播电台819频道。
1: 有人说，你一定要听我的。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

हमारे सभी प्रिय श्रोताओं का मैं वेदिता भजली प्रभु का नाम कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। नमस्कार। शनिवार की इस शांत संध्या में आइए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं। दिन भर की भागा डौरी के बाद कुछ पल भक्ति के नाम कर दें, दीप जलाएं और कहें, हे प्रभु, आपका धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को यहाँ शुरू करते हैं और प्रस्तुत है आपके लिए ये भजन।

श्रोताओं, आज की शाम समर्पित हैं शनि देव को। कहते हैं कि शनि देव हमें कर्मों का फल देते हैं और साथ ही साथ राह भी दिखाते हैं। तो आइए ना प्रार्थना करें कि हे शनि देव, हम सबको सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चले की शक्ति दें। हम भी चलेंगे और आपका नाम भी लेके चलेंगे।

श्रोताओं, इस शांत शाम में राम नाम की धुन से अपने मन को शांत करें। राम राम का जप सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभव है। जब हम राम का नाम लेते हैं तब हर चिंता धीरे धीरे दूर हो जाती है। आप उनका नाम लेना शुरू तो करें।

विदिता के साथ इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम। भगवान कृष्ण की भक्ति में एक अलग ही मधुरता है। उनकी लीलाएं और उनका प्रेम हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। आइए उनके चरणों में अपना प्रेम अर्पित करें और कहें राधे।

0: श्रोताओं, आज की शाम का संदेश तो यही है, समर्पण। जब हम अपनी चिंताएं प्रभु को समर्पित कर देते हैं तब मन हल्का हो जाता है। आइए आंखें बंद करें और कहें, हे प्रभु, आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। भजले प्रभु का नाम, क्योंकि इसी में है जीवन की सच्ची शांति।
1: ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य, जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं, जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

तो प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ हमारे आज का कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।

मौज़ सामीन, मुसलमान दूसरे मुसलमान का आईना है हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन अपने भाई का आईना है, जब कोई उसमें ऐब देखता है तो उसकी इस्लाह की तरफ मुतवज्जे कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब किसी के दिल में अपने भाई मुसलमान के लिए खुलूस व मोहब्बत के जज्बात हों तो उसे चाहिए कि अपने दोस्त को

हदीस शरीफ में है कि लोगों से कोई चीज़ मत मांगो और अगर तुम्हारा कूड़ा गिर पड़े तो उसको भी खुद घोड़े से उतर कर उठाओ। बहवाला मसनद अहमद शरीफ। ऐ पाक परवरदिगार, हमने जो अहदीस समात फरमाई हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का
3: तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
4: गमन जलसा हंगामा।
5: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
6: रात के 9:11 हो गए। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला जितना कोई श्रोता लोगन हवन रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लहरों पर आप सब कोई के साथ देवे खातिन आज हम चलाल हैं। आप सब कोई के साथ है देवा बा बहुत प्यार से। आशा है ये करब जा कि जहां कहूं से भी आप साथ है देवत हवा रात के 11 बजे ले हमनी के संगे जुड़ल रह और मजेदार कार्यक्रम के बीच जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने खातिर जे तोरा मन बा कोनो खातिर एगो गीत सुनावे खातिर तो जरूर हमनी के टेलीफोने करे सकब 402-808-5 402-808-5 नंबर बा रेडियो मॉरिशस के और तू मिसाज विदा करे खोजा था वह तो 5251-7005 पर हमनी के मिसाज विदा करे सकब। तो चला आज के हई कार्यक्रम के शुरुआत रम हराम तो हल के आवाज़ में रखल 2025 के बरिस के हई गीत के साथ शुरुआत करब जा हई बहुत मजेदार गीत संगे तो चल साथ देते रहिए जा और गुनगुनाव जा हई बहुत मजेदार गीत।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत मजेदार कार्यक्रम और चल है जा पर ढेर कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन और मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई साथ देवत हवन बस ऐसने साथ जुड़ल रही 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो चला आगे बढ़े के आगे बताओ अब जा सब कोई के आज के जितना कोई हमनी के सुनत हवन आज के जो पहला गीत है संतोष महादेव के आवाज़ में रखल है गीत सुनीता जी पसंद कर ले हवन और हमनी के बोले बहिन लोग सब जितना सुनत हवन उन सब कोई खातिन चला द है गीतवा और है जो गीत है खासकर उनकर बहिन कोंगोमा से जिस साथ देवत हवन और साथ देवत हवन अमृत जी कोंगोमा से हवन विमला जी और वीना जी साथ देवत हवन गाँव गोब से ही तो चला आज के रात के कार्यक्रम बहुत ही मजेदार कार्यक्रम संगे बस इसने जुड़ल रहिए साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम के साथ साथ मजेदार चुटकुला पप्पू बोले चचा के चाचा जी हाई सुना ना तनी जीवन में सब कोई बोले हाँ खुशी रहे के चाहिला ता खुश रहे खातिर कौन ची करे के चाहिला ता चाचा बोले देखा हम बहुत अनुभव से तोहरा बतलावत हई हमर अनुभव में हाई ये बोलीला बोलब जा कि जे तोरा खुश रहे के मन कराता ता खुश रहे खातिर एक गो चीज करिए जानत हवा ना कौन ची करे के बोले नहीं चाचा हाइये तब पूछा था तोहरा कौन ची करे के चाहिला एगो हाथ में चूना रखिया और दूसर हाथ में मक्खन रखिया बोले है हाई कौन ची करे के बोले देखा एगो हाथ में चूना रखिया और एगो हाथ में मक्खन ले लिया मक्खन रखिया जहाँ जोन चीज के जरूरत पड़े जहाँ जोन चीज के जरूरत पड़े उही लगाते रहिए आदमी लोग के तो हर काम निमन से हो जाए। अच्छा मतलब इतना करब त जीवन खुशखुशहाल रही। हाँ जीवन खुशखुशहाल रही। तू बहुत समझदार हो गल हवा पप्पू। देखा ठंडा बढ़ गल बा त मरमिट में तनी गर्म पानी चढ़ा देवत हई।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और मजेदार कार्यक्रम संगे बहुत मजेदार गीत जितना तू हमनी के गीत चुन चुन के आने ल बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मजेदार कार्यक्रम चलेला रात के 11 बजे ले हैजा पर भाई नवीन हमनी के संगे जुड़ गल हवन। भाई नवीन लक्ष्मण हवन रोज बैल बगल से, उनकर पत्नी चित्रा जी और परिवार हवन मेबक से निवेदिता और सच्चिदानंद जी, साथ देवत हवन ललिता और धनराज चरण जी मोडाल बया से, बेटी स्वीटी संगे और घोंबुआ से हवन राज और अमृता उबिलक, घोंबुआ से रमेश और प्रीति जी। तो चलो साथ देते रहिए और शिव के महिमा है अगला गीत के वो मांग कर ले हवन और लीलो माथुर सुकन की आवाज़ में रखल बहुत है मजेदार गीत संगे। आउरी पप्पू भैया के का बोलब, उनकर आंगन में वो कुत्ता रहल बैठल रहल, आउरी कुत्ता पर जाके का जानी कलम से का जानी कौन चीज लिखत रहलन। तो चचा हौजा से पासे हो गल, चचा पप्पू से बोले, पप्पू का करत हव हौ बेचारा कुत्ता के का लिखत हव ओकर पिठी पे। बोले नहीं हमर जो मास्टर जी है ना, हमर मास्टर जी हमनी के बोलले बा कुत्ता पे

बंद लिखे के तो हल के कब से बोला था निमन से बैठा हमर हमर मास्टर जी बोले बा ओकर पिठी पे जाके तू हम निबंध लिखा था बोले अरे बुड़बक तोरा मास्टर जी है नहीं बोले बाहो बोले कुत्ता पे निबंध नहीं लिखे के वो पापिये पे कुत्ता के ऊपर निबंध लिखे के तू का बोला था वो हो पप्पू तो पप्पू ही रहे।

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का। नौ बजकर 28 मिनट हो गल बाटे और मजेदार कार्यक्रम संगे बस साथ देते रहिए जा और हई जा पर भाई आत्माराम हमनी के जुड़ गल हवन बिली अगी व्यास से और अगला गीत लागी नहीं छूटे राम आज तब बहुत लागी नहीं छूटे राम के बहुत मांग पर गीत चलावत हई और हई गीत चाची ललिता खातिन और छोटी खातिन पुलाव जैसे साथ देवत हवन दादी प्रभावती खातिन और जितना कोई सुनत हवन हमनी के उन सब कोई खातिन और हई ये गीत करब जा गायत्री जी खातिन। गायत्री जी भी हमनी के साथ देवत हवन नुअल से बेटा अजय मामी कल्याणी मोहन मेबक से भौजी हवन शकुंतला मोताइलोंग से और खास सखी गीता बाई खातिन तो चला लागी नहीं छूटे राम बहुत मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और मजेदार गीत संगे संगे चाची कौन दिन खिसिया के हमनी के ऐसन बोले बोले ऊपर वाना के बहुत मेहरबानी है हम पर। हम बोलनी अरे वाह चाची कौन मेहरबानी है बोला था बोले हाँ शिव जी के बहुत एक कृपा है हम पर एगो ऐसन बढ़िया पति मिलल बाकी का बोलब हमनी के कबो कौनो दुश्मन के जरूरत महसूस नहीं होला है बुढ़वा जब घर में रहेला था। ई बाबा कौन ची बोल दिलक चाची

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:30 हो गल बाते मजेदार कार्यक्रम संगे हाइजा पर जुड़ गल हवन बेनी प्रसाद परिवार, विजय बेनी प्रसाद शामुनी से संगे हवन दूली परिवार और शास्त्री बुनोमाली उनकर खास दोस्त मोहताबा से। तो चल अगला गीत किशोर खीमिया की आवाज में रखल है एक बढ़िया गीत। बोले आज तो सामदी के रात है और सामदी के रात तो जलसा होवेला, तो सगरो जितना कोई जलसा करत हवन, जितना कोई शादी में मगन हवन, अभी बहुत कोई जगह पर शादी हवन, हल्दी में गल हवन और जलसा करत हवा, तो बस हाई गीत के संगे तनी ठुमका लगा दिया, नाच दिया, थपरी बजा दिया, मजेदार कार्यक्रम संगे हंसते हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब स। और चचा हमने के संदेश देवे खातिर हमेशा तैयार रहेला, जाने ल हमने के बोले आदर्श पति पत्नी, जाने ल कौन होला, हम बोलने आदर्श पति पत्नी।

आज के जमाना में कहाँ आदर्श पति पत्नी मिलेला हो। बोले नाय देखा हम बहुत पुराना जमाना के आदमी है, हमार बड़का आदमी जोन रहल दादा नाना उ सब हमनी के बोले रहल आदर्श पति पत्नी उ ही कहाला जेकर में पति अपन पत्नी के कबो उदास नहीं देखे सके, और पत्नी जोन रही वो अपन बूढ़ा के कबो खुशी नहीं देवे सकी, वो कबो खुशी नहीं देख सकी ओकर पर बूढ़वा के। चाचा पाछे से चाची देखता तोरा।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम रात के 9:40 जितना कोई रात के काम करत हवन, गार्दी के काम करत हवन, सोफिया के काम करत हवन, बस साथ देते रहिए जब मजेदार कार्यक्रम संगे संगे रात भी निमन से कट जाए और चला आगे बढ़ब जाए। एक अगला बढ़िया गीत रंभा राम तोहल के आवाज में रखल और हाई जुन गीत हाई गीत बाय आबू पसंद कर ले हवन भाई आबू, उनकर बेगम हवन आफेज और संगे हवन आयाज, आयान, जहीरा, रईस, खाला छोटी और उनकर खास दोस्त आपी और उनकर पत्नी खाते। तब मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और हईजा पर हमनी के साथ देवत हवन सुदेवी जी वाकवा से और उनकर बहिन हवन त्रियोले से, दीदी ललिता, सब कुशल परिवार खातिन, मालेगा से हवन राम रतन परिवार और खासकर वैभव, वंश, वीर, वर्षा, विमल और निया खातिन अगला गीत करब जा। तो चला जुबेदार लो तो लेके जाए है बढ़िया गीत संगे साथ देते रहिए जा। आउरी चाची चचा के किस्सा का बोलब, चाची कौन दिन चचा के बोले आज वाइन लेके आइया, तो चचा के तो आँख ऐसे फाट गल और चचा बोले का बोलत हुआ आज तू मूड में चलाल हुआ का, बोले का मूड में चलाल है, बोले हाँ चला रात के आवब तो लेके आवब, तू तरह कौन चीज तो तू एकदम मूड में कैसे चलाल हुआ, बोले का मूड में चलाल है तू नहीं लेके आई बता हम जाके ले अब, बोले धत हम जाके लेके आओ अब तो हर खातिन वाइन, बोले अरे बुढ़वा वाइन के नहीं बोला था हो अजवाइन के बोला था, अभी ठंडा चलाल बात अजवाइन पिए के बहुत अच्छा है, पेट के दर्द चल जाए। जब देखा शराब के बात करेला

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम 9:50 और चला अगला गीत जन है अगला गीत चलाओ अब जा भाई राफिक मोहित खातिन जी हमने के सत्तायाक से जुड़ गल हवन और हईजा पर चाची शांता सुकागी हमने के साथ देवत हवन से जमील फर साइड से उनकर पतो हवन किरण बेटा सुदेश साथ है देवत हवन उनकर बेटा गाविन सुजीत और अशोक और नातिन हवन संजना और नाती प्रवेश और चाची बोले हमने के बहुत दिन से विनोद शिवदत्त जी के आवाज़ नहीं सुन ले हाँ संगत करे जान के पानी पिया छान के है गीत बहुत ही मज़ेदार गीत है तो चला आज के कार्यक्रम के संगे है गीत तनी हमर खातिन जरूर चला द काहे नहीं मजेदार गीत और चला आगे बढ़ब जा बढ़िया बढ़िया गीत संगे चाची चाचा के किस्सा जाना था चाचा हमने के कौन ची बोले चाचा हमेशा अपन अनुभव से बहुत बहुत कोई लोग के सीख देवेला तो चाचा कौन दिन पप्पू के बिठा के जीवन के है जोन संदेश देवत रलन बोले जय जीवन जैसे जाता जे उड़े नहीं सकब त दौड़े नहीं सकब त चल और जे चलते भी नहीं बनी चले नहीं सकत हव त रेंगते रेंगते आगे बढ़ पर जीवन में कब रुकेगे नहीं कबो नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रह तब पप्पू अपन कपार खजवाई दे बोले चाचा एगो बात पूछे के रह तब से तू आगे बढ़े के बात करत हो आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ पर जाए के कहाँ बा है तन नहीं बताइले तू हम कैसे जानब कहाँ जाए के बोलत हव कहाँ आगे बढ़े के बोलत हवा

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का
2: तो हर जीवन में स्वाद आने खाती
3: गमन जलसा हंगामा
4: भोजपुरी की रत्ना के संगे MBC रेडियो पर भोजपुरी तड़का
5: रात के 10:12 और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के एगो घंटा बीत गल और एगो घंटा बाकी

तो चला अगला गीत जो है गमट करे के रात है तो गमट करे खातिर है अगला गीत बिस्वानी दीपवा के आवाज में रखल चाची ललिता कुशल के ओर से चलाओ जा त्रि ओले से हमने के साथ देवत हवन और उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी देवीना और साथ देवत हवन छोटी पोला जैसे दादी प्रभावती खातिन भाई आत्माराम भाई हरीश और माला

भोजपुरी थड़का कार्यक्रम और ही चला आगे बढ़ब जा और हाईजा पर हमनी के साथ देवत हवन अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लैग से जुड़ गल हवन और बसंत सुपोल के आवाज में रखल एगो बढ़िया गीत के मांग करत हवन। तो चला अगला गीत खास उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और खांसी भाग गल बा हईजा पर लबा का रस्सी तोड़ के और हई बढ़िया गीत तोहर खातिन चलावब जा। तो चला आगे बढ़ब जा और चाची तो अभी बहुत हुशार हो गल हवन जानत हव। चाची हमनी के बोले इतिहास जोन हौ गवाह है कि जौन पति दुनिया के खातिर बहुत सीधा बहुत शरीफ नजर आवेला वो अपन पत्नी के साथ उतना ही टेढ़ा रहेला। हम अपन अनुभव से बोलत हई काहे के एगो टेढ़ा आदमी हमर घर में हमर छाती पर बैठ के हमनी के संगे हमेशा झगड़ा करते रहेला।

भोजपुरी तड़का 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आए हैजा पर 10:11 अभी होल बात है और मजेदार कार्यक्रम संगे सब कोई हमनी के संगे संगे हसत हवन अच्छा लगाता अच्छा बुझाता और बहुत बहुत मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर बहुत प्यार से सब कोई मिसाज विदा करत हवन बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी, थैंक यू अनिता जी, संगे साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे बढ़िया बढ़िया बढ़िया गीत सब कोई खातिर। चला अगला गीत जो है पूर्णिमा जी हमने के साथ देवत हवन और आज उनकर बेटी खातिर वो गीत मंगले हवन 5 तारीख के यानी कि 5 मई के उनकर बेटी मालिनी फुकीरा के जन्मदिन बातें वो जो ला पुलिस के काम करता था। चला मालिनी जी तोरा एडवांस में जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई और तोहर बहिन लोग पिंकी प्रवीणी पूजा और पूनम बहुत बहुत बधाई देवत हवन और विदेश से प्रवेश और उनकर पत्नी कुष्मा जी भी संगे साथ जुड़गल हवन ममा पूर्णिमा फुकीरा साथ देवत हवन और शायान स्वानिश कानिश और साथ हवन अयान और प्यारी परी और SSRN के जितना SSRN लोपिताल के जितना रात के काम करे होला स्टाफ हवन उन सब कोई खातिन है अगला गीत और है गीत है पिया परदेस। तो चला पिया परदेश के है गीत संगे आगे बढ़ब जा भी जितना चाची गाल बजावता था चचा छोड़ी ओकरा चचा बोले का बोला अभी गर्मी औरी बुढ़िया एक जैसन हो गल हवन इनकर पारा जब चढ़ेला तो अच्छा से अच्छा आदमी के पसीना छूट जाला।

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे हैजा पर दागोचे से कुमारी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन औरी चला अगला गीत चलाओ अब जा खास कर उनकर नाती काविश खातिन लाविश खातिन जी हाँ लाविश खातिन और साथ देवत हवन उनकर पत्नी निरीशा मामा लता और पापा धनंजय और जिनकर घर में एगो छोटा सन बाबू आल बा एक महीना होल बा तो चला कुमारी जी अगला गीत के मांग करत हवन है गीत चलाव अब जा उनकर खातिन और सब हरि नारायण परिवार खातिन और है ये गीत अभिमन्यु हरपाल सिंह के आवाज में रखल है जो गीत है ये करब जा राजन लक्ष्मण जी खातिन जे लफलोगा से साथ देवत हवन और उनकर पत्नी हवन माला दुगो बेटी प्रार्थना और प्रगति बहन मानती और उनकर भगिनी हवन उर्मिला तुलसी खातिन और है अगला गीत खासकर मजेदार गीत संगे जुड़ जाइए और ही मजेदार गीत संगे हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ब जा चचा कौन दिन बहुत तनाव में चलाल तो दुखती है हिया गर्ल तो चचा के तनी चेके करके दुखते बोले हाँ चचा जानत हव बहुत स्ट्रेस बढ़ गल बा बहुत तनाव बढ़ गल बा तोरा नींद के गोली लिख के देवत हई घरे जाके बोले चचा बोले हाँ हाँ दुखते जी कितना खाई के गोली बोले नहीं तू नहीं खइय जाके अपन बुढ़िया के खिया दिया तो वो जब निमन से सूत जाए तो हर तनाव तनी दूर हो जाए
3: सिया मांगे

0: तड़का
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 9:00 कहाँ हो 10:26 हो गल बाटे और ही मजेदार कार्यक्रम संगे हाईजा पर साजिद जी जुड़ गल हवन गोजिल में रहे लन सब पर आज तपन सब संगतिया संगे घूमे गल हवन चला सब संगतिया संगे संगे भोजपुरी तड़का के आनंद उठावत हवन और उनकर खास सखी खास दोस्त हवन दीना सरोवर जे भी भारत में घूमत हवन और साजिद जी हमनी के बोले सोना नोयन के आवाज़ में रखल एगो बढ़िया गीत चला दे हमर खातिन और हमर जितना दोस्त हवन उन सब कोई खातिन जितना कोई सुनत हवन सब कोई खातिन तो बस मजेदार भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुनते रह साथ देते रह और का बोलब कौन दिन चचा बिचारा इतना परेशान रहल त हम बोलनी कौन चे होल चचा बोले हाँ रात के सुतले रही एक बहुत ही अजीब किस्म के हमनी के सपना चलाल हम बोलनी अच्छा तो काहे परेशान इतना काहे परेशान हो गल हवा सपना देख के बोले हाँ जानत हवा सपना में हमनी के यमराज चलाल यमराज हमनी के बोले वत्स हम तोहरा लेवे आल हई चलो हमर संगे तोहर समय समाप्त हो गल बा त चचा बोले हम तो बड़ी त्राका में चलैनी चचा बोले अभी हम तो उम्र का होल बा हमर हम तो अभी ले जवान है तनी तनी जवान है तो काहे तो हमनी के बोला था हमनी के समय खत्म हो गल बा बोले जाने था बेटा तू अपन जोन पोता फ उ घरे भूला गल हवा और तोहन बुढ़िया जोन है उ तोहर पोताप में त लोग खोल के तोहर सब कांड पढ़ता तू कौन कौन छोकरी संगे मिसाज विदा करत हवा है सब तोहर पत्नी जान गल हवा तो चचा डर के यमराज के बोले हाँ चचा हाँ हाँ यमराज जी हमनी के लेके जाइए अपन संगे हम तो घरे नहीं जाब हम तो का बोलब अब तब अचानक से हमर नींद खुल गल हम तो डरा गई नहीं हमनी के जितना पसीना छूटल बा का बोलब

0: भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और 10:33 हो गल बाटे। मजेदार कार्यक्रम संगे हाइजा पर का ट्रिबून से शो भाजी हमनी के साथ दिवत हवन और जितना कोई सुने होला श्रोता हवन, जितना सीनियर सिटीजन हवन, जितना कोई हमनी के संगे जुड़ गल हवन, उनकर खाती नगला गीत चलाओ अब जा सुनीता ननकू के आवाज में। और गमट के कार्यक्रम जारी रही रात के 11 बजे ले, तो चला आगे बढ़ब जा। और पप्पू भैया के का बोला, कौन दिन पप्पू भैया चल गल पाठशाला और पप्पू भैया अपन घर के जोन कार्य देले रहल गुरुजी वो कार्य नहीं फिनी करलन, अपन होमवर्क फिनी नहीं करलन। तब गुरुजी बोले, हाँ एगो और दिन के तोरा मोहलत देवत हई, जे तू काल अपन देव नहीं करलक तो मुर्गा बनावब। तो फट से पप्पू भैया बोले, नहीं नहीं गुरुजी, मुर्गा नहीं चली, काल तो हमर कागम है, काल हमर खातिर मटर पनीर बना दिया, मुर्गा नहीं खाओ काले।

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का कार्यक्रम है जहाँ पर हमने के संगे मौत आवाज से जुड़ गल हवन बादवाग विदेशी जी और अगला गीत जन है कमल और विभा चिंतामणि के आवाज में रखल काम करवा। पहला मई काल रहल श्रमिक दिवस और है गीत बढ़िया जितना काम करे लंसा उन सब कोई खातिन है अगला गीत और उनकर खास दोस्त हवन अनुषा खेदन उनकर खातिन चलाव अब जा। और पप्पू भैया के तो है किस्सा सुनते चला। मास्टर जी एगो सवाल पेल दिलक। हाँ मास्टर जी बोले अच्छा बोला जिंदगी के तलाश में मौत के करीब आ गए है फाज के है सेंटेंस के कौन मतबल हो रहा। तो पप्पू भैया बोले सार मतबल तो है कि गर्लफ्रेंड गए थे ढूंढने और शादी फिक्स हो गल।
2: For all the workers

0: भोजपुरी तड़का,
1: भोजपुरी तड़का।
2: चला भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जा और हाइट जा पर हमने के संगे हवन बिहारी हरि प्रेम जी त्रियोले से साथ दिवत हवन और अगला गीत उनका नातिन आयुषी प्रीतेश और अवनी खादिन चलाओ अब जा कौन फुलवा फूलेला सुना नोयन के आवाज में रखल।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा, अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आटा गीला

0: रोमांचक भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर। भोजपुरी तड़का
1: कार्यक्रम और आज के आखिरी जन गीत रही लेखाम जी खातिन जे कौ दिमाग से साथ देवत हवन और उनकर प्यारी पत्नी देवी खातिन जितना कोई सुनत हवन उन सब कोई खातिन। और शाम दी के रात जब रहेला तो सब कोई गर्मा गर्म दाल कच्चू और पूरी के स्वाद हल्दी के समय लेवेलन सब। तो चला है बढ़िया गीत संतोष महादेव के आवाज में रखल बढ़िया संगीत तोहर खातिन चलाओ अब जाओ जितना कोई आज हरदी मनावत हवन तो बस हरदी के है दिन बहुत पावन रही सब कोई खातिन। तो चला है अगला गीत खातिन चलाओ अब जा सब कोई खातिन जी अभी शादी के बंधन में बंध गल हवन या बंधे जात हवन तो उनकर खातिन चलाओ अब बढ़िया गीत है। और है ये गीत के साथ आज के कार्यक्रम है जा पर समाप्त हो जाए। आप सब कोई हमनी के बहुत प्यार से साथ देलन बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसने हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए आवत सामदी के फेरों से एक बार भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में आप सब कोई के मनोरंजन करब जाए को बढ़िया कार्यक्रम संगे बढ़िया चुटकुला संगे। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति शुभ रात्रि नमस्कार।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

उभर कर आती है ना, तो वो बीते हुए पल और वो बीती हुई बातें भी सामने आ ही जाती हैं। अभी के लिए तो हम आपके साथ रहने वाले हैं बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ, इन सदाबहार नगमों के संग। तो चलिए शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, जब बॉलीवुड के एवरग्रीन सदाबहार गीतों के बारे में बात करते हैं, जैसे रात की ठंडी हवा जो हमेशा दिल को सुकून देते हैं, ये गाने न पुराने होते हैं, न ही पूरी तरह भुलाए जा सकते हैं। चलिए चलते हैं उस सफर पर जहां हर सुर

क्या गाना है, आहा, जब किशोर कुमार की आवाज गूंजती थी या फिर लता जी के सुर खिलते थे, तब हर एक दिल एक कहानी बन जाता। आज की रात वही कहानियाँ और वही यादें लेकर हम भी आए हैं एवरग्रीन मेलोडीज के साथ सुनहरे पल में।

गाने जो कल भी दिल को छू गए थे और आज भी वैसे ही हसीन लगते हैं, वही तो होते हैं सदाबहार गाने। चाहे वो रफी साहब हो, मुकेश हो, या फिर हमारे जितने भी लेजेंडरी संगीतकार रहे, शंकर जयकिशन, नौशाद, खयाम, कल्याण जी, आनंद जी, और तो बहुत सारे हैं। सुनते हैं कुछ ऐसे ही नगमे जो कभी पुराने नहीं हो सकते हैं। भले ही बातें भूल जाएं, लेकिन ये यादें कभी दिल से जुदा होंगी नहीं।

बॉलीवुड मेलोडीज जैसे कहते हैं सिर्फ सुरों का जादू नहीं है श्रोताओं, बल्कि जज्बातों की एक दुनिया है। और आज वापस हम आपको ले चले हैं उन्हीं नगमों की महफिल में जो दिल को हमेशा नया सा लगता है। ये गाना सुनिए और खुद अपने मन को बताए, सहलाए कि इसको सुनकर वापस कैसा होता है। कुछ न कुछ तो होता है ना?

वो पुराने नगमों का चार्म ही अलग था। लिरिक्स में शायरी थी, म्यूजिक में रूह और आवाजों में एक जादू। सुनते हैं कुछ ऐसे ही गीत जो हमेशा के लिए दिल में बस गए हैं, जिसे कहते हैं ना एवरग्रीन मेलोडीज, जिसे चांदनी रात में नूर जो कभी कम ही नहीं होता। ये गाने हमेशा एक मुस्कान ला देते हैं, चाहे दिल उदास हो या खुश। तो बस दिल से दिल तक ये सफर शुरू हुआ था, अब समाप्त तो हो चला है, लेकिन कारवां कभी खत्म नहीं होता है। मिलेंगे अगली बार, तब तक नीतूषा की ओर से नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।

सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का एक पैर यूरोपा लीग के फाइनल में, एस्टन विला पर 1-0 की जीत। नैरो लीड ही सही पर कीमती है। सेकंड हाफ में क्रिस वुड का गोल पेनाल्टी पर काफी रहा। यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट एस्टन विला का मैनेजर उनई एमरी वाह से बहुत नाराज हुआ। उसके अनुसार नॉटिंघम फॉरेस्ट के मिडफील्डर एलियट एंडरसन को रेड कार्ड देना चाहिए था। ऊपर से वार रिव्यू पर ही पेनाल्टी दी गई फॉरेस्ट के हक में। दूसरे मैच में भागा ने फ्रीबर्ग को 2-1 से हराया।

So Nottingham Forest 1, Aston Villa 0, Braga 2, Freiburg 1. Ye Europa League में, Conference League में Crystal Palace की शानदार एवेजी 3-1 से

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: शोला शोला